शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, पवित्र प्रोग्राम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान, जो अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं गौरी मैम। और गौरी मैम से हम बातचीत करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिससे बहुत बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। हम बात करेंगे बाबा भोलेनाथ की। जी हाँ, गौरी मैम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुकी हैं 2 बार। तो हम उनसे उनकी यात्रा के बारे में ही बात करेंगे, उनके अनुभव लेंगे। और समझिए कि सुन सुनकर हम कैलाश मानसरोवर को विजिट करेंगे, दर्शन करेंगे उन्हीं की बातें सुन के। तो गौरी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करते हुए आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थोड़ा सा आपसे प्रार्थना है कि हमारे सुनने वालों को की जानकारी के लिए बस जरा सा अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे आपकी यात्रा के बारे में।
2: वेरी गुड मॉर्निंग सबको। और आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई में रहती हूँ। आई हैव रिटायर्ड, आई वाज वर्किंग इन द बैंक, अब नाउ आई हैव रिटायर्ड एंड आई एम अ हाउसवाइफ।
1: That's very nice. तो दोस्तों, आपने जाना कि गौरी मैम वैसे तो एक बैंकिंग प्रोफेशनल रही हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन अभी बस आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में, अपने आप को पहचानने में

0: मन लगा रही हैं। बहुत खूबसूरत।
1: गौरी मैम, जब सबसे पहले आप कैलाश मानसरोवर के लिए गए, सबसे पहले तो वो कौन सा साल था, कौन सा महीना था, कुछ याद है आपको?
2: हाँ जी, पहली बार तो मैं 2015 पे गई थी और मंथ था मई,
1: ओके, महीने मई के महीने में 2015, हाँ, तो यानी कि गर्मियों का मौसम था और 2015 में।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: ओके, तो आप की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब बॉम्बे से आप कहाँ गए और फिर इसके?
2: फ्लाइट काठमांडू
1: जी,
2: काठमांडू गए थे डायरेक्टली और वहां से यात्रा शुरू हुआ।
1: तो ये प्राइवेट ऑपरेटर थे या आर्मी के साथ था?
2: नहीं, ये प्राइवेट ऑपरेटर थे। प्राइवेट ऑपरेटर सिर्फ एक 10 दिन या 7 डेज का यात्रा होता है और वो डायरेक्टली मानसरोवर, कैलाश परिक्रमा और बैक।
1: जी, तो ये आप पैदल गए थे काठमांडू से वहां पर, या कोई और गाड़ी से गए थे, या हेलीकॉप्टर से गए थे, कैसे गए थे?
2: सी, काठमांडू यू हैव टू फ्लाई नो, बंबई से काठमांडू डायरेक्ट फ्लाइट, काठमांडू से बाय रोड वो प्राइवेट ऑपरेटर आपको गाड़ी में ले जाते हैं। हर हर स्थान पे ना वो आपको गाड़ी में, अपने प्राइवेट गाड़ी में ले जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट का कुछ कनेक्शन नहीं है, उनका ही प्राइवेट ऑपरेटर का अरेंजमेंट है। जी जी, काठमांडू से वहाँ होटल ओवरनाइट स्टे था, सब वो हमारी जांच बीच पूछताछ जो करना था पूछ लिया उन्होंने। कुछ हेल्थ इश्यूज है क्या, वो भी वो चाइनीज अथॉरिटीज ने पूछ लिया। फिर वहां से उधर काठमांडू में, ऑल्दो इट इज इन नेपाल, सम ऑफ दोस टूर ऑपरेटर्स, उनका चाइनीज के साथ कांटेक्ट था, तो वो ये सब पूछताछ कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल ये सब वहाँ चेकिंग हो जाता था। तो वहां से हम लोग प्राइवेट गाड़ी में दे टुक अस अक्रॉस अ टिबेटन डेजर्ट। टिबेटन डेजर्ट में बीच में क्या हो गया, एकदम सैंड स्टॉर्म आ गया और वो गाड़ी सैंड में क्या बोले उसको गॉट ड्राउंड इन द सैंड। और फिर गाड़ी को जोर जोर से वो ऑपरेटर हिला रहे थे, मतलब वो सैंड को कैसे भी वो उसको ना हटा रहे थे, फिर कैसे भी करके गाड़ी ऊपर आ गई। एंड अगेन वी वर, दैट वाज द फर्स्ट शॉक। फिर वहां से वी ट्रेवल्ड फॉर अबाउट अनदर पोस्ट, वी वेंट, इट टुक अस अबाउट 2 आवर्स ऑफ ट्रेवल, इफ माई मेमोरी इज राइट, इट टुक अस 2 आवर्स ऑफ ट्रेवल टू मानसरोवर। रास्ते में क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो लैंडस्लाइड होते होते क्या हुआ, वो 60 फीट तक वो लैंडस्लाइड हो गया, तो हमको उड़ी मारना पड़ा। आप समझ गए, ऑलमोस्ट 4 स्टोरी 5 स्टोरी का बिल्डिंग, सबको उड़ी मारना पड़ा। अगर आपको यात्रा करना हो तो आप उड़ी मारो, हम लोग हैं नीचे पकड़ लेंगे बेफिक्र, ऐसे बोले वो। तो पहले तो सब हेजिटेट कर रहे थे, कुछ लोग वापस चले गए नहीं चाहिए, कुछ लोग हमारे जैसे चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, उड़ी मारे, बट देख प्रोफेशनल्स, मे बी उनको ये सब चीजों का अनुभव था और दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे हेल्ड अस ऑल वेरी वेल, वन बाय वन कहना ही पड़ेगा। एंड वी स्टार्टेड द मार्च, सो दे ड्रॉप्ड अस एट मानसरोवर। पहली ट्रिप में मुझे ज्यादा कुछ आगे बोलूं?
1: जी जी जी।
2: पहले ट्रिप में मानसरोवर में ज्यादा कुछ, बहुत बारिश था एंड और उधर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लाइटिंग फैसिलिटीज आर वेरी पुअर। यात्री निवास में जो लाइट है बस वो ही लाइट है और बाकी मून लाइट।
1: जी,
2: पहली बार जब गए तो बुद्ध पूर्णिमा ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से, कुछ पूर्णिमा था वहां पर, उतना मुझे याद नहीं, पहले ट्रिप का मुझे उतना याद नहीं है। इट वॉज वेरी शॉर्ट, यू नो, एकदम लाइटनिंग स्पीड। मानसरोवर में लेक में बहुत अंधेरा था और ज्यादा कुछ हमको दिखाई नहीं दिया, बट इट इज अ वेरी प्लेसेंट एक्सपीरियंस, वेरी नाइस सरोवर, वेरी काम, वेव्स भी कुछ नहीं है, वेरी स्मॉल वेव्स एंड वाटर इज रिफ्रेशिंग ऐसे वाटर में आप बेद करेंगे ना तो आपको थकान जो है ना वो सब निकल जाता है,
1: जी
2: वो मैंने नोट किया। बट इट वॉज ओनली एन ओवरनाइट स्टे, ज्यादा दिन नहीं था। और दूसरी बात, आपको चांद जब देखते हैं ना तो आपको लगता है वो आपका एकदम स्काई बहुत नीचे है, चांद बहुत नीचे है, आप उसको टच कर सकते, ऐसा एक फीलिंग पहले ट्रिप में मुझे आ गया। और फिर वहां से ज्यादा वक्त नहीं था, निकल गए। फिर डाई चीन करके एक जगह पे हम लोग का एक दूसरा निवास था, यात्री निवास। पहली बार ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं था, बहुत क्रूड था, अनकंफर्टेबल भी था, ये कहना ही पड़ेगा मुझे। बट फिर उधर से हम यमद्वार, अगले एक्चुअल ट्रैकिंग जो बोलते हैं ना, परिक्रमा, कैलाश यात्रा की परिक्रमा शुरू हुई फ्रॉम यमद्वार। वो बहुत कुछ वी मैनेज, पहला 13 किलोमीटर्स, बहुत से लोग पहला 13 किलोमीटर्स गए और वापस भी आ गए। हैंडफुल हमारे जैसे हो, 10 लोग ऐसे कुछ होंगे जो कैसे भी करके परिक्रमा पूरा करके आ गए। मगर इतना हम लोग मीन्स

0: बेनिफिट के लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि सबसे पहली बात तो ये कि आप एक बैंकिंग प्रोफेशनल थे, ठीक है, मैं मानता हूं आप रिलीजियस भी रहे होंगे, आप पूजा पाठ करते ही होंगे, उससे मन की शांति मिलती होगी, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि आपने कैलाश मानसरोवर जाने का विचार क्यों किया? Why did you take this decision कि मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना है? Number one, क्या आप बाबा भोलेनाथ से इतना ज्यादा influenced थे, religiously inclined थे towards शिवजी, या सिर्फ आप natural beauty देखने के लिए कैलाश मानसरोवर जाना चाहते थे? दो कारणों में से क्या कारण था? Why did you decide?
1: मेरे हिसाब से पूरा फ्लूक ही था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तभी मैं वर्किंग भी थी. It came to me all of a sudden. ऐसे ही कुछ समारोह था, वहाँ कोई टूर ऑपरेटर थी, वो बोल रही थी वैकेंसी है, आप आ सकते हैं क्या, वुड यू बी इंटरेस्टेड. तो ये था लीव मिलना चाहिए, पब्लिक सेक्टर है, एनओसी चाहिए, तो इट वाज फार फिच्ड. तो ये सब इतना सब सारा चीज होगा क्या, मुझसे पता नहीं, हो गया. सो इट वाज अ फ्लूक, इट वाज जस्ट लक, इट केम बाय चांस.
0: मतलब ये हुआ कि
1: मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, it was not planned at all, pre-planned. It was not pre-planned.
0: All right, it was not pre-planned. और ये भी नहीं था कि मेरे को दर्शन करने जाना है, exactly. बहुत इच्छा है, जैसे कई लोगों की होती है ना साहब, कि सारे ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने हैं.
1: Yes, you are right.
0: So,
1: you are right. वो क्रेविंग नहीं था, ऐसा नहीं था कि जाके देखना ही चाहिए. ये आया अचानक, ओके ठीक है देख लेंगे क्या है, सब बोल रहे हैं. फिर मैं तभी मैं वेबसाइट में से थोड़ा पढ़ने लगी कि ये सब है.
0: तो मुझे रुकिए मैम, मुझे ये बताइए कि ठीक है, ये आउट ऑफ ब्लू मून आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ गई तो आपने चूज कर ली, लेकिन जब आपने ये चूज किया कि ठीक है आई नीड टू गो देयर, सामने आया है अपॉर्चुनिटी और कैलाश मानसरोवर वैसे भी बड़ी एग्जॉटिक प्लेस है, वहां पहुंचने के बाद आपको क्या फीलिंग हुई? रिलीजियस फीलिंग हुई, स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग हुई, या सिर्फ आप सिर्फ नेचर की खूबसूरती देख रही थी? व्हाट डिड यू फील एग्जैक्टली?
1: इट इज ऑ इंस्पायरिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. यू आर स्टंड, ना बोलते हैं ना कि अरे ऐसा भी है नेचर में, नेचर इज गॉड. तो जब जैसे जैसे गए नजदीक थे द्वदाइचिन के रास्ते में, दैट रोड इज परपेंडिकुलर टू कैलाश, आप देखते हैं एक स्नो क्लैड ट्रायंगुलर माउंटेन जस्ट बिफोर यू. यू स्टार्ट, आप सोचने लगते हैं कि अरे ये किसी कोई मैनमेड स्ट्रक्चर है कि जैसे ताजमहल और कुतुब मीनार, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, समथिंग अद्भुत, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल. तो दैट वॉज द फर्स्ट, पहला थॉट था. नेचर क्या है ना, आप नेचर बोलो, गॉड बोलो, कैसे भी इंटरप्रेट कीजिए, वो ऑ इंस्पायरिंग है ही.
0: ओके,
1: ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था.
0: ओके, सो जाहिर सी बात है जब वहां पहुंचकर आपने नेचर को देखा तो ऑफ कोर्स आपके मन में ये बात भी आई कि नेचर कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, स्पिरिट कह लीजिए, आध्यात्म कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, सब एक ही है.
1: हाँ जी.
0: ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल. ऑफ कोर्स हम नेचर के पास चले जाएं या भगवान के पास चले जाएं, बात बराबर ही होती है. चलिए बहुत बढ़िया हो गया. तो आपने बताया कि प्राइवेट ऑपरेटर के साथ आप गए थे और ये 7 दिनों का ट्रिप था, 7 दिनों का कि 10 दिनों का?
1: 7 दिनों का एक्चुअल ट्रिप था. आने जाने का आप मिलाएंगे ना तो 10 दिन हो जाता है, यहाँ से काठमांडू वहां ऐसे.
0: ओके,
1: यू गो एंड मीट द ऑपरेटर एंड ऑल इट, ऑटोमेटिकली वो 10 डेज हो ही जाता है.
0: तो ये 10 दिन का ट्रिप था, 2015 में बताया था आपने. कोई स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां जाने के लिए कि आपको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, अस्थमा नहीं होना चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए, आप कोई ऐसा कुछ फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है क्या मैम?
1: वो बोलते हैं बट कोई चेकिंग नहीं करता है. बट आप चाइना की तरफ पहुंच जाते हैं ना तो वो वेट मैनेजमेंट का पहला देखने लगते हैं. अब इंडियन आर्मी के साथ जाते हैं तो इंटेंसिव मेडिकल टेस्ट होता है, वो हम बाद पे आते हैं. पर यहाँ प्राइवेट ऑपरेटर बोलते हैं देखो ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए तो ही आप

0: यो जॉइंट वो क्लियर कर देते हैं यहाँ पर इंडिया में ही। तो डायबिटीज, बीपी, ब्रोंकाइल प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये एलिमेंट्री है, आपको जरूरी होगा ही, क्योंकि उधर क्लाइमेट का कुछ भरोसा नहीं, अचानक बदल जाता है। तो बॉडी में वो कैपेसिटी होनी चाहिए।
1: ऑल
0: बहुत से
1: राइट
0: लोग जो ओवरवेट थे उनको वो चीन वाले उधर ही डाइचिन में ही रोक दिए, नहीं नहीं आप चढ़ नहीं पाएंगे करके, वो एक था प्रॉब्लम, और सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे।
1: ओके तो दोस्तों आपने जाना कि गौरी मैम ने जिस तरीके की ट्रिप की, वहां पर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उनका पर्पस क्या था। चलिए यहां पर एक बहुत ही पवित्र सा पॉज लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाबा भोलेनाथ को याद करते हैं और फिर वापस आते हैं गौरी मैम से बात करने के लिए।

0: मैम, इस बहुत ही प्यारे से भजन के बाद दूसरी बार आपने जो कैलाश मानसरोवर की विजिट किया, ट्रिप की, वो क्यों की? दूसरी बार क्यों की? मतलब क्या ऐसा रीजन रहा कि आप, क्या दोबारा से एक मौका आ गया आपके सामने, या आपने खुद चुना?
1: देखिए, सेकंड ट्रिप जो था आर्मी का जो था, वो कोई मुझे ऐसे ही वॉकिंग करते हुए, तभी रिटायर हो चुकी थी, आई जस्ट रिटायर्ड, और किसी लेडी ने ऐसे ही मुझे पूछने लगी, मुझे कंपनी चाहिए, प्लीज ज्वाइन, मैं सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैं खुद करूंगी, सब करूंगी, बुक बताया था, तो मुझे सिर्फ कंपनी दे, बिकॉज यू हैव गॉन देयर वंस, आप मुझे एक साथ इस बार मेरे साथ आई है ना, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देर इज नो गारंटी, यू नो दैट योर रैंडम सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम में सिलेक्शन होता है, तो उसने सब कुछ किया और नंबर लगा, तो नंबर लगने के बाद वो गाइडलाइंस भेजते हैं, वो गाइडलाइंस भेजते हैं, मेडिकल गाइडलाइंस, एक्सेसरीज, तो आर्मी का बहुत इंटेंसिव हेल्थ चेकअप होता है, थोड़ा भी, अभी देखिए 60 लोग निकले यात्री हमारे बैच में, परिक्रमा कितने लोगों ने किया, 25 लोगों ने, हर 5,000 फीट के हाइट में दोबारा दोबारा इंटेंसिव मेडिकल चेकअप होता है, पहले शुरुआत हुआ मेडिकल चेकअप सफदरजंग आर्मी हॉस्पिटल पे, वहां 5 लोग रिजेक्ट हो गए, मैंने क्या किया वो भी बताऊं,
0: जी हाँ,
1: मैंने
0: प्लीज
1: क्या किया, पूरा
0: प्लीज।
1: गाइडलाइंस लेके, हेल्थ चेकअप के गाइडलाइंस जो आर्मी देती है कॉपी, उसको मैं फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई, फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छे थे मेरे, वो बोले पूरा चेकिंग लेंगे, अगर मैं कहूँ हम मेडिकली अनफिट हैं तो आप सुनना जी शुड बी प्रिपेयर्ड, उन्होंने बता दिया मुझे साहब, आई सेड ओके, तो फॉर्चुनेटली वो बोले आप जा सकते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो फैमिली डॉक्टर ने क्लियरेंस दिया, तो मैंने पैसे भर दिए फॉर द ट्रिप टू द आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी था, तो फिर वी वर प्रिपेयर्ड टू लीव।
0: ओके, ऑलराइट। सो इस तरीके से आपको दूसरा मौका आया। तो यूं देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा भोलेनाथ आपको बार बार वहां बुला रहे थे। आपने तो पर्सनली ऐसा कोई ट्रिप प्लान नहीं किया था, दूसरा मौका भी आपके पास चल के आया, ठीक है ना?
1: जी
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो ट्रिप, जो यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेते हैं मैम, एक छोटा सा भजन भजन हम सुन लेते हैं, बाबा भोलेनाथ को याद कर लेते हैं, और फिर मैं आपके पास वापस आ जाता हूँ।

0: बहुत सुंदर। चलिए गौरी मैम, आगे बताइए। हम आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। रेडियो का दरअसल फायदा ही यही है कि हम लोग सुनते हैं और पिक्चर्स अपने दिमाग में बनाते हैं। तो जब आप वहां पर गए थे मैम, तो मौसम किस तरीके का रहता है वहां पर? बहुत ज्यादा ठंडा, गर्म? किस तरीके के कपड़े आपको रिकमेंडेड होते हैं आप लेकर गए थे?
1: वुलन क्लोथ्स होना चाहिए, आपके पास वुलन ग्लव्स होने चाहिए। ये सब एक इमरजेंसी के लिए, कभी कभी गर्मी भी वहाँ बहुत होता है तो यू विल नॉट रिक्वायर, बट वेदर कंडीशंस इतने फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट होते हैं कि यू मे रिक्वायर दीज थिंग्स। दूसरी बात, मुझे ना बाई नेचर माई बॉडी मुझे ठंडी नहीं लगता है, तो आई कैन विदस्टैंड कोल्ड। तो वहाँ का ठंडी ऐसा था कि आई मैनेज्ड, उतना मेरे को 3 लेयर क्लोथिंग 4 लेयर क्लोथिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो हर एक को अपना अपना सिस्टम के मुताबिक, बॉडी के मुताबिक ये हैज टू कैरी, बट मिनिमम स्वेटर, ग्लव्स, मंकी कैप ये सब लेना अच्छा है। मगर एक बात है, अगर आप कुछ भूल गए, इंडियन आर्मी आपको अपने स्टॉक से दे गिव यू दे रिप्लेनिश। अगर उनको लगता है कि आपका ये जो है इज नॉट इनफ, तो वो अपना दे देते हैं। वो एक एडवांटेज है इंडियन आर्मी का, जब कौन से भी उनका पोस्ट जाएंगे वहां आपको रिप्लेनिश हो जाएगा। आप सपोज आप सॉक्स लाने भूल गए, उलन सॉक्स दे देंगे आप।
0: तो
1: बट
0: दोस्तों
1: हेल्थ
0: आप, यस
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट,
0: मैम,
1: हेल्थ गाइडलाइंस आपको हर 5,000 फीट हाइट में हेल्थ गाइडलाइंस होते ही हैं हर पोस्ट में। ऐसे उनको थोड़ा भी डाउट हुआ तो आपको वापस भेज देते हैं।
0: वाओ, दैट इज अमेजिंग। ऑफ कोर्स कैलाश मानसरोवर इज, आपको कुछ ध्यान होगा मैम कितनी हाइट होगी जहां पर आप गए थे? अच्छा हाँ, एक और बात बताइए साथ साथ ही मैम, कितनी हाइट पे तो ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से।
1: हाँ जी, बहुत से लोगों का 90 से कम होता है तो वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। और एक जगह पे दारचूला करके जगह है, वहां पर आपको एक्लमेटाइजेशन के लिए 2-4 दिन देते हैं, वेयर द बॉडी कैन पिकअप एडजस्ट। हम क्या किए, पहले शुरू शुरू में हमारी यात्रा लिपुले से शुरू होती है, मगर उसके पहले इंडियन आर्मी क्या करती है, एक प्रार्थना रूट प्लान तैयार करती है। पहले हमको बोलते हैं पूर्णगिरी लेके गए, फिर वहां से मुक्तिनाथ लेके गए, फिर वापस वहां से जागेश्वर महादेव खतगोदाम मंदिर वहां गए, फिर वहां से हम धारचूला पहुंच गए। धारचूला से हमारा एक्चुअल ट्रेकिंग शुरू हुआ। अब धारचूला लिपुले ये सब 15,000 फीट के हाइट है। उसके पहले 15,000 फीट, हर 5,000 फीट में हाइट पे आर्मी चेक पोस्ट पे लगातार मेडिकल ऑक्सीजन लेवल सब चेकिंग होता है, बीपी सब कुछ। अब उधर पहुंचते पहुंचते, धारचूला पहुंचते पहुंचते पहला ट्रिप हमारा क्या था, शेषनाग और ओम पर्वत। ओम पर्वत इस स्पेल बाउंडिंग, ये कैसे नेचर ने ऐसे कैसे बनाया, दैट इज द फर्स्ट इनक्रेडिबल थिंग। आपको ये यात्रा में यू विल फील दैट एक्सपीरियंस व्हेन यू सी दैट वो स्नो ऐसे आकार बनाए जैसे ओम ही है। और दूसरी बात, वहां कभी कभी इफ यू आर लकी रेनबो आ जाता है। वो रेनबो ऐसा है, आपको लगता है आप आकाश को छू सकते हैं। उधर मून है तो आपको लगता है अरे मून को पकड़, मीन्स एवरीथिंग इज वेरी लो। और वो रेनबो ऐसा है, आपको सब कलर्स दिखेंगे नहीं, एक एंगल में आपको वायलेट कलर दिखेंगे, थोड़ा दूर जाइए आपको येलो कलर दिखेगा। मीन्स इतना लो है, आपको लगता है अर्थ इज जस्ट अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम यू, ऐसा एक फीलिंग आता है। सो दैट इज सो फार एज ओम पर्वत। चलो शेषनाग आगे आता है। शेषनाग ये सब आपको सिर्फ आर्मी के साथ जाने को मौका मिलता है, प्राइवेट ऑपरेटर्स लेके नहीं जाते ये सब जगह एज फार एज आई नो। अच्छा, ओम पर्वत में क्या हुआ, शेषनाग पर्वत में क्या हुआ, फॉर्चुनेटली मेरा बेडिंग ना खिड़की के पास था, दरवाजा भी, वो टेंट जो था, आर्मी टेंट जो था, वो भी दरवाजा पास में ही था। तो जो वहां खिड़की पे बैठ के ऐसे देख रही थी कि वो शेषनाग, पहला मुझे लगा वॉल्केनिक एरप्शन जैसा कुछ, वो जैसे फुलझड़ी दिवाली में स्पार्क्स आते हैं ना, ऐसा कुछ लगा। फिर धीरे धीरे देखते देखते कुछ जटा जैसा कुछ दिखने लगा, क्लाउड्स, क्लाउड फॉर्मिंग। तो मैंने बोला चलो देखते हैं बाहर जाके ही, तो देखते हैं देखते ही, तो और दो चार लोग देख ही रहे हैं उसी को। कोई मुनि ना, ऋषि मुनि, कोई पद्मासन में मेडिटेट कर रहे हैं, उनके दो हाथ ना उनके नीज पे है, ऐसा दृश्य। ये तो बहुत, इट वाज इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल कि ऐसा भी हो सकता है। फिर बाद में दैट वाज अनदर इनक्रेडिबल, एंड क्या बोलते हैं, समथिंग रिलीजियस, यू नो, एक एक फियर ऑफ गॉड आ जाता है। ये सब देखेंगे तो फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ अननोन। और फिर धीरे धीरे वो क्लाउड्स डिस्पर्स हो गया, सनलाइट आ गया, एवरीथिंग वाज, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी का वो ट्रिप, जो ओम पर्वत से बंद होता है। वहां से हम डायरेक्टली लिपुले चले जाते हैं। लिपुले इज द लास्ट इंडियन चेक पोस्ट। इट्स अबाउट 15,000 फीट, 16,000 फीट ऐसा कुछ है। गूगल से चेकअप कर लेंगे तो अच्छा होगा। लिपुले से हम नीचे उतरते हैं टुवर्ड्स द चाइनीज, दैट इज द फर्स्ट चाइनीज पोस्ट डन। तो पहाड़ से जब उतरते हैं ना, तो हम बैठ के स्लाइड कर सकते हैं, चढ़ते वक्त ही प्रॉब्लम होता है। तो कैसे भी करके आर्मी की मदद से हम उतर गए। वहां से चाइनीज वैन हमको पिकअप कर लेता है और पहला लेके जाता है। वहां भी उनका थोड़ा कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स वो सब देखते हैं। तो वहां भी मेरे ख्याल से कुछ दो चार फिल्टर हुआ, क्योंकि दो चार यात्री लोग रह गए होटल में ही। पर पहले मानसरोवर लेक गए। मानसरोवर लेक क्या, गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ 2 दिन कुछ बाकी था, तो पौर्णमी वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग। तो पहला मानसरोवर लेक का कुछ लोग, हम लोग तैयार हो गए परिक्रमा करने के लिए। मानसरोवर लेक क्या है, अबाउट 88 ऐसा कुछ, 85 किलोमीटर मेरे ख्याल से है। बट वो चाइनीज वैन आपको पूरा लेके जाती है। एक चाइनीज पोस्ट है एग्जैक्टली ऑपोजिट। ये ऐसा है, यहाँ पर हमारी यात्री निवास, सामने मानसरोवर और उसके आगे चाइनीज पोस्ट। ये वैन हमको पूरा घुमा के वहां तक छोड़ देती है। सो वी ऑलमोस्ट 75% तो कवर हो ही जाता है। एक 20-25-22% कुछ आप पैदल चल के आते हैं। तो रात को 10 बजे निकले, सवेरे 3 बजे पहुंच गए और मानसरोवर लेक में। वहां पर हम 2 2 नाइट्स वी स्पेंट। तो इट वॉज, यू नो, पहला चीज आपको क्या लगेगा, ब्रॉड डेलाइट में जब देखेंगे दुनिया भर का माउंटेन्स दिखेंगे, कलरफुल माउंटेन्स, पिंक कलर, ग्रीन कलर, इतने मिनरल्स है रिच, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। येलो कलर माउंटेन, ब्लैक कलर, कॉफी कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, सब तरह तरह के माउंटेन्स, यू नो, इट इज रियली वेरी ब्यूटिफुल। उसके बैकड्रॉप में आप ऑलमोस्ट फुल मून देख रहे हैं और क्लियर स्काई से, तो आपको कैलाश भी दिखाई देगा। हम लोग को कैलाश भी दिखाई दिया, उसका कैलाश का द टॉप ना, द पीक पोर्शन, स्नो क्लैड पीक, इट्स अ ब्यूटिफुल साइट। और लेक में हम पहुंच गए, वो परिक्रमा करने के बाद पहुंच गए। फिर वहीं पर हम लोग ने तब का तब उधर स्नान कर लिया, सवेरे सवेरे पूरा बॉडी एक निकल गया हम लोगों का। इट इज रियली, अफकोर्स वाटर इज वेरी कोल्ड, यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी टू विदस्टैंड दैट कोल्ड। इफ यू कैन डू दैट, यू हैव योर वेट मैनेजमेंट, योर जर्नी इज फैंटास्टिक। और उस दिन रात को क्या हो गया, एक और दिन जब स्टे किया उधर, रात को क्या हो गया, सडनली हेवी रेन्स। उधर गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन के लिए फर्स्ट में एक मॉनेस्ट्री है, वो लामा लोगों का ना, वो पगोड़ा, वहां पर 100 लैंप्स लगे हुए थे। वो पंचन लामा आने वाले थे, तो उनका वो टिपिकल बुद्धिस्ट लैम्प्स जो लगाते हैं, वो कुछ 100 लैम्प्स थे। सो इट वॉज वेरी ब्राइट, बट देयर वर वेरी हेवी रेन्स। बट वो हेवी रेन्स में जब वो मैंने देखा, वो 2 3 लामा बैठे हैं, चलो उनके साथ जाके बैठ जाएं, वहाँ टिबेटन वुल्फ्स हैं, वुल्फ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं,
0: भेड़िया।
1: भेड़िया, वो जरा डर लगता है क्योंकि वो आके देखिए ना आप, 6 फीट ऐसे अंतर में आके बैठ जाएंगे, दो चार आके बैठ जाएंगे, तो जरा डर ही लग रहा था मुझे। बट फॉर्चुनेटली दे डिड नॉट हार्म, दे डिड नॉट डू एनीथिंग। समटाइम्स दे स्टार्ट क्राइंग, यू नो, वीपिंग, लुकिंग एट द स्काई, एंड देन इट्स क्वाइट स्कैरी, पर्टिकुलरली एट नाइट, क्योंकि वहाँ लाइट फैसिलिटीज नहीं है, इट इज सो डार्क ना। बट वो लाइटिंग जो था, दो 100 लैम्प जो 100 लैम्प जो जल रहे थे पगोड़ा में, सम अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस था। तो तभी हेवी रेन्स था, वो हेवी रेन्स में कुछ लाइटनिंग जैसा गिर रहा था, तो अपना ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन ये है कि अरे अभी लाइटिंग आ गया तो जोर से थंडर लगे, चलो कान बंद कर लेते हैं। तो मोबाइल पकड़े, फोटो निकाले, या कान पे प्रोटेक्ट योर ईयर्स, पता नहीं चला। तो एक लामा बता रहे थे कि नो नो नो साउंड, नो साउंड। तो वो कुछ बोल रहे थे कि वो पहाड़ों के बीच में ही वो साउंड ऐसा कुछ बोले लगता है। दूसरे ने और कुछ बोला जो मेरी समझ के बाहर था। दिस वॉज अनदर शॉकिंग और इनक्रेडिबल विजन। ऐसे हर एक लाइटनिंग के साथ में वी कुड सी सम बींग्स, क्या बोलूं क्या वर्ड बोलूं पता नहीं, बींग्स, सम क्रिएशन, समथिंग। एक 5 बच्चे पानी में खेल रहे थे, पानी के ऊपर, वो लाइटनिंग के साथ साथ। तो वो बोले वो 5 नहीं है, 7 हैं, वो सप्तऋषि करके बोले। अब पता नहीं भाई, सब देखिए, कुछ रिसर्च हुआ नहीं इन सब बातों पे, वी डोंट नो। दूसरा, लाइटनिंग पे आपको 2 ह्यूमन फॉर्म दिख रहे हैं, जोड़ी जोड़ी करके जा रहे। अचानक 2 बजे ना सवेरे सवेरे ये सब बंद हो जाता है, सब लाइटिंग बिटनिंग बंद। अब ये सब दृश्य देखकर ना एक क्या हो रहा है, कुछ रिसर्च हुआ नहीं आपके पास, सवाल पूछो तो भी कोई जवाब दे मिलेगा नहीं, बिकॉज वी डोंट नो। बट एक डाउट है, वो मैं आपको आगे से बताती हूँ, सो दैट वी डोंट वेस्ट आवर टाइम। तो ये ऐसा हुआ, मानसरोवर का यात्रा ऐसे सस्पेंस में खत्म हो गया। वहां से निकले यमद्वार, नेक्स्ट डे यमद्वार गए। एज यूजुअल ये सब सुना होगा, पढ़ा भी होगा। पहला 13 किलोमीटर्स, पहले दिन 13 किलोमीटर्स चलते हैं, कुछ लोग 13 किलोमीटर्स करके वापिस आ गए, वो आगे जाना नहीं चाहते थे, तो बहुत से लोग पीछे रह गए। मीन्स वो लोग वहीं पर रहते हैं, तो उतना रिटर्न में, हमारे रिटर्न में उनको पिकअप करके आर्मी लेके चाइनीज वैन में आ जाते हैं। तो पहले 13 किलोमीटर्स में एक सांपो मॉनेस्ट्री, एक हिल में, बहुत छोटा हिल है, ज्यादा नहीं, सीढ़ी मस्ट बी अबाउट 50 सीढ़ी कुछ होगा। तो हमारे साथ ना जो असामीज के दो थे, मेरे ख्याल से वो शायद पैरामिलिट्री फोर्सेस कुछ तो थे, तो वो लोग जाने वाले थे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, कैन यू हेल्प मी ऑल्सो, टेक मी। तो लिए, तो वहां पर वो मलरेपा करके कोई सेंट था, वो एक सेंट है जो पूरा कैलाश चढ़ के उतर, ही इज द ओनली सेंट हु क्लाइम्ड माउंट कैलाश। उनका फोटो भी, स्केच भी है, और मॉनेस्ट्री में है। और उनका 6th या 7th जनरेशन वहां पर, एक बहुत, और हाँ इम्पोर्टेंट, उनका लाइफ स्पैन 110 ईयर्स मिनिमम है इट सीन्स। वो मॉनेस्ट्री में जो कोई लामा थे, दे लिव अप टू 110+ ईयर्स। और एक बहुत वृद्ध ओल्ड मैन थे, हु इज ऑल्सो आई थिंक 6th और 7th जनरेशन ऑफ दैट मलरेपा। तो वो बोल रहे थे, अभी वो कच्चा हिंदी में, वो चाइनीज में बोल रहे थे, बट एक तो यंगस्टर से जो कच्चा हिंदी इंग्लिश ऐसा मिक्स करके बोल रहे थे हमको। वो बोल रहे थे अगर आपको ज्ञान पाना है, यू हैव टू फेस नॉर्थ, और वो सांपो एग्जैक्टली इज फेसिंग द नॉर्दर्न फेस ऑफ कैलाश। ये सब वो बोले, कुछ एक आधा घंटा कुछ थे, फिर हम निकल गए। मे बी उनको पता है कैलाश का सीक्रेट, शायद वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं, कुछ देखा होगा वो लोग। दे हैव बीन लिविंग इन दैट मॉनेस्ट्री फॉर ईयर्स, वो बहुत जूना मॉनेस्ट्री है, अबाउट 800 ईयर्स, 900 ईयर्स ओल्ड। चलो ठीक है, उतर गए वो। पहला 13 किलोमीटर्स में ये पहला पहले दिन में ये कवर किया, आगे कुछ नहीं था। नेक्स्ट डे 4 बजे वापस निकले फ्रॉम द न्यू यात्री निवास। यहाँ हमको पहले आपको दिखेगा गौरी कुंड। गौरी कुंड ना एक 2000 फीट, 2000 फीट के 3000 फीट नीचे, वो कुछ लड़के हैं हेल्पर्स जो आपको हाथ पकड़ के नीचे उतारेंगे। आपको नहाना हो गौरी कुंड में, यू कैन हैव योर बाथ। पानी भी लेकर आते हैं, जल भी लेकर आते हैं वहां से, वो तीर्थ कुंड से वो तीर्थ भी लेकर आते हैं। वो दैट वॉज वन वेरी नाइस स्पॉट, बहुत अच्छा है। बस सीनरी ना है कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। ये सब चीज आपको देखना ही पड़ेगा। और अचानक अच्छा सनशाइन भी आ गया, ड्राई वेदर हो गया, सो यू नो वी कुड एंजॉय। नीचे क्या हो गया, पहले ट्रिप में क्या होता, वो मैं बोलूं पहले ट्रिप में क्या होता। जो अचानक मुझे याद आया, बारिश इतना था पहले ट्रिप में, अपना वो प्राइवेट ऑपरेटर के ट्रिप में बारिश इतना जोर का था। और पता नहीं वो लाइटनिंग जो था वो वॉज द ओनली लाइट, आपके सामने और कोई लाइट नहीं था। आप टॉर्च है तो बात ठीक है, तो वो जब लाइटनिंग आता था ना बराबर वो कैलाश के ऊपर ही आता था। और इतना हेवी रेन्स, वो पानी ऐसा रोल हो रहा, मैं तो एक जगह पे बैठ ही गई बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव। वो पहले ट्रिप की बात कर रही हूँ, पानी ऐसा रोल होके ऐसा जोर से प्रेशर से नीचे आ रहा था कि मुझे लगा बैठ जाऊं, और बैठ ही गई। और फिर बाद में मुंह, ये सेकेंड ट्रिप में वेदर बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी प्लेसेंट। वी कुड सी सनराइज में वो ऊपर वो गोल्डन जैसा, एकदम स्वर्ण जैसा कवरिंग वो कैलाश के ऊपर, सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल साइट। ये सब वो सब देखते हैं ना तो पावर ऑफ नेचर आपको इनफ टू फाइट एनी दैट। यस नेचर इज पावरफुल और आप कुछ कर नहीं सकते। बेस्ट थिंग इज क्या कहते हैं हम लोग में शरणागति कहते हैं, बस वो वही ऑप्शन है। और वो नदी भी इतना तेजी से बहता है ना, और आवाज भी इतना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ठीक है, ये गौरी कुंड पास किए, नीचे उतरे, फिर कैसे उनके वो हेल्पर्स के हाथ पकड़ते थे, और हम कैसे भी चढ़ के ऊपर आ गए। प्रोसीड फर्दर, एज यू प्रोसीड फर्दर यू गो टू डोलमा पास। ये दिस इज ऑन दी सेकेंड डे आपका गौरी कुंड के पास। हाँ, गौरी कुंड के पास आगे से थोड़ा सा ना आपको वो चरण स्पर्श करके एक जगह आता है, उधर रात को ठहरते हैं। वो चरण स्पर्श ऐसा जगह है ना कि खिड़की के पास ही आपको कैलाश दिखता है। इट्स सो क्लोज बाय, यू कैन सी कैलाश एट वेरी क्लोज क्वार्टर्स फ्रॉम द विंडो, वो यात्री निवास के पास। तो अब ये यात्री निवास से बाहर आते हैं तो एक 1000 फीट पकड़े, 1500 फीट की ऊपर चढ़ाव है, वहां से आपका चरण स्पर्श शुरू होता है। चरण स्पर्श क्या है, कैलाश के एकदम करीब, यू कैन टच द वॉल्स ऑफ कैलाश। एक 450 मीटर्स, 500 मीटर्स जगह है जहां यू कैन वेरी आसानी से आप चढ़ के उसको, यू नो यू कैन ट्राई टू एम्ब्रेस द माउंटेन। तो वो वहां जब हम लोग पहुंचे, उधर सामने क्या है, बहुत सारे केव्स हैं। पहले पहले मॉनेस्ट्री था ना, वे लामाज लोग रहते थे और प्रे करते थे, वो सब आपको दिखाई देगा। वो कहते हैं ऋषभ देव, जो आदिनाथ जैन लोग मानते हैं ना आदिनाथ जी, वो भी उधर थे, वहां मेडिटेशन उनका हो। उसके पास आप करीब जा सकते हैं, आप वहां बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं। यू कैन वेदर वॉज वेरी क्लियर सो वी कुड, हम ये सब कर पाते थे। फिर आगे वो सब क्रॉस करके आप जा रहे हैं मणिमहेश। मणिमहेश ये क्या है, एक रॉक फॉर्मेशन है जो बिल्कुल हनुमान लगता है, उसके नीचे ही सब पूजा पाठ। अब मुझे ये भी कहना चाहिए कि हमारे 3-4 लोग थे जो विष्णु सहस्राम सब पाठ था, चलते चलते हम विष्णु सहस्राम ही बोलते रहे पूरा, कम से कम 300-400 बार तो बोले होंगे उतरते उतरते उधर तक। तो वी वर चैंटिंग विष्णु सहस्राम व्हेन वी वर गोइंग, ये हनुमान के नीचे मणि महेश हनुमान का घर के नीचे वो पूजा चल रहा था, वहां भी वो लोग विष्णु सहस्त्र नाम की बोल रहे थे। दिस इज अनदर थिंग, अभी कैलाश पर्वत है और वो विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे हैं, कुछ लोग रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। फिर वहां से आगे और जाते जाते एक थोड़ा सा डर लगने लगा। क्यों डर लगने लगा? क्योंकि एक पहली जेंट्स चले गए, जेंट्स आगे चले गए और हम लोग धीरे धीरे, तीन लेडीज पूरे यात्रा में, सिर्फ 10 लेडीज थे, बाकी सब जेंट्स ही थे। तो हम पीछे पीछे जा रहे थे, अचानक देखा वो लोग रोक रहे हैं। अब मुझे पर्सनली लगा कोई देख रहा है मुझे, somebody is watching me, वो एक एक फनी फीलिंग। तो वहां तक वो जेंट्स जो गए थे वहां रोक गए। पहले सोचा वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, पता चला उनको भी वही एक्सपीरियंस हुआ कि कोई देख रहा है हम लोगों को। तो वो आकार पे, अभी ये जब फोटो जब निकालते हैं ना, आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो ब्लाइंडली आप फोटो निकालते हैं। जब आप अपने रूम में आ जाते हैं, एक एक फोटो को आप जांच करते हैं, देखते हैं, तो एक फोटो में मुझे एक स्लीपिंग मदर, अ मदर इज फास्ट स्लीप, पास में गणपति का एक छोटा सा चाइल्ड बाल गणेश सो रहा, ऐसा एक। और माउंटेन में पास जाएंगे ना, वो जटा, वो हाथ में वो शिव का आकार, वो रॉक्स में आपको दिखाई देता है। वो रॉक फॉर्म, वो आइस फॉर्मेशन ऐसा है कि वो आउटलाइन बन जाता है। ये सब थोड़ा अद्भुत लगा। और आंख ऐसा लगता है पहाड़ के ऊपर ना कुछ आंख है, मीन्स वहां बर्फ ही नहीं है, सिर्फ आंख, दो आंख दिख रहे हैं। तो ये सब फीलिंग एक अनयूजुअल फीलिंग है। रॉक के ऊपर आप, आपको पांव में आपको लगता है कि आप थोड़ा देर बैठ जाएं, किसी रॉक के ऊपर बैठ जाएं। रॉक के ऊपर बैठेंगे तो गिर जाते हैं नीचे, वो पानी का फोर्स नीचे इतना है कि वो रॉक्स भी ऊपर नीचे हिल रहे हैं। ये सब अद्भुत चीजें देखने को मिली हमको। फिर वहां से डोलमा पास गए अगले दिन सवेरे, लास्ट डे। देखिए परिक्रमा आपका ना 2.5 दिन में खत्म होता है। तीसरा दिन आप डोलमा पास, एज यूजुअल डोलमा पास इज रिगार्डेड एज मोस्ट क्रिटिकल। वो डोल माने डोल बजाने वाली माँ, वो पार्वती को डोलमा बोलते हैं, कैलाश पर्वत को रमपोच ऐसा कुछ बोलते हैं, रमपोचे ऐसा कुछ बोलते हैं। तो डोलमा पास इज द मोस्ट क्रिटिकल, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट्स वहीं पर होता है। बहुत नैरो स्ट्रिप है, थोड़ा भी आपका पांव इधर उधर चला गया तो डेंजर, देर इज नो अदर वे। तो एक फियर ऑफ गॉड आ जाता है ऑटोमेटिकली, नेचुरल फीलिंग है वो, फियर ऑफ गॉड। तो कैसे भी करके वी ऑल मैनेज्ड, कुछ एक्सीडेंट्स नहीं हुआ। ऑल द यात्री हु टुक द परिक्रमा, वी ऑल धीरे से धीरे धीरे धीरे नेगोशिएटेड एंड नीचे पहुंच गए। नीचे आपको एक रिवर फ्लो होता है, अभी कुछ लोग उसको इंडस बोलते हैं, अभी हम भगीरथी बोलेंगे नहीं तो गंगा बोलेंगे। हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से इट इज भगीरथी ब्रिंग्स गंगा डाउन। तो उसमें जब आप स्नान करते हैं, हम लोग सबने एक डुबकी लिया, हम पूरा दर्द ना थकान सब खत्म हो गया। और वही गीले कपड़े में हम हमेशा रहते हैं, हाँ, क्योंकि वहां चेंज करने का कोई सुविधा नहीं, मगर कुछ भी वो ठंडी शिवरिंग कुछ नहीं। समीर जी, आई हैव टू मेंशन दिस, दीज आर द इनक्रेडिबल थिंग्स। अगर कोई पूछेगा कैलाश मानसरोवर में कौन सा मोस्ट आपको कौन सा एक्सपीरियंस आपको एकदम अद्भुत लगा, रहे एवरी स्टेज कुछ ना कुछ आप नया एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। और अभी तक मुझे देखिए इतने साल के बाद भी मुझे याद है और मैं सोचती रहती हूँ क्या क्या देखा हमने, कैसा, ऐसे कैसे हो सकता है। बट कुछ रिसर्च नहीं है, कोई जवाब नहीं। दिस इज इन शॉर्ट द ट्रिप। मगर एक बात मुझे, आई वॉन्ट टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो माई प्रोफाउंड प्रेयर्स एंड माई थैंक्स फॉर, मैंने एक रिव्यू पिटिशन डाली कैलाशपति को, वो मुझे बोलना ही चाहिए। मैंने बोला इतने श्रद्धालु इतने यात्री भक्ति से इतनी कठिनाइयों में दर्शन के लिए लेने आ रहे हैं, और पूरा खानदान लेके नास्ती के घर में बैठे हो, ये मुझे जरा अनइमेजिनेबल लगा। मैंने मेरा रिव्यू पिटिशन डाला उधर, आई डोंट नो वेदर ही इज गोइंग टू हियर, बट ये दिस इज रियली अस्टाउंडिंग। आई थिंक ही शुड कैलाशपति मस्ट रिकंसिडर एंड सी व्हाट बेस्ट ही कैन डू। जो कुछ भी हुआ, आई यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक द इंडियन आर्मी, पर ये दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। वो आईटीबीपी बोलिए, बॉर्डर सिक्योरिटी सीआरपीएफ बोलिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फैंटास्टिक रियली। और 90,000 में, 90,000 में इतने 24-25 दिन के लिए सब मुफ्त में, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, वेरी नाइस। जब हम वापस फुट पे चाइनीज के फुटहिल्स पे पहुंचे, ऊपर लिपुले वो सब खड़े थे, मेरे लिए वो सब रियल टाइम महादेव थे। आई विल ऑलवेज प्रे फॉर देम। और ऐसे आइए आइए, घबराइए मत, माँ जी आप हाथ पकड़ लेते हैं, विल हेल्प यू आउट। ये कॉन्फिडेंस देख के सच्ची आई वाज रियली वेरी मच अमेज्ड, एंड थैंक्स ऑफ ऑल टू यू टू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वे। ये सब अनएक्सपेक्टेड ऑनर है मेरे जैसे कॉमनर के लिए। आई नेवर थॉट, आई हैव नथिंग मोर टू से समीर जी, थैंक यू।
0: थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये गौरी जी की यात्रा थी कैलाश मानसरोवर की, जो उन्होंने महसूस किया वो हमें बताया। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो होके आए होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो नहीं जा पाए हैं या नहीं जा सकते हैं कुछ भी कारणों की वजह से, गौरी जी के साथ कैलाश मानसरोवर की विजिट उन्होंने कर ली। बहुत ही सुंदर यात्रा, बहुत ही सुंदर जगह, और किस किस तरह की फीलिंग्स भावनाएं आती हैं वो भी गौरी जी ने न्यूट्रल होकर बताने की कोशिश की। गौरी जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, जो आपने
1: थैंक
0: कैलाश मानसरोवर के दर्शन हमको कराए। थैंक
1: यू,
0: यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच समीर जी, वेरी काइंड ऑफ यू।
2: ओम भास्कराय नमः।
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज की बातें इधर की उधर की में एक बड़ा फिल्मी सवाल, जी हाँ, बड़ा वाला फिल्मी सवाल। अगर आपका जोडियक साइन यानी कि आपकी राशि कोई आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो वो कौन होती? सोचिए सोचिए सोचिए। क्या आप गीत होते, पू होते, पीकू होते, मुराद होते, या फिर आनंद होते? आज हमारी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, और हाँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूं, इसे कुंडली से मत समझिए, बस एंटरटेनमेंट समझिए। हो सकता है आपकी राशि का कैरेक्टर आपसे बिल्कुल मैच करे, और हो सकता है कि सुनते सुनते आप बोल उठें, मेरी राशि को मेरी इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी। तो चलिए शुरू करते हैं। फायर साइंस, सबसे पहला फायर साइन एरीज, और इसे हम रिलेट करते हैं हमारी गीत के साथ। जी हाँ, जब वी मेट की वो गीत। अगर आप एरीज हैं तो आपके अंदर गीत वाली एनर्जी जरूर होगी। सीधी बात, दिल में जो आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया, और जिंदगी के लिए एक ही नियम, मैं अपनी फेवरेट हूं। एरीज लोग फियरलेस, एनर्जेटिक, स्पॉन्टेनियस होते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि कभी कभी दिमाग के ब्रेक से पहले मुंह और पैर दोनों चल पड़ते हैं, और फिर बाद में रिग्रेट होता है, हाय मैंने ये क्या कर दिया। अगर आप एरीज हैं तो एक सवाल, क्या आप भी प्लान बनाने के बजाय प्लान के बीच में एडवेंचर शुरू कर देते हैं? सोच के देखिएगा। फिर आता है सेकंड फायर साइन लियो, और वो है हमारी पू। जी हाँ, कभी खुशी कभी गम की पू। लियो आए और स्पॉटलाइट ना हो, इम्पॉसिबल। पू की तरह ड्रामा, ग्लैमर, कॉन्फिडेंस, और हाँ, बहुत सारा अटेंशन चाहिए लियोस को। ऐसे लोगों को एंट्री भी कोई नॉर्मल नहीं चाहिए, एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि बैकग्राउंड म्यूजिक खुद ही बजने लगे, हु इज शी, और आप कहें मैं पू हूं। लियो पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस और वार्म्थ होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही नोटिस मी। तो लियो वालों, सच सच बताइए, आप फोटो में सेंटर में ना हो तो फोटो क्या आपको पसंद आती है? सोच के देखिएगा। फिर आता है थर्ड फायर साइन सैजिटेरियस, ये हैं हमारे बनी, ये जवानी है दीवानी के। सैजिटेरियस का दिल एक जगह कभी नहीं टिकता, बनी की तरह नई जगहें, नए एक्सपीरियंस और नए एडवेंचर्स। आज जयपुर, कल मनाली, परसों पता नहीं, देख लेंगे।
फ्रीडम इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. रूटीन बहुत बोरिंग. एडवेंचर कब चलना है. ऐसे लोग सपने देखते भी हैं और उनके पीछे भागते भी हैं. मैं दौड़ना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता. याद है ना ये डायलॉग. कभी कभी बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि अगला एडवेंचर ढूंढते ढूंढते पिछला वाला प्रॉपरली एंजॉय ही करना भूल जाते हैं. फिर आते हैं हमारे ग्राउंडेड सॉलिड रूटेड अर्थ साइंस. सबसे पहला अर्थ साइन है टॉरस और इसे हम जान सकते हैं सिमरन के कैरेक्टर से. हमारी अपनी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन. टॉरस वालों में सिमरन वाली लॉयल्टी होती है. दिल से जुड़े होते हैं. अगर दिल से जुड़ गए तो फिर आसानी से छोड़ेंगे नहीं. ट्रेडिशंस को समझते हैं, फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो अपनी बात के लिए खड़े भी हो सकते हैं. और टॉरस का एक और ट्रेट है उनकी जिद. बाप रे बाप, एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो बस राज क्या पूरी दुनिया समझा ले. नहीं मतलब नहीं. वो बोलते हैं ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. बस इनकी भी कुछ यही कहानी है. आप टॉरस हैं तो बताइए आप लॉयल ज्यादा हैं या जिद्दी ज्यादा हैं. फिर आता है हमारा दूसरा अर्थ साइन वर्गो और ये है हमारे कबीर फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. वर्गो को लाइफ अगर मिल जाए तो वो उसकी स्प्रेडशीट बना देते हैं. कबीर की तरह प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड, ओवरली एम्बिशियस और हर चीज का एक प्लान होता है. और प्लान का भी बैकअप प्लान होता है और बैकअप प्लान का भी कभी कभी एक और बैकअप प्लान होता है. उफ, वर्गो वालों को चीजें ठीक तरीके से करना बहुत पसंद है. ये बिल्कुल परफेक्शनिस्ट होते हैं. लेकिन कभी कभी इतनी प्लानिंग हो जाती है कि जिंदगी प्लान के बाहर कुछ कर दे तो सिस्टम हैंग. जी हाँ, इनका सिस्टम हैंग हो जाता है. अगर आप वर्गो हैं तो एक सवाल, क्या स्पॉन्टेनियस ट्रिप का आइडिया सुनकर पहला सवाल होता है आइटिनरी भेजो. सोचिएगा. फिर आते हैं हमारे थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न. ये होते हैं हमारे पीकू फ्रॉम द फिल्म पीकू. कैप्रिकॉर्न के सामने जिंदगी की कितनी भी उलझने डाल दो, जवाब आएगा ठीक है देखते हैं. पीकू की तरह ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और फियर्सली इंडिपेंडेंट होते हैं. ड्रामा के बीच भी कॉमन सेंस जिंदा रहता है. फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करियर हो या डेली लाइफ का क्योस हो, हैंडल कर लेंगे. और इनका यूमर थोड़ा ड्राई, थोड़ा सरकास्टिक होता है. मतलब सामने वाला इमोशनल स्पीच दे रहा है और कैप्रिकॉर्न अंदर ही अंदर सोच रहा है इसका सल्यूशन क्या है. जी हाँ, कैप्रिकॉर्न वालों, आप इमोशनल सिचुएशन में भी प्रैक्टिकल सल्यूशन ढूंढने लगते हैं ना. सोचिएगा. फिर आते हैं हमारे एयर साइंस. उफ, ये तो उड़ते ही रहते हैं. सबसे पहला एयर साइन होता है जेमिनाई और इसे मैं जानूंगी हमारे राजू गाइड की तरह फिल्म गाइड से. जेमिनाई मतलब क्यूरियोसिटी प्लस कॉन्वर्जेशन. चटर पटर चटर पटर चटर पटर. राजू की तरह अडेप्टेबल होते हैं और जैसे ही सिचुएशन बदलती है ठीक है नया प्लान बनाते हैं. बात करनी हो, जेमिनाई रेडी. नई जगह जाना हो, जेमिनाई रेडी. नया एक्सपीरियंस लेना हो और रेडी रेडी रेडी. इनकी एक खासियत होती है, ये मुश्किल सिचुएशन में भी रास्ते निकाल ही लेते हैं और कभी कभी रास्ता निकालते निकालते खुद नहीं जानते कि डेस्टिनेशन थी क्या.
जेमिनी वालों, आप एक वक्त में कितनी कॉन्वर्सेशंस चला सकते हैं? 3-4 या व्हाट्सएप में 17 चैट्स अनरेड हैं? सोच के देखिएगा। फिर आते हैं हमारे दूसरे एयर साइन लिब्रा, और ये होते हैं राहुल कुछ कुछ होता है वाले। लिब्रा का मतलब ही होता है बहुत सारा चार्म। सोशल हैं, फ्रेंडली हैं और ऐसे इंसान हैं जिनके आसपास लोग रहना पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट सभी को इन पे क्रश होता है, गर्ल और बॉय। राहुल की तरह दोस्त बहुत होते हैं, स्टाइल बहुत होता है, चार्म बहुत होता है, लेकिन डिसीजन यार सोचते हैं। लिब्रा को बैलेंस पसंद है, सबको खुश रखना चाहते हैं। प्रॉब्लम बस छोटी सी है कि कभी कभी सबको खुश करते करते खुद डिसाइड ही नहीं कर पाते कि टीना के साथ जाना है या अंजलि के साथ। याद है ना लिब्रा वालों, रेस्टोरेंट में मेन्यू देखने में कितना टाइम लगता है जरा सोच के बताना। फिर आते हैं हमारे थर्ड एयर साइन अक्वेरियस, और ये है गली बॉय के मुराद की तरह। अक्वेरियस थोड़े हटके हैं, मुराद की तरह बहुत ऑब्जर्वेंट, डीप थिंकर और अपनी आवाज ढूंढने वाले होते हैं। भीड़ में खड़े होकर भी अपनी दुनिया देख सकते हैं। ऐसे लोग हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, सवाल करते हैं, नया सोचते हैं और कभी कभी सोसाइटी बोले ऐसा कौन करता है, और अक्वेरियस बोले मैं करता हूं। अगर आप अक्वेरियस हैं तो शायद आपका फेवरेट सेंटेंस है, मुझे कुछ अलग करना है। जी हाँ। ओहो, अब आते हैं हमारे वाटर साइंस, इनका क्या कहना। पहला वाटर साइन है कैंसर, और ये है हमारी कल हो ना हो की नैना। कैंसर का दिल बहुत बड़ा होता है, नैना की तरह सेंसिटिव, केयरिंग और फैमिली की तरह फियर्सली प्रोटेक्टिव होते हैं। बाहर से थोड़े रिजर्व्ड, लेकिन अंदर पूरा एक इमोशनल यूनिवर्स होता है। आपके अपने लोग खुश हैं, आप खुश, उन्हें प्रॉब्लम है और आपकी नींदें उड़ गईं। कैंसर का एक हिडन टैलेंट होता है दूसरों की चिंता करना, कभी कभी इतनी कर लेना कि सामने वाला बोले मैं ठीक हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो, नहीं मैं तुम्हारी आंखों से समझ गई कि कुछ गलत है। ऐसे ही होते हैं कैंसर्स। फिर आते हैं स्कॉर्पियो, लम्हे की पूजा याद है आपको। एक स्कॉर्पियो के इमोशंस हल्के वर्जन में नहीं आते, जो फील करेंगे पूरा फील करेंगे। पूजा की तरह इंटेंस है, पैशनेट है, प्राइवेट है और इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। इन्हें अपनी फीलिंग्स हर किसी को बताना पसंद नहीं, लेकिन जिससे दिल से जुड़ जाएं उसके लिए कमिटमेंट गहरा हो सकता है, डीप रनिंग वाटर्स जैसा। स्कॉर्पियो को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके दिमाग में एक फिल्म चल रही होती है और बाकी दुनिया को ट्रेलर भी नहीं मिला अब तक। स्कॉर्पियो वालों, आप क्या सीक्रेट रख सकते हैं, या बेस्ट फ्रेंड को 11:30 बजे एक बात बताऊं, किसी को मत बताना। जी हाँ। फिर आते हैं पाइसिस, और पाइसिस को हम जान सकते हैं आनंद फिल्म के आनंद से। आनंद जैसे पोएटिक, सोलफुल और एम्पथेटिक, और दूसरों की जिंदगी में रोशनी बांटने वाले लोग होते हैं ये। ऐसे लोग खुद को मुश्किल में डाल सकते हैं लेकिन सामने वाले को हंसा देंगे। किसी को दर्द हो तो अपना दर्द भूलकर उनके पास बैठ जाएंगे। पाइसिस की खूबसूरती यही है, ये सिर्फ जिंदगी जीते नहीं, हर लेवल को, हर मूड को महसूस करते हैं। और आनंद की तरह
कभी कभी किसी इंसान का सबसे बड़ा असर उसके जाने के बाद समझ आता है। कहते हैं ना, बाबू मशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। अपनी ज़ोडियक साइन याद कीजिए और सोचिए, क्या आप वैसे ही हैं जैसे आपकी बॉलीवुड पर्सनालिटी है, या फिर आप कह रहे हैं कि मेरी पर्सनालिटी तो 12 कैरेक्टर्स का कॉम्बो है। और सच कहूं, शायद हम सब थोड़े गीत हैं, हम सब थोड़े पीकू हैं, थोड़े पू हैं, और कभी कभी थोड़े आनंद भी हैं। क्योंकि इंसान सिर्फ एक राशि नहीं होता, एक पूरी फिल्म होता है। कभी रोमांस, कभी कॉमेडी, कभी ड्रामा, और कभी इंटरवल के बाद ही समझ आता है कि कहानी जा कहां रही है। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आप अपनी जोडियक साइन के साथ कमेंट या मैसेज करके बताइए कि क्या आपका बॉलीवुड कैरेक्टर आप पे फिट बैठता है। तब तक अपनी जिंदगी की फिल्म एंजॉय कीजिए। हीरो भी आप हैं, हीरोइन भी आप हैं, और स्क्रिप्ट राइटर भी आप ही हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से कहा, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि 7 जन्मों तक बस तुम ही मेरी पत्नी बनो, मैं यही चाहता हूँ। दूसरी सहेली बोली, अरे ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, 7वें जन्म के बाद ना किसी और को वादा कर रखा होगा।
2: What?

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा। दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की में बात होगी एक चीज की जो हम सबके आसपास है और जिसे हम सब रोज देखते हैं। क्या है, क्या है, क्या है? कलर्स। जी हाँ, एक रेनबो ऑफ कलर्स की बात करेंगे आज हम। सवाल ये है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक या व्हाइट? और अगर मैं कहूं कि आपका फेवरेट कलर आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग हिंट्स और हाइलाइट्स दे सकता है, तो जरा अपना फेवरेट कलर दिमाग में फिक्स कर लीजिए एक बार, और आज देखते हैं कि आपका कलर आपके बारे में क्या कह रहा है। बस एक छोटी सी बात, ये कोई पर्सनालिटी टेस्ट या फाइनल जजमेंट नहीं है दोस्तों। कलर साइकोलॉजी में कलर्स को कुछ पर्सनालिटी ट्रेट से जोड़ा जाता है, तो इसे एक फन एक्सरसाइज की तरह लीजिए, बहुत सीरियस मत हो जाइएगा, अपने बारे में थोड़ा सा जानने और हंसने के लिए। चलिए, अगर आपको रेड पसंद है तो भाई आप में थोड़ा जोश तो जरूर है। रेड को अक्सर एनर्जी, हिम्मत, पैशन और एम्बिशन से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग कुछ करना चाहते हैं और सिर्फ सोचना नहीं, करके दिखाना चाहते हैं। इन्हें एक्साइटमेंट पसंद होती है, कंपटीशन से भी इन्हें कोई डर नहीं लगता, लेकिन कभी कभी एक्साइटमेंट में ब्रेक थोड़ा लेट लग सकता है। जी हाँ, अगर आप रेड लवर हैं और शॉपिंग में रेड ड्रेस, रेड शूज और रेड लिपस्टिक या रेड कार देखकर आंखें खुल जाती हैं, रुक जाती हैं, थम जाती हैं, तो हो सकता है आपके अंदर का एडवेंचरस इंसान कह रहा हो, थोड़ा ड्रामा तो बनता है ना। जी हाँ, ब्लू वाले लोग, तो अगर आपका फेवरेट कलर ब्लू है तो शायद आप थोड़े शांत, भरोसेमंद और सोचने समझने वाले इंसान हैं। आपको शोर से ज्यादा सुकून पसंद है। आपके लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे टैग करना या बर्थडे विश करना नहीं, रिश्ते निभाना है। आप लॉयल्टी, स्टेबिलिटी और गहरे रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में वो कौन है जिसे सब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं? अगर वो आप हैं, तो ब्लू वाली बात थोड़ी फिट बैठती है। येलो पसंद है तो नमस्कार, आपके अंदर का सनशाइन जिंदा है। येलो को ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसे लोग नए आइडिया से एक्साइट होते हैं। प्रॉब्लम आई, बाकी लोग बोलेंगे अब क्या होगा, और येलो वाला बोल उठेगा रुको, एक आइडिया है। अगर आपको लिखना, बोलना, सीखना, नए आइडिया सोचना, लोगों से बातें करना पसंद है, तो येलो आपका कलर हो सकता है। और हाँ, अगर आपके घर में येलो वॉल देखकर मम्मी बोलती हैं, इतना ब्राइट क्यों कर दिया, तो उन्हें कह देना मम्मी मेरी पर्सनालिटी का ये रिफ्लेक्शन है। ग्रीन लवर्स, अब आते हैं ग्रीन पर। ग्रीन को बैलेंस, सुकून, प्रैक्टिकलिटी और केयर से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग अक्सर चीजों को संभालने वाले होते हैं। घर में सबका मूड खराब है, ग्रीन वाला इंसान शायद चाय बना रहा होगा, पहले चाय पियो फिर बात करते हैं। इन्हें शांति बहुत पसंद है, नेचर बहुत पसंद है और अननेसेसरी ड्रामा, भाई मेरी जान छोड़ दो। ग्रीन वाले लोग अक्सर सुलह करने वाले होते हैं। पर्पल, अगर आपका फेवरेट कलर पर्पल है तो आप थोड़े हटके हो सकते हैं। पर्पल को इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और इंडिविजुअलिटी से जोड़ा जाता है। आपको हर चीज भीड़ के हिसाब से करना जरूरी नहीं लगता। लोग बोलेंगे सब ये कर रहे हैं,
और आप बोलेंगे तो मैं कुछ और करूंगा। आपको आर्ट, इमेजिनेशन, फिलॉसफी या थोड़ी गहरी बातें पसंद आती होंगी, और हो सकता है आप वो इंसान हो जो नॉर्मल सवाल का भी फिलोसफिकल जवाब दे दें। कोई पूछे खाना खा लिया और आप बोलें पेट भरना और मन भरना दोनों अलग चीजें हैं। जी हाँ, आप पर्पल वाले हैं, ऑरेंज लवर्स। ऑरेंज मतलब एनर्जी और सोशल लाइफ। मुझे पर्सनली ऑरेंज बहुत पसंद है। ऑरेंज को एडवेंचर, इंथुजियाज्म, लोगों के साथ घुलने मिलने और नए एक्सपीरियंसेस से जुड़ना पसंद होता है। ऐसे लोग घर में बैठे बैठे भी 3 प्लान्स बना लेते हैं। चलो कॉफी पीते हैं, चलो मूवी चलते हैं, चलो रोड ट्रिप करते हैं। और अगर कोई बोले बजट, तो जवाब देंगे देख लेंगे। अगर आपको नए लोगों से मिलना, घूमना, एक्टिविटीज पसंद है और थोड़ा रिस्क लेना पसंद है, तो ऑरेंज वाली एनर्जी आपसे बिल्कुल मैच करती है। अब आते हैं ब्लैक। जी हाँ, उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें वार्डरोब में ब्लैक ही ब्लैक पसंद है। ब्लैक है, तुरंत बोल देंगे परफेक्ट है, ले लो। ब्लैक वालों को इंडिपेंडेंस, डिटर्मिनेशन, प्राइवेसी, सीक्रेसी और सोफिस्टिकेशन से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग अपनी बाउंड्रीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, हर बात सबको बताना जरूरी नहीं समझते। और इमोशंस सबको नहीं बताएंगे भाई, थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ा कंट्रोल। और स्टाइल ऑलवेज रेडी। फिर आते हैं व्हाइट पे। व्हाइट लवर्स को अक्सर सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, ऑर्डर और नई बिगनिंग से जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल चीजें पसंद आती हैं। उनकी टेबल पर अगर एक पेन भी टेढ़ा पड़ा हो तो अंदर से आवाज उमड़ उमड़ के आती है, कोई इसको सीधा करो प्लीज। ओसीडी किकिंग इन। व्हाइट का कनेक्शन फ्रेशनेस और न्यू बिगनिंग से माना जाता है, यानी पुरानी चीज खत्म, चलिए नई शुरुआत करते हैं। अब आपकी बारी, चलिए एक छोटा सा रेडियो टेस्ट करते हैं। मैं कलर बोलूंगी और आप मन में बस एक टिक लगाते जाइएगा। रेड, एनर्जी और पैशन। ब्लू, शांति और लॉयल्टी। येलो, क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी। ग्रीन, बैलेंस और केयर। पर्पल, इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिटी। ऑरेंज, एडवेंचर और सोशल एनर्जी। ब्लैक, इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी। व्हाइट, सिंप्लिसिटी और फ्रेश बिगनिंग्स। अब बताइए आपका कलर कौन सा है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपका फेवरेट कलर बचपन से ही वही है या वक्त के साथ साथ बदलता रहता है? क्योंकि कभी कभी कलर भी मूड्स की तरह बदलते हैं। बचपन में पिंक सबसे ज्यादा पसंद होता है गर्ल्स को, और कॉलेज में आते आते वो ब्लैक में बदल जाता है, और शादी के बाद जो कपड़ा सेल में मिल जाए बस वही चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों कलर्स हमें सिर्फ खूबसूरत दुनिया नहीं देते, कभी कभी वो हमें अपने मूड, अपनी चॉइसेस और अपनी पर्सनालिटी को समझने का एक नया और मजेदार तरीका दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप सिर्फ एक कलर नहीं हैं, आप रेड का जोश भी हो सकते हैं, ब्लू की शांति भी हो सकते हैं, येलो की पॉजिटिविटी भी हो सकते हैं, ग्रीन का बैलेंस भी हो सकते हैं, पर्पल की इमेजिनेशन भी हो सकते हैं और ब्लैक की स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं। इंसान एक कलर से नहीं बनता, पूरे पैलेट से बनता है। मैं हूं आपकी तरानों की हमसफर आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। अब आप मुझे बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और सबसे इंपॉर्टेंट,
क्या जो डिस्क्रिप्शन आपने सुना वो आप पर फिट बैठता है? मिलते हैं अगली बार, तब तक अपनी जिंदगी में थोड़े और रंग भरिए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया खूबसूरत हो सकती है, लेकिन रंगों के साथ कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक घर में डाकू घुसी आए। उन्होंने घर वाले को बोला, देखो हम डाकू हैं, लूटने आए हैं, लेकिन बंदूक भूल आए हैं। तो घर वाले ने कहा, अरे तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आपको जो लूटना लाटना है वो लूट लीजिए, लेकिन देखिए ईमानदारी से अगली बार बंदूक ला के दिखा दीजिएगा।

0: वायरल होने से ज्यादा जरूरी है किसी की जिंदगी बदलना। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तांत्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज की बात एक हंसी से शुरू होती है, सिर्फ 15 सेकंड की हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंटरनेट पर छा गई, हजारों शेयर्स, लैक्स ऑफ व्यूज, मीम्स, रील्स, और लोग कह रहे थे यार क्या स्माइल है, क्या मस्त स्माइल है। लेकिन जिस लड़के की हंसी पर दुनिया हंस रही थी वो खुद अपने बारे में लिखे हुए कमेंट्स भी पढ़ नहीं सकता था। जरा इस बात को एक पल के लिए महसूस कीजिए, कितना अजीब है ना। दुनिया आपको देख रही है लेकिन आप दुनिया को पढ़ भी नहीं सकते। ये कहानी तेलंगाना के एक हाईवे की है और अरुण नाम के एक लड़के की। अरुण ने सिर्फ चौथी क्लास तक पढ़ाई की थी, घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी, स्कूल की जगह हाईवे आ गया, ट्रक के साथ काम, सामान उठाना, ट्रक साफ करना और बीच में किसी रोड साइड की चाय की दुकान पर एक कप चाय। एक दिन अरुण किसी बात पर जोर से हंस पड़ा, ट्रक ड्राइवर नेहरू ने उसका वीडियो बना लिया और बस 15 सेकंड, और वो वीडियो इंटरनेट पर छा गया। लोगों ने उसकी हंसी को पसंद किया, किसी ने मीम बनाया, किसी ने रील बनाई, किसी ने शेयर किया और शायद ज्यादा लोगों ने उसे बस एक फनी वीडियो की तरह देखा। लेकिन नेहरू ने कुछ और देख लिया। उसने अरुण की हंसी के पीछे का लड़का देखा। जहां इंटरनेट रुक गया वहां इंसानियत शुरू हुई। नेहरू खुद भी कभी शायद पैसे की वजह से कॉलेज छोड़ चुके थे, इसीलिए शायद वो समझ पाए कि अरुण का स्क्रीन के सामने चुप रहना क्या कह रहा है। दुनिया उसकी हंसी पर ताली बजा रही थी लेकिन अरुण के पास पढ़ने की बेसिक एबिलिटी तक नहीं थी। नेहरू ने सोचा वायरल हो गया अब क्या, और यहीं से कहानी बदल गई दोस्तों। उसने अरुण के लिए किताबें खरीदी, एग्जाम की फीस भरी और फिर शुरू हुई चाय ब्रेक्स में पढ़ाई की कहानी। ना कोई क्लासरूम, ना ब्लैक बोर्ड, ना कोई प्रॉपर टाइम टेबल, बस एक मूविंग ट्रक, रोड साइड स्टॉप्स और एक आदमी जो कह रहा है तुम पढ़ोगे। रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, जो भी जरूरी था नेहरू सिखाते गए। दोस्तों एक सवाल आपके लिए, कल अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसे दुनिया ने तो नोटिस करा है लेकिन उसकी असली जरूरत किसी ने ना देखी हो, तो आप क्या करेंगे? एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट या एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी जिंदगी में कुछ बदलने की कोशिश? सोचिए, हम सोशल मीडिया पर किसी की एक फोटो देखकर उसकी पूरी कहानी बना लेते हैं, किसी को फनी बोल देते हैं, किसी को टैलेंटेड, किसी को अनसक्सेसफुल, लेकिन उस इंसान की असली कहानी को जानना कितने लोग चाहते हैं? अरुण का वीडियो शायद कुछ ही दिन में लोग भूल गए, इंटरनेट का नेचर ही ऐसा है, आज एक चीज वायरल, कल दूसरी और फिर तीसरी। पर नेहरू नहीं रुके और फिर आया 2026। अरुण ने क्लास 10th के एग्जाम्स दिए और वो पास हो गए। एक ऐसा लड़का जो कभी अपने वायरल वीडियो के कमेंट्स तक पढ़ नहीं पाया, आज अपनी क्लास 10th की मार्कशीट पढ़ सकता था। और अरुण ने अपने मेंटोर नेहरू को याद करते हुए कहा, नेहरू अन्ना मेरे लिए भगवान जैसे हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू ने उनकी हंसी को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बनाया,
1: उनकी हंसी को एक मौका बना दिया। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत गहरी बात छुपी है। अटेंशन और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। हम किसी को देख सकते हैं, उस पर हंस सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, उसका वायरल वीडियो शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए वक्त निकालना, किसी को किताब खरीद कर देना, किसी को बार बार समझाना, किसी के हार मान लेने पर भी कहना नहीं, एक बार और ट्राई करो, ये असली मदद है। और मेंटर बनने के लिए कोई बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, ना कोई बड़ी ब्रांड चाहिए, ना कोई बड़े बड़े मार्केटिंग स्टंट्स चाहिए, ना बड़ा बजट। नेहरू ने अरुण को मूविंग ट्रक में पढ़ाया। मतलब कभी कभी हम कहते हैं टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप नहीं है, लेकिन शायद किसी की जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट सिचुएशन नहीं, बस एक सच्ची नियत चाहिए। तो आज आपके आसपास देखिए, क्या कोई ऐसा बच्चा, एक ऐसा कलीग, कोई ऐसा जूनियर, कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान है जिसमें हुनर तो है, बस मौके की तलाश है। कोई जो बार बार कह रहा है मुझसे नहीं होगा, शायद उसे लेक्चर नहीं, शायद उसे बस एक नेहरू चाहिए जो कहे चल मैं हूं ना, तू कर। अरुण की कहानी हमें एक बहुत सिंपल सीधी बात याद दिलाती है। वायरल होना जिंदगी नहीं बदलता, कभी कभी एक इंसान का भरोसा जिंदगी बदलता है। इंटरनेट ने अरुण की हंसी देखी, नेहरू ने अरुण का भविष्य देखा, और शायद असली इंसानियत वही है जब हम किसी इंसान में सिर्फ वो नहीं देखते जो वो आज है, बल्कि वो देख लेते हैं जो वो कल बन सकता है। तो अगली बार कोई वायरल वीडियो हो, एक पल के लिए रुकेगा और ये मत पूछेगा कि कितने व्यूज आए, कभी बस ये पूछ लीजिएगा कि इस इंसान की जिंदगी में मैं क्या फर्क ला सकता हूं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM। आज की बात का ये छोटा सा सार है, दुनिया किसी को एक पल के लिए नोटिस कर सकती है, लेकिन किसी एक इंसान का भरोसा उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी में वो नेहरू कौन है? और इससे भी बड़ी बात, क्या आप किसी के लिए नेहरू बन सकते हैं? सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक सिर्फ किसी की हंसी पर हंसिए मत, कभी उस हंसी के पीछे की कहानी भी समझिए। हो सकता है वो बहुत कुछ कह रही हो। नमस्कार।
2: कागजाते बो बवरन लाग रे, बलदा की सू अड़ा मानुष की कीमत कोनी, करना था बहुत कुछ था भाई जीवन में, परिब हिम्मत कोनी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें।
3: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
4: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
3: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता जी की खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्टा पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, है मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
4: अ से अर्जुन,
5: आ से आशा,
4: जी
6: रिया ने बुलाया, चलते हैं।
7: आज ही कह रहे हैं, चलो चलते हैं, कहीं पढ़ना पड़े, इससे पहले टाइम वेस्ट हो जाए। मुझे लगता है खेलने के लिए बुलाया होगा, चलो।
8: कल कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं बुला रहे,
7: कहीं काम से।
9: लगता है बच्चे आ गए, बच्चों की आवाज है। अरे अरे अरे अरे, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शाबाश।
10: नमस्ते भैया।
9: नमस्ते बच्चों, नमस्ते, आ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। पहले तो सब बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे, ठीक है ना?
11: नमन,
9: लवीश,
11: अर्णव,
9: अभय,
11: दक्षाग्र,
9: कुशाग्र,
11: निशांत।
9: भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश शाबाश। ये बताओ, कहानी सुनना किस किस बच्चों को अच्छा लगता है?
12: हाँ, मुझे।
9: तो बच्चों, आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूँगा।
12: कहानी
13: अपनी बहन को,
14: महमूद भी आए।
9: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना? और जानती हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
12: हाथी,
9: गिलहरी, बिल्ली। बिल्कुल ठीक भाई, मैं इन सब की कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
15: क्या बात हुई?
9: ये कौन आ रहा है?
15: नमस्ते भैया।
9: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ अंदर, शाबाश, बैठ जाओ।
15: तो आज नई कमीज पहनी है।
9: क्या?
15: आज नई कमीज पहनी है।
9: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है।
15: अतुल?
9: अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
15: ये मामा जी ने दी है।
9: अच्छा, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
15: अमर।
9: आमर।
15: और भैया अकल का हो जाएगा आकल।
9: वैसे बच्चों, होता है अकल, जैसे अकलमंद, तुम तो सच में बहुत अकलमंद।
15: भैया अजब का बन जाएगा आजब।
9: हाँ आजब, शाबाश, बजाओ सी बातों, जोरदार तालियां बजाओ, तालियां शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आरती में आ की जगह अ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो।
15: आरती।
9: वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में अ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
15: अकेला।
9: अकेला। तो इसी बात से बच्चों हो जाए अक्षर की कहानी। तो अ से अक्षर, अ से
12: अक्षर।
15: भैया मेरी बहन ने छोटे से अनार सिखाया है।
9: अच्छा, और बड़े से?
15: बड़े से आम।
9: वो आपको समझाने के लिए कहती हैं, छोटा आ बड़ा आ, और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे आ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ, तो अ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है? अ आ
5: आ
9: आ
5: आ।
9: शाबाश। तो बच्चों हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा। अ आ
5: आ।
9: हाँ, आगे समझ में? अ से
5: अर्जुन
9: और आ से
5: आशा।
9: शाबाश। बच्चों दोनों भाई बहन थे, अर्जुन छोटा था, आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ। अच्छा एक बार पता है क्या हुआ?
14: क्या हुआ भैया?
9: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
15: वो रस्सी पे चलता है भैया।
9: हाँ सही कहा तुमने,
15: जादू भी करता है।
9: जादू भी करता है हाँ।
15: भैया और वो नए नए खेल दिखाता है।
9: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है? तो बच्चों दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
15: भैया आ से अचानक।
9: हाँ, आ से अचानक।
14: भैया आ से आया,
9: आ से आया और आ से आई।
15: भैया आ से आता,
9: आ से आता। शाबाश। आ से आज। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो बच्चों जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई। अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन जल्दी आओ जल्दी, अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे, भीग जाओगे, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ। तो बच्चों आ से आशा, आ से आवाज, आ से आओ और अ से
15: अर्जुन,
9: अ से अर्जुन,
15: आ से अमरूद,
9: अ से अमरूद,
15: आ से अगली,
9: अ से अगली,
15: आ से अजगर,
9: अ से अजगर,
14: अंदर,
9: अ से अंदर,
15: अम्मा
9: और अ से अम्मा। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों अर्जुन और आशा भीग चुके थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। इसी बीच अम्मा ने चूल्हे में आ से आग जलाई और पकाए गर्मा गर्म पराठे।
15: भैया आ से आटा,
9: आ से आटा। शाबाश।
14: आ से आग,
9: आ से आग।
14: भैया अ से अरहर की दाल।
9: अ से अरहर, सही कहा तुमने। और बच्चों साथ ही बनाई अरबी की सब्जी। किसकी सब्जी?
14: अरबी की सब्जी।
15: भैया अ से अरबी।
9: हाँ शाबाश।
5: अ से अम्मा।
9: हाँ अ से अम्मा।
15: अ से अगर,
14: अ से अगरबत्ती,
9: अ से अगरबत्ती, अ से अगर, अ से अजगर, अ से असलम और अ से अम्मा, अ से अरहर और अ से अरबी। और हाँ एक चीज और भी बनाई, बड़ी चटपटी मसालेदार।
14: ये क्या बनाई?
9: अम्मा ने बनाए चटपटे आलू।
14: मुझे आलू पसंद है।
9: मुझे भी पसंद है भाई चटपटे आलू।
15: मुझे अनार पसंद,
9: अनार पसंद है। अ से अनार। तो अम्मा ने उन्हें अनार भी दिया खाने को और हाँ आम भी दिया। आम किसको पसंद है? वाह सभी को पसंद है ना। तो आ से आम, आ से आलू, अ से अरबी और अ से अरहर,
15: अ से अपनी,
9: अ से अपनी और आ से आँखें, अपनी आँखें।
14: भैया आ से आम का अचार,
9: आ से आम और अ से अचार। तो आम का अचार, वाह क्या बात है, बड़ा तालियां जोरदार। तो बच्चों आगे सुनो, अम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन और आशा से कहा,
2: अरे बच्चों, अरे भाई अपने आप ले लो खाना, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ले लो हाँ।
16: से अपने,
9: अ से अपने,
15: भैया आ से आप,
9: आ से आप, शाबाश, अपने आप, वाह क्या बात है अपने आप। तो बच्चों अर्जुन और आशा ने ढेर सारा खाना खाया, उन्हें भूख भी तो लगी थी ना
17: भैया।
15: हाँ भैया।
9: अच्छा बच्चों ये बताओ उन्हें खाना कैसा लगा होगा?
17: बहुत अच्छा लगा
15: भैया, अच्छा।
9: शाबाश, अ से अच्छा। तो दोनों कहने लगे आहा मजा आ गया, आहा अम्मा ने कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था, आहा मैंने तो खूब खाया
15: भैया। आ से आहा
9: बहुत बढ़िया, आ से आहा। हाँ तो इस तरह दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने अम्मा का धन्यवाद दिया।
18: आ

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: अधिक बलवान कौन?

0: एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वो ही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे आए आए आए।
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे।
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी।

0: सूरज ने कहा,
1: हवा अब तुम मेरी ताकत देखो।

सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया।

0: 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा, और 30 मार्च 1919 को रॉलट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रोलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रोलेट एक्ट वापस लो, रोलेट एक्ट वापस लो, रोलेट एक्ट वापस लो, रोलेट एक्ट वापस लो।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला। महात्मा गांधी की

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up.
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: 달리기
1: 예!
0: 파란 마당이
1: 예!
0: 파란 마당이
2: 정말 딸기 삶내 날아간 개수 입맛 이자다이네 꼬리에서 뻥다루 No 무채 이제 베터 모케가 인자르 카나 호가
3: 인자르 जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। तेरह अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
4: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
5: भारत माता की
1: जय!
5: भारत माता की
1: जय!
5: भारत माता की
1: जय!
4: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
1: हमारी मांगे पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
1: रोलेट एक्ट वापस लो।
4: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
3: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थी और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप, देख ये सबक काफी है।
0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: Masumların laf çıktığı kadar masum.
1: Papa.
0: Masum. Masumların laf çıktığı
1: kadar. Kar niye? Kar niye? Allah. Ay Allah lau. Ay ne puttara de talavi lau e.
2: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
3: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
2: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
4: जनरल डार।
5: यस सर।
4: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
5: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
5: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
4: क्या वार्निंग नहीं दी?
5: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
4: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
5: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
2: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने दाग पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
3: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
6: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
7: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
8: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
9: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
7: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
6: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: கேட்கிறோம் மேரி துனியா ரேடியோ 90.8 FM ஜாபுவாக்கி ஆவாஸ்.
1: பஹலி உடான் மே
2: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
3: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
4: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
5: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
4: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
5: हाँ पूछो बेटा।
4: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
5: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
3: लेकिन माँ,
5: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
4: जी
5: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
4: अच्छा माँ, ये लो माँ।
5: ला।
3: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
4: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
5: क्या मिल गया
4: मुझे? माँ माँ माँ,
5: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
4: मुझे मिल गया।
3: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
5: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
4: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
3: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
4: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
5: धुआं?
4: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
5: हाँ?
4: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ?
5: क्या
4: उसमें क्या उड़ रहा है?
5: कुछ हाँ? भी तो नहीं।
3: कुछ भी तो नहीं है।
4: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो।
5: हुँ?
4: हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना?
3: वो तो है मगर
4: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
4: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें है?
3: हाँ
4: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
4: ठीक है आओ मेरे साथ।
5: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो,
2: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
6: अरे अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
7: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
8: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
7: अभी
8: है?
7: पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
8: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
7: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
9: ना पता नहीं इसके लिए क्या करेंगे।
8: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं
10: सकती। हो गया है।
8: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
7: भाई साहब हट जाइए। आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
8: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
7: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
8: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
7: क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
8: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है
7: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
8: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है।
7: कमाल कर दिया बच्चों ने।
8: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
7: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
8: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
7: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
8: अरे अरे दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
7: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
8: अरे देखो, अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
2: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
11: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
12: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
11: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए। क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
13: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
14: हूँ आपके साथ मोनालिसा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है, यानी कि यही जो नाइट्रोजन है जो दोस्त है वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है। तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 3 प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार,
15: नमस्कार,
14: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया,
16: नमस्कार,
14: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं,
17: नमस्कार।
14: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
18: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है। वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है। ये आम तौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं। इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है। हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है। इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं। उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो वायु प्रदूषक हैं। दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई। नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है।
13: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय।
15: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन। यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे DAP से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं। आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है, ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पति बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है। दूसरे अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
16: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
17: जी जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
16: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज वो कितना है या इस स्तर।
19: देखिए आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है जो कि मतलब 40 से 45 PPM होनी चाहिए, जब इससे ज़्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम से कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे।
16: बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
15: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है
16: जी,
15: और खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसको प्रभावित करता है।
16: बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है?
17: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है
16: जी।
17: तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि भी किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात ये कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन के अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहां के सूक्ष्म जीव है, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सब का हमको ध्यान रखना है, जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है, तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
19: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए कि जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है तो उससे हमारे में कैंसर और गोइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करे, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका, इस जल का प्रयोग किया जाता है।
15: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है, या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
16: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया, हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है? साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
19: जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300, तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
16: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है, और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान है वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है इसका, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
15: बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है इसका बहुत से राज्यों में, हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि 4:2:1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशधारी जो उर्वरक है, इनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ही असंतुलन हो गया है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का। यानी फास्फोरस और पोटाश की तुलना में नाइट्रोजन का कई गुना प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में ये अनुपात जो है लगभग 22:24:9:1 हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूज हो रही है, फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। नाइट्रोजन से आपकी फसल गिर सकती है, जरूरत से ज्यादा उसकी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटाश पौधों को हमारे मजबूती देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े, बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़क नाशियों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये समस्या है, इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फास्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक का आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4:2:1 मोटे तौर पर, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
16: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें किसान यूरिया का, इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए?
17: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4:2:1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें, तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से आदि होगी, वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
13: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है, उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है, जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है, ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट के, स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा, कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां
1: बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है, जैसे ये है, ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाव करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है, पीलेपन में आ रहा है, उसका हरा रंग कम आ रहा है, तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे। अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है, पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा, और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा।
2: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं, आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है, यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर, कहना ये भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें ये बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
3: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन, इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं। तो ऐसे करके यूरिया

0: का नुकसान हो जाता है और इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पे नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए, आगे भी कर रही है और किसान
1: नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
2: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में है चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में या नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की और जिसकी वजह से बहुत से हमारे जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
1: बिल्कुल,
3: इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। नीम लेपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हमारे सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये कदम उठाया गया है।
1: तो किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए।
0: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है, और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत है, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए, लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की, इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
0: जी, बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है
1: जी।
0: तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं, इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है, जल में विलेय फर्टिलाइजर है, उनका आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं, और निश्चित तौर पर पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
1: बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे इससे पहले, मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में हमें।
2: देखिए, जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधे को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजिटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं।
1: अच्छा।
2: तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
3: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10-20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा वो ये होगा जो कि ना जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट जो कि कह रहे हैं ना सूखा जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरण के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता, किसान भाइयों आपकी क्षमता में सुधार होगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
0: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपकी अनाज वाली फसलें धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
1: बिल्कुल,
3: जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनी फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनी फसल फसल ले रहे हैं, तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं ये धीरे धीरे हमारे मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहे, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं।
2: देखिए जैसा बताया कि हम अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर।
1: जी
2: तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवा है जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं अगर हम हरी खाद और दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, तो ये सब चीज ध्यान में रखकर हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम ना केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज हैं, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती यह है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
1: जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे, तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं, लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
1: जी।
4: किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइटिया 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है, उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या यह उचित है? आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं, जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं, अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें, हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
1: जी,
4: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था उसका थीम था अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है
1: जी।
4: जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है, तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई, दूसरी बात होती है अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो कृषि के लिए मित्र हैं उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है, मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जाने। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
2: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं इनके ऊपर ज्यादातर इनमें इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके, तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब
1: की। डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
4: इसमें, जैसा कि भाटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो उद्घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस प्रकार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही हैं और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर?
2: में?
5: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना
2: जी।
5: और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है। तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, इस दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पर किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके, और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
0: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें जरूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइमटेबल 90.8 एफएम के साथ।
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
7: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
6: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है गौ सेवा और अनुभूति का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज के दौर में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी परंपराओं और आधुनिक पर्यावरणीय चिंताओं के बीच एक नया सेतु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, जिन्होंने एक अनोखी पहल के माध्यम से अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील और पारंपरिक प्रक्रिया को भी पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। हम बात कर रहे हैं गौमाया के संस्थापक, सामाजिक उद्यमी, सतत विकास के समर्थक और गौ आधारित नवाचारों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले व्यक्तित्व डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी का। डॉक्टर गुप्ता का कार्य केवल गोबर या गौ आधारित उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वेस्ट टू वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी, कार्बन न्यूट्रल समाधानों और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की एक व्यापक सोच को सामने लाता है। तो आइए बिना किसी देर के स्वागत करते हैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी का। डॉक्टर गुप्ता जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत अभिनंदन। जय गो माता, जय गोपाल।
1: चलिए तो डॉक्टर गुप्ता, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। मुझे लग रहा है आज बातचीत बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हमारे साथ है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। कुछ अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए, कुछ बचपन के बारे में, पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए हमें।
2: जी जी, मैं प्रारंभिक से शुरुआत करूं तो पहले जो जीवन के 8 साल निकले सर, वो मेरे ग्रामीण परिवेश में निकले
1: जी,
2: जहां गाय और गोबर के बीच ही रहे वहां पे। मतलब हमारे घर परिवार में गौ माता का स्थान था, गोबर से भी हमारा ताल्लुक था कि उससे कहीं दूरी नहीं थी। जैसे आज के बचपन में जरूर ये सब चीजें धीरे धीरे गायब हो रही है, पर हमारा जुड़ाव था। और 9 वर्ष की उम्र में फिर मैं जयपुर आ गया, तो मेरी जो स्कूली एजुकेशन हुई वो हुई आदर्श विद्या मंदिर से।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ, देश सेवा और राष्ट्र प्रेम का जो भाव पैदा हुआ वो वहीं से हुआ, और वो निरंतर सतत जारी है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद एजुकेशन, BSc मैंने मैथ्स किया, MA हिंदी किया, कंप्यूटर ओ लेवल किया, MBA फाइनेंस किया, NDDY किया, और भारत सरकार एक कोर्स करवाती है MD पंचगव्य 3.5 साल का।
1: ओके,
2: तो एक डिफरेंट डाइवर्स फील्ड में और एजुकेशन रहा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला जिसको अब जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं।
1: वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा डाइवर्स है। एजुकेशन भी आपने बहुत ही डाइवर्स प्राप्त कर ली है, सभी तरह की। BSc मैथ्स से आपकी शुरुआत हुई और MBA तक पहुंच गए। तो अब ये बताइए कि क्या स्टूडेंट लाइफ में समाज और सेवा के प्रति आपकी सोच थी, या स्टूडेंट लाइफ ने उसको प्रभावित किया, या किस तरह से ये सोच क्या उसी समय से थी आपकी?
2: जी जी जी जी, मैं सामान्य तो है, मेरे जैसे लेक्चर्स भी होते हैं, यूथ के इंट्रैक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं वहां हर बार एक लाइन कहता हूँ कि हर युवा के जब वो लगभग 16 से 20 की एज में होता है, उसमें एक भाव जरूर आता है। अमूमन मेरे अंदर था कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, ये था सर उस समय भाव। अब ठीक है, सामान्यतः युवाओं के आता भी है, फिर धीरे धीरे उसकी एजुकेशन होती है, मैरिज हो जाती है, बच्चे होते हैं, समाज की जिम्मेदारियां, तो कई बार फिर क्या होता है, 25-30 साल आते आते वो भी फिर यही सोचता है कि जो दुनिया कर रही है वही कर लेना है। पर इन एज ऑफ 46, ये ईश्वरीय कृपा मैं मानता हूं, जब कोरोना आया, कि वाकई मुझे जो मेरा 16 से 20 का सपना था ना, वो पूरा करने का सौभाग्य ठाकुर जी ने मुझे दे दिया सर।
1: ये बात तो आप सही करें, भाव सब में होता है लेकिन वो समय के संघर्षों के साथ साथ दबता जाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो आपने सामाजिक उद्यमिता या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आने के लिए, तो क्या आपने उस समय चाहता है या कोई आपको ऐसे कोई गुरु मिले या कोई ऐसे मेंटोर मिले जिन्होंने आपको इस राह पे आगे बढ़ा दिया?
2: मैं जब ग्रेजुएशन मैंने किया तो सामान्यतः वैसे जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, फादर मेरे HM से रिटायर हुए थे और तीन बड़े ब्रदर हैं, तीनों एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रिंसिपल्स हैं। और मैं खुद भी लोक जिम्बिश, अगर आपने नाम सुना हुई लोक जिम्बिश परियोजना चलती थी सरकार की, उसमें मैं 5 साल मास्टर ट्रेनर रहा, जहां मैं 21 ईयर की एज में 50 ईयर के टीचर्स को ट्रेनिंग दिया करता था।
1: अच्छा।
2: तो कहीं ना कहीं वो भाव तो मन में था कि हाँ हमें अच्छा काम करना, अच्छा कॉज करना है, पर ठीक है एक व्यापारिक दृष्टिकोण था तो BSc करते हुए कोई लाइन नहीं समझ में आ रही थी कि अपन को करना क्या है लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है, और ये जरूर था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है लेकिन एग्जैक्ट चीज पकड़ में नहीं आ रही थी। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे गायत्री परिवार से जुड़ने का मौका मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और वहीं से प्रेरणा मन में आई कि कुछ देखिए अपने लिए तो दुनिया में सब करते हैं, है ना, जीव भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, पर ईश्वर ने यदि हमें मनुष्य बनाया है जहां दो डिफरेंट चीजें हमको दी सर, एक हमारी विचार शक्ति और एक इसको क्रियान्वित करने की ताकत,
1: जी।
2: तो लगा कि अगर ये दो शक्तियां ईश्वर ने दी है तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा डिफरेंट कर जाएं कि हमारे मानव जीवन के सार्थक होने को साकार कर दें हम। तो बस वो भाव और विचार चलता रहा, व्यापार में मशगूल रहे थोड़े टाइम, मैं रियल एस्टेट में हूँ सर, पिछले 25 सालों से मैं व्यापार में हूँ, आज भी निरंतर जारी है, आज ही G+2 के अपार्टमेंट और विला वगैरह बनाता हूँ, बट कहीं ना कहीं उसके साथ भी एक था कि ये भी सेवा कार्य था, क्योंकि किसी को घर देना भी और एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, व्यापार तो चलो एक होता ही है, बट मन में एक सुकून था कि किसी को आप एक घर दे रहे हैं। कहते हैं सर रोटी कपड़ा मकान तीन मूलभूत आवश्यकता है, रोटी खा के आदमी 6-8 घंटे रह सकता है, दोबारा खानी पड़ेगी, कपड़ा 2 साल पहन लेगा, 5 साल पहन लेगा, लेकिन मकान ऐसा है जो न केवल अपने लिए तैयार करता है बल्कि पीढ़ियों तक के लिए आदमी प्लान करता है। तो ठाकुर जी ने वहां भी सेवा ही कार्य दिया था कि किसी को छत और डिग्निटी देने का एक सौभाग्य हमें मिला हुआ था, तो वहां तो कर ही रहे थे बट फिर भी एक मन में पीड़ा थी कि कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्या और किया जा सकता है, बस उसकी सतत मन में विचार था और वो कोरोना के समय पे ईश्वर ने उसको पूरा किया और आज लगभग 6 साल हो गए, देखते देखते अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ये बन चुका है।
1: मजा आ गया आपकी बात सुन के और कई नई जानकारियां भी मिल गई मुझसे कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए और आप इस मकान वाले कार्य को जो कि नॉर्मली ये माना जाता है विशुद्ध व्यापारिक काम है, इसको आपने एक एक बड़े से सेवा कार्य की तरह जोड़ लिया है और आप उसको आई एम श्योर आप और लोगों से डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आप में भाव ऐसे है, तो आई एम श्योर आप भी वैसे ही कर रहे होंगे। तो मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो इसी सेवा कार्य पे और आपका जो लोगों को घर दे रहे हैं, किसी को पिया का घर मिल रहा है, किसी को पिता का घर मिल रहा है, किसी को बेटी का घर मिल रहा है, तो इसी पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।
2: चल, चल।

0: हाँ तो गुप्ता जी वेलकम बैक। तो अब ये बताइए, गौ माता के बारे में अब हम बात करते हैं। अधिकांश लोग गौ माता को केवल एक रिलीजियस एक एंगल होता है जिससे हम उनको देखते हैं, लेकिन आपने इसके पर्यावरणीय और आर्थिक पक्ष को भी सामने रखा है। तो ये कैसे विकसित हुआ, हुआ कब से ये, क्या कोई ट्रिगर था ऐसा है जो आपने सोचा, क्या इसके बारे में बताइए।
1: हाँ जी हाँ जी, जुड़े हुए तो देखिए गौ माता से बचपन से ही थे। जब ये पढ़ा था कि गौ माता हमारी विश्व की माता, गौ विश्वस्य मात्र, ऋग्वेद में लिखा है गौ विश्वस्य मात्र, गाय विश्व की माँ है, तो ये भाव मन में था। पर 2015 में मुझे सौभाग्य मिला सर एमडी पंचगव्य करने का, जो 3.5 साल का पार्लियामेंट्री बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, और वहां गोबर गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाने सीखे। और पहला प्रोडक्ट जो डेवलप किया वो देशी गाय के गोबर से बनी हुई कागज पर छपने वाली मेरी किताब है, जिसे दुनिया की पहली किताब बनने का दर्जा हासिल हुआ, और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बुक ने अपने नाम किए, और 2022 में अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड भी इस बुक को मिला।
0: अरे वाह, दोबारा बताइए सर ये मेरी बात थोड़ी सी, गोबर से किताब का कागज बना है, कुछ इसके बारे में बताइए। अच्छा पहले बताइए कि ये जो आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, क्या है कुछ?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बताऊँ, राजीव भाई दीक्षित का आपने नाम सुना होगा।
0: जी सुना है।
1: जिन्होंने अपने आयुर्वेद पे और स्वास्थ्य पे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला, उनका एक सपना था। पंचगव्य एक शब्द है सर, आयुर्वेद का एक पार्ट है पंचगव्य, जिसमें गाय के जो 5 गव्य होते हैं, गोबर गोमूत्र घी दूध और दही, इनमें आयुर्वेदिक औषधियां मिला के जीवन की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सके। तो वहां मुझे एमडी पंचगव्य करने का सौभाग्य मिला। ये जो नाम के आगे डॉक्टर, ये पीएचडी वाला नहीं है, जैसे एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर, ऐसे में पंचगव्य का डॉक्टर हूँ। और इन एज ऑफ 53 फिट एंड फाइन हो सर, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है एज का। तो वो केवल गौ माता के गव्यों के प्रभाव से है और सहज जीवन जी रहे हैं। तो वहां मुझे लगा उन 250 प्रोडक्ट में से क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो यूनिक बन सके। तो हमारे एक मित्र हैं जो गोबर से कागज बनाते हैं, तो कोरोना के समय में जब 1.5 महीने लगभग फ्री थे, तो उस ज्ञान को मैंने लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, और एक बुक लिखी, उसको प्रिंट करवाना था। मुझे यह था कि इसकी लगभग 10,000 प्रतियां प्रिंट करवा के जन जन तक बांट दूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करो, थोड़ा महंगा पड़ेगा, कम प्रतियां छपवाओ, लेकिन इस किताब को मैं ऐसे कागज पे छाप दूं जो आपको विश्व की पहली किताब बन जाए। हमने ट्राई किया और 10 दिन के अंदर ही सर वो पूरा हुआ, और 12 अगस्त 2020 को ये बुक विश्व इतिहास में पहली बार पब्लिश हुई, जिसको वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनने का दर्जा हासिल हुआ। इसमें पेड़ नहीं लगने दी हमने इसके कागज में, ये जो कागज है ये गाय के गोबर से ही बने हुए हैं।
0: ओके अच्छा,
1: इसलिए इसको विश्व की पहली पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हो गया। जीवन में पहली किताब लिखी और ठाकुर जी की कृपा से उसको वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनने का दर्जा हासिल हो गया। इसको हमने नाम दिया गौ में ज्ञान सागर, ये गौ माता के ज्ञान का खजाना है।
0: वाह
1: जी,
0: तो इसमें जो भी बात ने लिखी है वो 250 प्रोडक्ट्स के बारे में और उसका मतलब तरीका है या प्रोसेस बताया है, उसका जो कंटेंट है किताब का वो क्या है?
1: जो इसके पंचगव्य है गाय का, जैसे गोमूत्र है, क्या वैल्यू है, क्या हमारी लाइफ में कैसे हम फिट हो सकते हैं, गोबर क्या वैल्यू है। एक छोटा सा उदाहरण मैं इसमें कई बार देता हूँ कि कैसे गाय भगवान का दर्जा प्राप्त की। भगवान शब्द है वो, वैसे भूमि जैसे गगन, वैसे वायु ऐसे अग्नि नैसे नीर, ये 5 ही शब्दों से बना हुआ है भगवान। और आप विशेषता देखिए, हम भी भगवान इसीलिए है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, भूमि गगन वायु आकाश और नीर। तो यानी हर व्यक्ति में भगवान है। अब गाय कैसे भगवान हुई, क्योंकि गाय के 500 गव्य जो है वो 5 तत्वों के प्रतीक है। अगर हम गोबर की बात करें तो भूमि तत्वों का प्रतीक, यदि हम दूध की बात करें तो जल तत्वों का प्रतीक, यदि हम घी की बात करें तो अग्नि तत्वों का प्रतीक, यदि हम गोमूत्र की बात करें तो वायु तत्वों का प्रतीक। तो इस तरह 500 जो गव्य हैं वो 5 तत्वों के प्रतीक हैं, और वो भी भगवान ही बनाते हैं, इसलिए गौ माता भगवान के सदृश।
0: वंडरफुल, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और आपने जो किताब लिखी है वो गोबर से कागज बनाया है, वो भी सुन के मजा आ गया। कागज जो वेस्ट कागज होते हैं उनसे तो मैंने देखा है कि रद्दी से बनाते हैं कागज वगैरह, वो राजस्थान में भी बहुत बनता है, लेकिन ये
1: दुनिया में हम बात करें तो एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कचरा इकट्ठा कर रहा है, बाकी हर जीव जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, उसका हर अंग तक जीवित में भी और मरने पे भी काम आ जाता है, लेकिन ये हमारी विडंबना है। मनुष्य केवल और केवल कचरा बनाने का काम कर रहा है, मतलब प्रकृति और पर्यावरण सब ठीक करते हैं लेकिन हम कचरा बना रहे हैं। अब वक्त आ गया, कोरोना ने सिखाया कि इस कचरे में से भी, आप कहते हैं ना आपदा में से अवसर कैसे निकलता है, तो कोरोना के समय हमको ये समझने में मौका मिला कि कचरे को भी संपदा में बदला जा सकता है। और उसी को हमने कोशिश की कि गोबर, जो वैसे तो कहते हैं सर गोमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, लेकिन हमने उसको ढेर लगा दिए गौशालाओं में, गोबर वैसे

0: पड़ा है, तो प्रयास हुआ कि क्या ये गोमय वस्ते लक्ष्मी को हम साकार कर पाएंगे, और उसी का एक प्रयास किया और उससे हमने गोमय संविदा बनाई, जो पराली, देशी गाय के गोबर और हवन सामग्री के मिक्स से विश्व के इतिहास में पहली बार इस कंपोजिशन से हमने लकड़ी बनाई, भारत सरकार से उसका पेटेंट लिया, और अब अंतिम संस्कार जैसा कार्य है जो कि 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण है, जिसपे लोग बात भी करने से कतराते हैं, ठाकुर जी ने हमें वो सौभाग्य दिया, उसको हम सफलतापूर्वक संपन्न करवा रहे हैं और पेड़ बचाने का कार्य हमसे बन पा रहा है।
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी बात सुन के, और पर्यावरण से संबंधित जो आपकी सोच है वो भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए इस बात पे रुक के हमें गाना सुनते हैं, और फिर आपका ये जो अगली जो टॉपिक आप डिस्कस करना चाह रहे थे संवेदनशील, उस पर हम बात करना चाहेंगे डिटेल में।
0: निश्चित,
1: एक पॉज लेते हैं।

हाँ तो डॉक्टर गुप्ता, अब वेलकम बैक। अब आ रहे हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव नेचर की बातचीत है, लेकिन बहुत ही जरूरी है आज के समाज में। तो पारंपरिक लकड़ी की चिताओं के स्थान पर ये जो गौकाष्ठ आधारित शब्द

0: मैंने विकल्प ढूंढने शुरू किए, मोक्ष धामों में जाना शुरू किया कोरोना के टाइम ही, और केवल जयपुर नहीं, नागपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे, पीपीई किट पहन पहन के गए। एक जुनून चढ़ा कि क्या हम इस दौर को परिवर्तित कर सकते हैं, बिना लकड़ी के अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। तो ओवरऑल रिसर्च में उसको भी मैंने बुक में लिखा फिर कि कैसे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार प्रतिवर्ष होते हैं, हर अंतिम संस्कार में 2 पेड़ काट के जला दिए जाते हैं, उन 2 करोड़ पेड़ों के कट के जलने से 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है इंडिया में एवरी ईयर, जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। पर चूंकि धर्म का काम है इसलिए कोई बोलता नहीं है, और कोई विकल्प भी नहीं दे पा रहे थे, तो बस वो ईश्वरीय कृपा से वो घूमते घूमते सारा रिसर्च करते हुए पता चला इलेक्ट्रिक और गैस वाले आज भी 2% हो रहे हैं, 98% आज भी वही पारंपरिक तरीके से लकड़ियों के जलाने से हो रहा है। फिर एक पीड़ा और मन में उठी, पहले मोक्षधाम गांव खेड़े में बिल्कुल बाहर होते थे, आज शहर में घरों के बीचों बीच मोक्षधाम और उसके चारों तरफ घर है। एक बॉडी सर बर्न होती है तो हजारों तरह की गैसेस निकलती है जहरीली उसमें से, और हम और हमारे बच्चे अगर वो जहरीली गैस सूंघेंगे तो कैसे कैंसर नहीं होगा। तो मन में बस एक पीड़ा थी, ईश्वर ने मौका दिया, रास्ता दिया, और एक ऐसा विकल्प ढूंढ लिया कि अब उसमें एक टुकड़ा भी लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती है, और जो ये 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है, ईश्वरीय कृपा रही तो अगले 5 साल में भारत में इसको नेट जीरो पे ला देंगे सर। वो कार्य हम कर चुके हैं सफलतापूर्वक।
1: तो ये तो बहुत ही मैं मानता हूँ आपकी जितनी बात है सही है, लेकिन अब ये बताइए जब इस विचार को आपने लोगों के सामने आप रखते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया होती है, क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों का, क्या कुछ सामाजिक ऐसे चैलेंजेस तो नहीं आते हैं, सामाजिक या धार्मिक इस टाइप के कोई चैलेंजेस लोग करते हैं, क्या क्या विचार है लोगों का इसके बारे में?
0: सफलता के लिए मैंने 2 चीजें महसूस की जीवन में। एक तो अगर किसी में तकलीफ नहीं आ रही है तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो काम सहज हो जाए वो बड़ा काम है ही नहीं। दूसरा, यदि आपको लोग पागल नहीं समझने लगे, मुझे इन चीजों का बहुत सामना करना पड़ा शुरू में, पहले घर में भी करना पड़ा, परिवार में करना पड़ा, कि जब मैंने विचार दिया तो घर परिवार में कहा पागल हो गए क्या, अंतिम संस्कार से रिलेटेड क्या दिमाग लगा रहे हो, ये अपना काम थोड़ी है, ये तो दुनिया जो कर रहे हैं करने दे, अच्छा भला आपका काम चल रहा है क्यों परेशानी उठाना। पर चूंकि कहते हैं ना, सनक जब सवार होती है और पागलपन जब जुनून की हद तक आ जाएगा तो निश्चित मानिए सफलता के द्वार हमारे लिए अपने आप खुल रहे होते हैं। उन दिनों जब मोक्ष धामों पे गया, जहां भी बात की, 2 शब्द मैं इसमें डिफर करूंगा, आपने कहा एक गोकास्ट, ये एक्चुअली गोबर से बनने वाली सामान्य लकड़ी है जिसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 2500 होता है, 2500 जलाने की क्षमता, और बॉडी की बर्निंग के लिए 3000 का मिनिमम GCV चाहिए, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब गोबर से अंतिम संस्कार हो तो जाता था, ये भी 2015 में मैंने ही शुरू करवाया था हमारी गौशालाओं में, बट वहां प्रॉब्लम आ रही थी बॉडी में अस्थियां चिपक जाती है, फिर जो तीसरे दिन खून चुनने जाते हैं तो लकड़ी से तोड़ तोड़ के निकालने पड़ते हैं, तो वो बड़ी पीड़ादायक चीज है कि मरने के बाद भी आप लकड़ियों से कूट रहे हैं। तो उसके विकल्प के रूप में हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, गोमय समिधा, उसमें पराली मिलाई, जो अगेन भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पराली मिलाई, गाय का गोबर मिलाया, उसको पवित्र बनाने के उद्देश्य से हवन सामग्री मिलाई और नाम दिया गोमय समिधा। गोमय का मतलब गोबर, समिधा का मतलब यज्ञ करने योग्य पवित्र लकड़ी। इसका भारत सरकार से पेटेंट कराया, स्टार्टअप इंडिया में इसको रजिस्टर्ड करवाया, और आपको मुझे बताते हुए आश्चर्य है कि जहां स्टार्टअप में आजकल 99% टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर उनके चलते हैं, ये गोबर का अकेला पहला ऐसा स्टार्टअप MIIC MNIT में गया जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल जहां भी गया हर जगह ये आइडिया फर्स्ट आया सर, और वर्ल्ड के टॉप 40 इनोवेटिव आइडिया में सेलेक्ट हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया बात है, इनफैक्ट मेरी भी थोड़ी लर्निंग हुई, मैं समझ रहा था आप जो यूज करते हैं वो गोकास्ट यूज करते हैं, वो गो में संविधा आप यूज करते हैं। ओके ओके ओके ओके, अच्छा। जनरली वो जो छाने की जगह आजकल मैंने देखा है जब अंतिम क्रिया होती है तो वो लंबे लंबे
0: लंबी लकड़ी
1: गोकास्ट देते हैं, आजकल आदर्श नगर में गया था अभी तो
0: बट उसमें जो प्रॉब्लम आती है कि थर्ड डे जब हम फूल चुनने जाते हैं ना तो वो अस्थियां चिपक जाती है एक्चुअली, तो वो फिर निकालने में तोड़ के निकालते हैं पीड़ा है, तो इसलिए उसको अपग्रेड करने के लिए अपन ने गोमय समिधा बनाई। इसके प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम और थी, गोकास्ट जो बनती है वो 50-1000 रुपए की मशीन से तैयार हो जाती है, और प्रतिदिन जो है लगभग 2000 किलो गीले गोबर से लकड़ी बनती है जो सूख के 500 किलो रह जाती है।

0: लिए चैलेंज ये था, अगर मैं केवल गोकास्ट को प्रमोट करता तो जयपुर जयपुर के अंतिम संस्कार के लिए 90 मशीनें चाहिए थी, 270 लोग चाहिए थे, बीघाओं में जमीन चाहिए थी, फिर वो गर्मियों में 5 दिन में सूखती है, सर्दियों में 8 दिन में, बारिश में उसको गोबरेला खा जाता है, गोबर का कीड़ा। तो ये मेरे लिए ऐसा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करता है पहली स्टेज पे ही फेल हो जाता। तो मैंने इसको अपग्रेड करने के लिए ब्रिकेट्स कहीं बन रहे थे जो पराली के बनते भी हैं, उसको अपग्रेड करके गोबर मिला के हवन सामग्री मिला के और गोमय संविदा बनाया जिसका 25,000 किलो पर डे का प्रोडक्शन है। केवल 2 मशीनें अगर लगती है तो पूरे जयपुर के अंतिम संस्कार उससे करवाए जा सकते हैं। अभी 1 मशीन लगी हुई है और इधर निकलता है, इधर काम में ले लीजिए, सूखा हुआ निकलता है बिल्कुल बाइंडिंग के साथ। तो ये टोटली सक्सेसफुल प्रोडक्ट है हमारा।
1: तो आपने, अच्छा चलिए, मुझसे बहुत सारे हर शब्द कराए हैं, तो कोई ऐसा खास अनुभव या ऐसा कोई एक्सपीरियंस या मेमोरेबल कोई आपके साथ है, यादगार चीज जो आपको हमारे साथ शेयर करना चाहें?
0: पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन एक बार जब मैंने एक अंतिम संस्कार करवाया तो एक वहां कोई पंडित जी थे, ये गरुड़ पुराण वगैरह और ये बांसते हैं, तो उन्होंने कहा गुप्ता जी आज आपने एक जबरदस्त काम किया। मन का क्या बोलिए, जो जाने वाले है ना आपने इनको लोकऋण से बचा लिया। तो मैंने बोला भाई ये क्या होता है, तो उन्होंने मुझे बताया और उस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि इतना अच्छा काम अगर अपन से बन पड़ रहा है तो ये ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने कहा जीवन में 5 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। देव ऋण का मतलब जो देवताओं ने हमें ये अद्भुत शरीर दिया है उनका एक ऋण है, तो हम अच्छे काम करके उससे मुक्ति हो लेते हैं। पितृ ऋण का मतलब जब हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देव जो और लोक ऋण ऐसा ऋण है जो इंसान पे जाते जाते चढ़ता है। ये जो पहले 4 ऋण है इनको तो हम जीवन में उतार देते हैं, पर जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे लिए 2 पेड़ काट दिए जाते हैं सर, तो हम प्रकृति को नष्ट कर रहे होते हैं। उसका हम भुगतान एक तरीके से कर सकते हैं, या तो जीते जी 10 पेड़ लगा दें जो अमूमन हर आदमी लगा नहीं पाता। फिर लोक ऋण चढ़ने पर जब हमारी मृत्यु होती है, अगर हमारा दोबारा जन्म होता है तो चूंकि हम प्रकृति को नष्ट करके गए तो हमें प्रकृति जन्य रोग होते हैं। आज जितनी बीमारियां हैं ना ये सब प्राकृतिक तत्वों की कमी के रोग है सब शरीर में। तो मुझे ये खुशी हुई कि अगर जिसका गांव में संविदा से अंतिम संस्कार होगा उसके लोक ऋण नहीं चढ़ेगा, अगर भावी बस उसका दोबारा जन्म हुआ तो कम से कम प्राकृतिक तत्वों की कमी के रोग उसके शरीर में नहीं होंगे।
1: बहुत बहुत बढ़िया लॉजिक है। और ये इनफैक्ट अगर जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो क्या है, ये सब प्रकृति के वजह से ही हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है, जिनको आज हम अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं। मजा आया इस बात को सुन, लोक ऋण की बात। चलिए यार रुक के गाना सुनते हैं बढ़िया सा, फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: माता जी। तो आपको बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान विश्व रिकॉर्ड भी आपने बनाए हैं, तो कोई बताइए इसमें कोई बहुत आपके बहुत ही दिल के करीब हो उसके बारे में कुछ बताना चाहे तो बताइए।
1: मैं सिर्फ इतना कहता हूँ सर, हर सम्मान कहते हैं ना मान का पान भी भला, हर सम्मान मेरे लिए प्रिय है। पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो थे इसकी भी अद्भुत कहानी कि मैंने कई बार मैं पढ़ता था पेपर में, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए इन्होंने बनाए, और ईश्वरी कृपा से पिछले एक साल में 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सौभाग्य मुझे मिला अलग अलग घटनाओं इवेंट्स के माध्यम से।
0: अच्छा।
1: जिसमें नगर निगम के साथ मिलकर हमने योग और यज्ञ का कार्यक्रम किया, उसमें 11.25 घंटे का किसी गो में संविधा से नॉन स्टॉप यज्ञ चला। और मजेदारी की बात बताएं सर, दिन भर धूप थी, खूब धूप थी, टेंट लगा के यज्ञ हुआ, गर्मी थी, शाम को जो पूर्णावती होने लगी अपने आप घटाएं घिरी और जबरदस्त वर्षाएं, तो लोगों ने कहा आपका यज्ञ सफल हो गया। कहते हैं यज्ञ के अंत में अगर बारिश आ जाए तो सफल हो जाता है। उसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे बने, फिर 72 फीट का एक रावण बनाया प्रताप नगर में, गो में पेंट उस पर किया, गो में संविधा से जला। उस दिन पूरे भारत में बारिश थी, दिल्ली का रावण गला, कोटा का रावण गला, जयपुर में आदर्श नगर का रावण गला, और हमारे प्रताप नगर का आप देखिए, मैं ईश्वरीय कृपा को उस दिन मान गया। मेरे घर से कंटिन्यू फोन आ रहे थे कि वो आपके रावण दहन हो गया क्या, आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, पर भैरव सर्किल जहां पे हमारे रावण दहन था उससे 1 किलोमीटर की परिधि में 1 भी बूंद पानी नहीं था और बाकी सब जगह बारिश जबरदस्त। अगेन वहां पे ठाकुरीय कृपा महसूस हो गई कि ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है, और उस दिन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। फिर गाय के लिए हमने दौड़ करवाई, 25,000 लोग दौड़े भारत में पहली बार, 3 वहां मिले। फिर हमने एक भोजन वाला 0, मोदी जी ने एक निवेदन किया था जनता से 10% तेल ही कम करें अपने भोजन में से,
0: बिल्कुल।
1: मैंने खंडेलवाल समाज के साथ मिलकर बसंत पंचमी पे 3,000 लोगों के लिए 58 तरह के आइटम बनाए जिनमें तेल और घी था ही नहीं, और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको मिले। फिर एक हेल्थ का महाकुंभ कराया, 7 उसमें मिले और 6 इस बुक को मिले, ऐसे 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 19 जनवरी को दैनिक भास्कर ने इंडिया के टॉप 29 नेगेटिव हीरो में सेलेक्ट किया। तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि अपने कार्य को रिकग्निशन मिल रहा है और धीरे धीरे धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
0: भाई वाह गुप्ता जी, ये तो अद्भुत अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, तीनों शब्द आपके लिए कहने चाहिए, क्योंकि एक साल में इतने आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। और ये रावण वाली बात तो बहुत ही जोरदार बताई है आपने, वहां बारिश नहीं हुई और आपका
1: नहीं
0: उसका अंतिम संस्कार बहुत अच्छी तरह से कर दिया आपने।
1: क्योंकि गल जाता तो वो जल नहीं पाता, पर वो जला और कविता से उसका अंतिम संस्कार हुआ सफलतापूर्वक।
0: बहुत बढ़िया ये बहुत जोरदार बात है। चलो संविधा मतलब फिर उसमें क्या, आप मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें पटाखे भी फिट किए थे और ये संविधान
1: भी ग्रीन, वो भी ग्रीन पटाखे जो ग्रीन क्रैकर्स आते हैं आजकल,
0: ओके ओके,
1: वो वाले, क्योंकि बिना पटाखों के क्या हो जलता, तो लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है।

0: हजार लोगों की उस दिन उपस्थिति थी और सबने बड़ा एंजॉय किया कि ये पहली बार गांव में रावण हमने जलता देखा और उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, ये ऐतिहासिक काम हो गया, पूरे वर्ल्ड में पहली बार था जब इस तरीके का कार्यक्रम हुआ।
1: वाह भाई वाह, कमाल है कमाल। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ रुक के इसी रावण की बात पे एक गाना सुन लेते हैं और फिर अब करीब करीब आखिरी पायदान पे हम आ गए हैं और फिर थोड़ी सी बातचीत और।

0: हाँ गुप्ता जी, थोड़ा सा अब हम आगे का विजन के बारे में बात करना चाहेंगे। अब ये जो
1: जी
0: आपका अभियान चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने में रिलीजियस लीडर्स है, मीडिया है, शिक्षण संस्थान है, इनकी भूमिका क्या हो सकती है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है?
1: बहुत बढ़िया। इसका भी मैं बता दूं, हमने एक संकल्प पत्र अभियान प्रारंभ किया है जिसमें हम 11th 12th के बच्चे, क्योंकि यही हमारे भारत के भविष्य है आने वाले दिनों के, तो हमने उनको शामिल किया है और ये पूर्णतया निःशुल्क है। और मोटिवेट करने के लिए हमने कहा कि जो भी बच्चा, ये सब ऑनलाइन है और निःशुल्क है, ऐप है इसका, उसकी पूरी डिटेल है, उसका वीडियो भी बना हुआ है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, और उसमें हमने 1 करोड़ लोगों से अंतिम संस्कृति के लिए संकल्प पत्र भरवा रहे हैं कि हम कोई सा एक गव्य काम में लेंगे और जैसे भी हो पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। हमारे इस प्रोडक्ट की यूएसपी और है कि ये हम निःशुल्क देते हैं सर, किस लकड़ी का हम पैसा नहीं लेते सर लोगों से।
0: अच्छा,
1: हाँ सर, ये निःशुल्क है क्योंकि एक मन में भाव था। आज भी हमारे गांव में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो हर घर से लोग 5-5, 7-7 कंडे और लकड़ियां ले जाते हैं, पर हम शहरी जिंदगी जीने में इतने मशगूल हो गए कि यहाँ मरने वाले की लकड़ी का भी व्यापार हो रहा है, तो मन में एक पीड़ा थी कि क्या हम इसको निःशुल्क कर सकते हैं। तो वो हुआ और हजारों लोग हमारे साथ जुड़ गए। कोई भी, इसमें भी हमारा एक सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति जो हमें 1 फिनरल का कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बदले में उतने ही एमआरपी के काउ प्रोडक्ट हम उनके घर भिजवाते हैं, हम फ्री का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। और ये सिस्टम एवरग्रीन चले इसके लिए अंतिम संस्कार में कार्बन क्रेडिट के लिए अप्रूव होने वाला वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट अपना बन चुका है। आने वाले दिनों में अंतिम संस्कार यहाँ होंगे और पैसा हमारे पास इंटरनेशनल लेवल से आएगा सर।
0: अच्छा,
1: मेरी भारत सरकार से अपना
0: मतलब अगर आपके क्या एक एनजीओ चला रहे हैं, जो भी संस्था आप चला रहे हैं उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूट करे इस कार्य के लिए, तो वो क्या मॉनिटरली या फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है?
1: हाँ जी, वो कर सकते हैं, बट हम वो हेल्प ऐसे ही नहीं लेते, बदले में उतने ही एमआरपी के काउ प्रोडक्ट या हेल्थ सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हम।
0: और उसी से आपका काम जी, तो बहुत बढ़िया बात
1: जी।
0: तो आपने कोई जगह स्थान बना रखा है जहाँ ये सब मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, क्या है वो, क्या है किस
1: जी, इसके लिए हमने नगर निगम से एमओयू किया और जयपुर के 11 मोक्षधाम गोद ले लिए, हमने एमओयू करके टेकओवर कर लिए, वहाँ पे वेयर हाउस बन चुके हैं और अब समाज हमारे साथ आने लग गए। जैसे बी2 बाईपास मोक्षधाम है, इसमें सर्व समाज आ गया है, आपके महेश नगर मोक्षधाम, उसमें खंडेलवाल समाज आ गया है, सीकर रोड पे अग्रवाल शेखावाटी समाज आ गया है, इनके साथ मिलके हमने 20-20 साल के लीज लेटर जारी करवा लिए मोक्षधामों के लिए, मतलब अगले 20 साल के लिए उस मोक्षधाम का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का काम समाजों के साथ मिलके हमने ले लिया। हम भी जानते हैं जब समाज हमारे साथ किसी काम में जुड़ गए तो फिर वो सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी निरी भारत सरकार से टाई अप हो गया है और हमने एक ऐसी चिमनी डेवलप कर दी, आधी तो ये लकड़ी खत्म कर देती, पॉल्यूशन भी नेट जीरो पे कैसे लाएंगे, अगर आप मुझे मौका दे तो एक मिनट में एलाबोरेट करूं
0: जी।
1: अभी 600 किलो, 500 से 600 किलो लकड़ी लगती है सर अंतिम संस्कार में, तो आधा तो हमने किया।

0: 30-15%, पर 35% अभी भी हवा में जा रहा था। अब मेरे लिए चैलेंज ये, अगर पूरा ही कार्बन रोक दिया तो पेड़ पौधों का भोजन खत्म हो जाएगा, और जाने दिया तो हमारे और हमारे बच्चों की सांसों में जाएगा। तो इसके लिए 3 साल पहले मेरी भारत सरकार से हमने अप्रोच किया, उनको पूरा प्रोजेक्ट समझाया और एक चिमनी डिजाइन की। उस बचे हुए धुआं को वो चिमनी अपने अंदर सक करती है, पानी में वाटर स्क्रबर लगाए, वो सारा कार्बन और गैसें उस पानी में आ जाती है। अब जो धुआं निकल रहा है वो टोटली पॉल्यूशन फ्री है और वो पानी कार्बन का पानी बन गया जो पेड़ पौधों में खाद के काम आएगा।
1: बहुत बढ़िया, आपने तो बड़ा साइंटिफिकली इसको स्टडी भी किया है और उसका सॉल्यूशन भी निकाला है। कई सब लोग समस्याएं तो ढूंढ लेते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं निकालते, लेकिन आप उसकी हर चीज पे जा रहे हैं कि मतलब मिनिमम जीरो पॉल्यूशन हो, बिल्कुल आपका ये उद्देश्य है। बहुत बहुत सुंदर।
0: एक फील्ड ऐसा हो जिसमें हम नेट जीरो पे, मोदी जी ने जो वहां पे 192 देशों का जब हुआ था तब उन्होंने कहा था कि हम भारत को नेट जीरो पे लाना चाहते हैं कार्बन उत्सर्जन में। तो हमने कहा जी एक फील्ड हम भी पकड़ ले जहां पे अकेले मोदी जी तो कर नहीं पाएंगे, तो जनता को भी साथ आना पड़ेगा। तो किस फील्ड में हम कर सकते हैं, वो फील्ड मैंने चुना और उस फील्ड में अपना एक प्रयास दे रहे हैं। बाकी ठाकुर जी की कृपा आगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब बस सिंपल, मेरे को एक लाइन में कोई एक संदेश दे दीजिए श्रोताओं के लिए, जिससे हम आज की इस बातचीत को या इसका कंक्लूड कर सके।
0: जी, ईश्वर ने अगर हमें मानव जीवन में भेजा है तो जीवन में कुछ ऐसा कर जाए, कोई भी हो, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसा काम कर जाए कि हम रहे या नहीं रहे हमारा होना सार्थक हो जाए।
1: डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी, आज की इस अत्यंत एक्साइटिंग और थॉट प्रोवोकिंग और प्रेरणादायी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे से बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, नई बातचीत है, लेकिन जब तक मीडिया में बातचीत नहीं होगी तब तक ये विचार आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सही।
0: सर आपका भी धन्यवाद कि आपने अपने पोर्टल पर मुझे ये मौका दिया, तो मैं भी बहुत बहुत आपका आभारी हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से जितने लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, तो आप भी उसके सहभागी है इस बनने के।
1: एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी आगामी प्रयासों के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने इस कार्यक्रम को मिस कर दिया हो तो आप इसे प्लेटफॉर्म स्टेशन पर दोबारा सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा रीब्रॉडकास्ट भी होता है, तो आप इसको मिस मत करें, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर मिस कर जाए तो इसको दोबारा भी सुनते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी शख्सियत के साथ में। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणा।

0: लाभदायक बातें। दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए। आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
1: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: आओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू कपट्ठा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त न रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई।

अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज की।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानों जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से,
2: थोड़ी सी तो मेहरबान हो जा मुझ पर भी ऐ खुशी, थोड़ी सी तो मेहरबान हो जा मुझ पर भी ऐ खुशी। थक गया हूँ हंसी की आड़ में गम को छुपाते छुपाते, थक गया हूँ हंसी की आड़ में गम को छुपाते छुपाते। आदाब, नमस्कार। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, आज शो अल्फाज से एहसास तक में एक बेहद खास और रूहानी शाम ढलने जा रही है। आज का दिन मेरे लिए बेहद खास और मेरी खुशकिस्मती का दिन है कि हमारे साथ मौजूद हैं 35 बरसों का विशाल अनुभव रखने वाले 6 किताबों के लेखक, NLP प्रैक्टिशनर और रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के अजीम डायरेक्टर समीर गोयल जी। आज इस खास मुलाकात में हम समीर जी की जिंदगी के कई पहलुओं से रूबरू होंगे। उनकी आवाज का जादू, उनका लेखन और उनका तजुर्बा आज हमारे इस शो को एक नया आयाम दे देगा। तो दिल थाम कर बैठिए, आगाज करते हैं आज की इस नफीस और सुरीली गुफ्तगू का। बेहद बेहद खैर मकदम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है समीर जी, आइए तशरीफ रखिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही मोटा सा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं टेबल के इस तरफ हूँ, आप उस तरफ हैं, तो बहुत सारी बातें जो दिल में रह जाती हैं जब मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ, वो आज शायद कहने का मौका मिलेगा। शुक्रिया।
2: बिल्कुल, ऐसा होता ही है, हम जब माइक के इस और होते हैं तो ज्यादातर अपनी बातें तो अनकही रह जाती है ना। तो आज आपके पास पूरा टाइम है समीर जी, दिल खोल के बताइएगा। तो शुरू करते हैं समीर जी, ये बताइए कि 35 बरसों का आपका एक लंबा और कामयाब कॉर्पोरेट व मेडिकल सफर है और फिर माइक्रोफोन की इस रूहानी दुनिया से आपकी वाबस्तगी है। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर आवाज और अल्फाज के इस सफर को चुनने का ख्याल कैसे दिल में आया आपके? क्या ये एक महज शौक था या रूह की कोई पुरानी पुकार?
0: इस सवाल के कई सारे जवाब दिमाग में आते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जिस वक्त मैं कॉरपोरेट में काम कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कई बार कमेंट किया कि आप अच्छा प्रेजेंट करते हैं और आपको थोड़ा सा इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो मतलब लिया उस कमेंट को एक परसेप्शन में कि हाँ ठीक है, ऑलराइट। लोग बाग खामा खामे तारीफ भी करते हैं क्योंकि मैं उनसे बड़े ओहदे पर था, तो वो चापलूसी करने के लिए भी हो सकता कह रहे हो।
2: ठीक है, बात तो है,
0: तो ठीक है, ओके। ज्यादा गौर नहीं किया इस बारे में, आगे बढ़ते रहे। और फिर जिस वक्त कॉरपोरेट छूट गया, तब तक मैंने इसके ऊपर गौर नहीं किया।
2: ओके,
0: कॉर्पोरेट छूट गया और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी कॉरपोरेट से अलग जीने के लिए जहां मैं रह रहा हूं वहां पर आया, तो वहां पर मुझे एक मौका मिला एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर काम करने का हरिद्वार में। तो 2 महीने के लिए मैं वहां गया गया तो सोच के ये था कि मैं काफी समय तक वहीं रहूंगा, सेटल हो जाऊंगा, हरिद्वार इज ए नाइस प्लेस। लेकिन खैर 2 महीने में ही वो कार्यक्रम निपट गया। बट रेडियो स्टेशन पर सारी फैसिलिटीज थी। तब वहां पर बहुत गहराई से ये महसूस हुआ कि रेडियो क्यों बहुत ज्यादा बीमार सा हो गया है, रेडियो बहुत डिटैच हो गया है, लोग बाग रेडियो से बहुत जुदा हो गए हैं, ये सब चीजें महसूस हुई। और उस चीज को वापस लाने के जद्दोजहद में जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, हरिद्वार के ही कुछ जानी मानी लोग थे जैसे सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये वो, मैंने कहा चलो इनके इंटरव्यूज लेते हैं। तो जब इंटरव्यू लेने शुरू किए तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये काम करना है और मुझे बहुत मजा आने लगा। आता भी पहले भी था, मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह लॉन्च किया था, लेकिन इतनी गहराई से कभी महसूस नहीं किया था कि अपनी आवाज को जो सरस्वती माँ ने मुझे दिया है आशीर्वाद, उसको इतनी गहराई से और गंभीरता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शायद मेरी जिंदगी का यही लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ मुझे। तो बस इस चीज को आप कह सकती हैं जो आपने आखिरी में कहा कि
2: पुरानी पुकार,
0: रूह की वो पुरानी पुकार थी जिसने जोर मारा और बस फिर इसके बाद ये हुआ कि सारा रेडियो टांटिया भील से जुड़े और फिर नितिन से जुड़े और फिर रेडियो एसएन लॉन्च हुआ और फिर आप सब लोगों से जुड़ना शुरू हो गया, बस चल पड़ा।
2: वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बयान किया आपने। तो समीर जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप 6 किताबों के लेखक के तौर पर जब समीर गोयल कागज पर अपने ख्यालात उतारते हैं तो वो कौन सी ऐसी तसल्ली या कश्मकश होती होगी जो आपको एक पूरी किताब रचने पर मजबूर कर देती है? फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच में आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? और समीर जी, वैसे तो हर लेखक को अपनी सब कविताएं और सब अपनी किताबें बहुत अजीज होती हैं, लेकिन और अपने बच्चे की तरह दिल के करीब होती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी 6 किताबों में से कौन सी रचना, कौन सा कोई खास किताब, कौन सा किरदार या कौन सा प्लॉट जो आपके दिल के बहुत करीब है?
0: जी
2: माफ कीजिएगा, मेरे एक सवाल में कई सवाल हैं।
0: नहीं, आपने ओके आपने शुरू में कहा कि एक तो जब मैं अपनी ख्यालात को कागज पर उतारता हूं तो एक तो तसल्ली वाली बात कही थी और एक जद्दोजहद वाली बात कही थी आपने। जद्दोजहद इस बात की होती है कि सच बोलूं क्या, क्योंकि जब किताब पे लिखने चलते हैं ना तो हमारे दिल के अंदर कुछ और होता है और हम किताब पे कुछ और लिखते हैं क्योंकि हमें महसूस होता है पूरी दुनिया इसे पढ़ेगी। और अगर हमने सच्चाई लिख दी जो कि नंगी होती है वो बड़ी खराब लगेगी लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, गुडी गुडी हो जाते हैं, लोगों को खुश कर लेते हैं
2: जी।
0: तो ये तो थी वो जद्दोजहद जो हर किताब को लिखने से पहले आई, और उस जद्दोजहद पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ 20-25% मैंने कॉम्प्रोमाइज किया कि 20-25% मैंने झूठ बोल दिया
2: जी,
0: क्योंकि नहीं तो फिर लोग गाली देते कि यार ये तो बहुत ही मुंहफट किस्म का आदमी है। और तो लेकिन फिर भी जद्दोजहद के चलते 80% टाइम्स मैंने दिमाग में ये भी आया कि ये मेरी किताब है यार, नहीं पसंद है तो नाली में फेंक दो यार, मैं तो लिखूंगा, तुम्हें नहीं पसंद है कोई बात नहीं, निकाल दो मुझे समाज से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख दी। अब बात आई, ये तो हुई जद्दोजहद, फिर बात आई तसल्ली की। तो जो भी मन में था, जो बहुत सारा कुछ कहने को होता है और कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को भी तैयार नहीं है, तो वैसे में मुझे लगा लिख दो, किसी को समझना होगा तो समझ ले, सुनना होगा तो सुन ले, वरना रहने दो। मैंने मेरी बात किताब पे लिख दी, अब ये हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगी। अगर आपको पसंद आती है तो बढ़िया है, नहीं पसंद आती है तो जाने दीजिए उसको, ठीक है। तो ये जद्दोजहद और ये तसल्ली, ये दो चीजों ने मेरे को किताब लिखने पर मजबूर किया। देन फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच में आपने चूज करने का, बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का बात करी। तो सच तो ये है कि अभी तक मैंने नॉन फिक्शन तो कोई लिखा नहीं है। हाँ, कुछ प्लॉट्स ऑलरेडी हैं दिमाग में जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, फिक्शन है वो। मैंने ज्यादातर नॉन फिक्शन ही लिखने की कोशिश की है अभी तक। तो ये अभी मैं उस मुकाम पर पहुंचा नहीं जहां पर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे पाऊं कि कैसे बैलेंस बनाता हूं मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन के बीच में। अभी वहां पहुंच नहीं पाया। तो जब मैं फिक्शन लिख लूंगा तब मैं जरूर बता पाऊंगा। मतलब ओके, यहां पर मैं एक ट्रेलर जैसे मैं बोल सकता हूं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं वो किताब, और उसका नाम है 8000 स्पार्क्स। ये मतलब छोटा सा अगर बताना चाहूं तो आज की डेट में जिससे हम परेशान हैं और जो हमारी जिंदगी में बहुत न्यूसेंस फैला रहा है वो है हमारा फोन। लेकिन मैंने कोशिश की है कि फोन किस तरीके से किसी मौके पर हमारी जान भी बचाता है, तो उसके ऊपर ये फिक्शन गढ़ने की कोशिश जारी है कि 8000 फोन्स मिलकर किस तरीके से कुछ हजार लोगों की जानें बचाते हैं। बस एक छोटा सा प्लॉट है जो बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ओके
3: ठीक है, बड़ी मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। मतलब मैं सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, आप तो मुझे एक अच्छे से फैंटेसी में ले गए हैं।
0: okay.
3: मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ बहुत।
0: हाँ, मतलब एक वही क्वेश्चन खड़ा करना चाहता था सुनने वालों के दिमाग में। आपने फिक्शन की बात की थी ना, इस वजह से अब बात आती है आपके उस सवाल पे कि मेरे को सारी लिखी हुई किताबों में सबसे पसंदीदा कौन सी किताब है और कौन सा किरदार है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में एक जगह पर कह भी चुका हूं कि जो सबसे पहली किताब मैंने लिखी थी एकलव्य, एक अकेला योद्धा। एकलव्य मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं मैं, क्योंकि उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, उसको कोई टीचर नहीं मिला, उसको कोई गुरु नहीं मिला। अब उसके क्या कारण रहे उस सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मतलब सिंपल पॉइंट इज कि उसने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया, और मैं घमंडी नहीं हो रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां पर भी जो कुछ भी मैंने किया, चाहे रेडियो SN हो, चाहे रेडियो टांटिया भील हो, चाहे मेरी बुक्स हो, चाहे मेरे और कुछ भी हो, उसमें मुझे किसी टीचर का मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता। जो कुछ भी किया मैंने इंस्पायर होकर अपने आप से ही किया, तो मैं उस किताब से बहुत ज्यादा वो हूं, अटैच्ड हूं। बाकी जाहिर सी बात है दूसरी किताब जो मेरी है माई डियर MR, वो मेरी जिंदगी की कहानी है, तो उसमें किरदार मैं खुद हूं। तो

0: ठीक है, फिर भी मैं अपने आप को सेकंड नंबर पर रखता हूँ, फर्स्ट नंबर पर तो एकलव्य को ही रखूंगा। सो एकलव्य एक अकेला योद्धा, वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है।
1: बात तो फिर वही आ गई ना घूम फिर कर समीर जी, जितना मैं समझ पाई हूँ आपके जवाब से, कि एक लव्य भी आप हैं और वो जो आपकी दूसरी किताब
0: वाले
1: जो किरदार, वो भी आप, हाँ वो भी आप हैं। तो ठीक है, अपने आप को उस पेडेस्टल पर रखने में कोई बुराई नहीं है, बहुत तो अच्छा है। और आपके एक इस जवाब से तो मैं बिल्कुल क्या कहते हैं सहमत हूँ, जो आपने शुरू में बोला कि तसल्ली और कश्मकश वाली बात, और कश्मकश में आपने ये बोला कि हम सच्ची बात नहीं लिख पाते, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जद्दोजहद और ये चीज तो मैं जब लाइक कॉलेज टाइम से मुझे डायरी लिखने का शौक हुआ था और मैंने डायरी लिखना शुरू की। अब कॉलेज के जमाने में आप जानते हो कि कई रूमानी और रूहानी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में आती हैं और बट नेचुरल भी हैं। 16-17 साल की लड़की की लाइफ में कई कुछ ऐसा होता है जिससे वो मुतासिर होती है और कुछ भी लिखना चाहती है। मैंने डायरी लिखना शुरू किया बट डायरी लिखते वक्त मैं वो बातें लिख ही नहीं पाई जो मैं महसूस करती थी। इसलिए कि ये डायरी अगर किसी ने घर में पढ़ ली तो मेरी पोल खुल जाएगी और मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो इस बात से मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, मैंने ये बात बताई भी आपको इसीलिए है। बहुत खूब समीर जी,
0: शुक्रिया।
1: तो समीर जी के इन खूबसूरत ख्यालात और किताबों की बातें सुनने के बाद आइए दोस्तों माहौल में संगीत की एक नफीस चाशनी घोलते हैं और समीर जी की ही पसंद की मन्ना डे साहब की गाई हुई ये बेहद हसीन गजल हैरान हूँ सनम तुझे और क्या कहूँ, ये सुनते हैं। आइए आप भी सुनिए हमारे साथ।

0: जी समीर जी, अब आप ये बताइए कि आप NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और एनर्जी मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं, आप एक पॉडकास्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर, क्या आपका ये इल्म आपकी आवाज के उतार चढ़ाव और सुनने वालों के दिलों को सीधे छूने में मदद करता है? क्या आवाज वाकई दिलों का इलाज कर सकती है? और थोड़ा सा प्रिसाइसली आप ये NLP को भी समझा दें हमारे सुनने वालों को।
1: न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई एम जस्ट अ प्रैक्टिशनर, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ उसको प्रैक्टिस करता हूं, अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई करता हूं और कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अगर मिल जाते हैं तो उसको फिर मैं दूसरों पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूं चुपके से, जिससे उनको बुरा ना लगे, उनको पता ना चले।
0: अच्छा,
1: तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है कि मतलब मैं आपसे इस तरह से बात करूं कि आपको एक बात जो मुझे मनवानी है वो मैं बातों ही बातों में आपसे मनवा लूं।
0: जी,
1: ये पुरानी कहानी है। टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात मनवा लेते हैं, बॉसेस अपने सबऑर्डिनेट से बात मनवा लेते हैं, मम्मी जो है अपने बच्चों से बात मनवा लेती है, वगैरह वगैरह, ये किसी जमाने से चलता आया है।
0: जी,
1: लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के स्टडी करके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक टर्म बनाया गया, उसके अंदर डिटेल में उसको समझा गया, पढ़ा गया। ओके, अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक सबसे बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, जो मैंने जाहिर सी बात है कहीं देखा था और जब थोड़ा सा जानने की कोशिश की तो पता चला वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ही एक एक्सपेरिमेंट था। वो ये था, हमारे हिंदुस्तान में एक जगह पर चौराहे पे रेड लाइट होती है तो लोग बाग रुक जाते हैं उस पे, लेकिन कई कई बार लोग बाग उस लाइन से आगे बढ़कर कारें स्कूटर्स खड़े हो जाते हैं।
0: जी,
1: अब उसमें पुलिस वाले अगर उस चौराहे पे खड़े हुए होते हैं तो वो लोग रेड लाइट से पीछे खड़े होते हैं, अगर कोई पुलिस वाला नहीं होता तो वो रेड लाइट के आगे आ जाते हैं। तो ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूज करके बिना किसी पुलिस वाले को वहां खड़ा किए सारे लोगों को रेड लाइट से पीछे कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही आसान सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये बात जयपुर की है, मुझे ठीक से याद है। चौराहे के बीच में एक वो एक छोटा सा वो होता है, मतलब जिसके ऊपर पुलिस वाला खड़ा होता है, स्टैंड। उस स्टैंड के ऊपर एक पोस्टर होता है जो चारों तरफ से दिखाई देता है, मतलब एक ऊपर ऐसा कटघरा जैसा होता है। तो उसके हर फेस पर, यानी कि चार सड़क को फेस करते हुए फेसेस पर दो बड़ी बड़ी आंखें बना दी गई, सिर्फ आंखें और कुछ नहीं, कोई चेहरा नहीं। तो क्या हुआ कि फिर ऑब्जर्व किया गया कुछ ही समय में, देखा गया कि हर आदमी रेड लाइट से पीछे ही खड़ा है, क्योंकि हर आदमी देखता है कि सामने आंखें हैं जो कि उसी को देख रही हैं। उसे ये पता है कि वो सिर्फ पोस्टर है, कोई वहां है नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में, दिमाग में, कहीं अंदर गहरे उसको ये लगता है दो आंखें उसको घूर रही हैं कि मैं गलत कर रहा हूं। तो 99.99% लोग रेड लाइट से पीछे ही खड़े होते थे। सो दैट वॉज वन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सपेरिमेंट विच वॉज वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल। तो इस चीज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की।
0: जी,
1: अब आपके सवाल पर आता हूं कि इसको मैं अपनी वॉइस ओवर में या रेडियो में या इंटरव्यूज में कैसे यूज करता हूं या करना चाहता हूं। जी हाँ, जरूर करना चाहता हूं, और काफी हद तक मैं कामयाब भी हूं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं, अटकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम उनको लगती है तो मैं उनको बिल्कुल कंफर्टेबल करता हूँ वो। हाँ, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूज करता हूँ। उनको ये बोलता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है, कोई बात नहीं, हम लोग एक दोस्त की तरह पहले बात करेंगे उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, डोंट वरी, है ना। अच्छा चलो, आप ऐसा करो, मुझे एक जोक सुनाओ। चलो अच्छा, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। अरे यार, मैं फिर बिल्कुल नाटक करता हूँ और पीछे जोर से चिल्लाता हूँ अपनी वाइफ के ऊपर, अरे यार क्या कर रहे हो, इतने बर्तन क्यों बजा रहे हो। अरे यार सॉरी यार, वो पीछे हमारी वाइफ ना वो बर्तन पटक रही थी, उनको पता चल जाता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो बर्तन पटकने लगती हैं। वो भी हंस देते हैं, मैं भी हंस देता हूँ। तो हमारे और उनके बीच में जो एक जो बैरियर सा था ना, एक नर्वसनेस का, वो खत्म हो जाता है।
0: Oh, wow.
1: By using this neuro-linguistic programming technique, मैं उनको बिल्कुल comfortable कर देता हूँ और उसके बाद recording कब on होती है मैं उनको बताता ही नहीं।
0: Oh my God.
1: बस सीधे आ जाता हूँ। अरे यार छोड़ो ये सब बातें बेकार की हैं। अच्छा मुझे अपने बारे में बताइए, कहाँ हो आप, क्या करते हो, कौन हो आप, बस वो शुरू हो जाते हैं। So this is the usage of neuro-linguistic programming. There is a question lies of energy medicine. वो तो खैर उसके ज्यादा बड़े एक्सपर्ट जो है हमारे वो नितिन भाई हैं, इंद्रानी जी हैं। मैं तो एक सिंपल प्रैक्टिशनर हूँ, मतलब वो चक्रास और मेरिडियंस एंड ये सब चीजें। तो मैं नॉर्मल रूटीन छोटे मोटे प्रैक्टिसेस करता हूँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और कुछ नहीं। मैं किसी को सलाह दे नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं।
0: ओके ओके, मींस यू मीन टू से के वो जो एनर्जी मेडिसिन है दैट इज प्राणिक हीलिंग।
1: प्राणिक हीलिंग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसको हिंदी में कहेंगे तो उसको प्राणिक हीलिंग कहेंगे।
0: ओके ओके,
1: सही है।
0: यस राइट,
1: आप अपनी नाड़ियों को और मेरिडियंस को आप फ्रेश रखते हो वगैरह वगैरह, है ना।
0: वो तो मुझे,
1: हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये दो चीजें होंगी जिनका मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से जुड़ूं, लोगों से कनेक्ट करूं, और जहां तक आवाज के टेक्सचर का है, आवाज के मॉड्यूलेशंस का है, वो मैं पिछले 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर ही रहा हूं, तो मुझे लगता है और इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। जाहिर सी बात है, अमीन सायनी साहब को मैं मेरा गुरु मानता हूं। उनको लगातार सुनता रहता हूँ। उसके बाद हरीश भिमानी साहब हैं, वो भी मेरे गुरु हैं। तो इन लोगों से सीखता हूँ कि मॉर्गन फ्रीमैन हैं जो हॉलीवुड में हैं, हाउ डू दे यूज देयर वॉइस टू यू नो कनेक्ट टू पीपल। वही चीज मेरी यहाँ पर है कि मैं लोगों को किस तरीके से बिल्कुल कंफर्टेबल कर सकूं।
0: आपकी इस जवाब से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है समीर जी, वो ये है कि आप तो इस मॉडर्न जमाने के हैं और आपने ये पढ़ लिया कि ये आप जो अभी टर्म यूज कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक व्हाटएवर प्रोग्रामिंग,
1: एनएलपी, हाँ सीधा सीधा
0: एनएलपी, हाँ एनएलपी, मगर आपको क्या लगता है कि ये जो पुराने अमीन सयानी और हरीश भमानी साहब और वो जो आपने फॉरेन के बंदे का नाम दिया, उस जमाने में इन लोगों ने तो ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तब तो इतना जमाना एडवांस नहीं था, तो वो फिर अपने आप ही उनसे ऐसे हो गया।
1: देखो आरती जी, ऐसा है कि ज्ञान जो है वो हमेशा से इस ब्रह्मांड में मौजूद है। अभी मॉडर्न टाइम्स में किसी ने इस चीज को बहुत गहराई से समझ कर लिख दिया तो वो हमारे सामने किताब के शक्ल में आ गया
0: जी।
1: अदरवाइज अमीन सायानी साहब और हरीश भिमानी साहब, उनको वो ज्ञान ब्रह्मांड से मिला हुआ था। जैसे कि गौतम बुद्ध साहब थे ना, अब उनको वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर ध्यान लगाकर उनको सारा ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने कोई किताब तो पढ़ी नहीं
0: जी।
1: लेकिन उनका ज्ञान टाइमलेस है, वो आज भी चलता है।
0: बिल्कुल,
1: तो ज्ञान तो हमेशा से था, उसके रूप बदलते चले गए। मैंने उसको एनएलपी का नाम दे दिया और बता दिया, और लोगों ने मुझे बता दिया, तो लेकिन उनको पहले से पता था, तो दे वर ऑलरेडी यूजिंग इट, उनके अंदर ही था वो,
0: अंदर ही था। वही बिल्कुल, बहुत अच्छे समीर जी, मेरे भी ज्ञान के चक्षु खोल दिए आपने। अच्छा आप ये बताइए, रेडियो एसएन और रेडियो टांटिया भील को आप इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी भी एक अजीम सोच रही है, एक रेडियो ओनर होने के तौर पर आपका क्या नजरिया है, आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने सुनने वालों के दिलों में कैसा एहसास छोड़ना चाहते हैं, और इन स्टेशनों को आगे बढ़ाने फैलाने के लिए आपके आपने क्या क्या सोच रखा है, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे?
1: वैसे तो मैं टाइम एंड अगेन शेयर करता रहता हूँ अपने विजन को, क्योंकि सिर्फ मैं ये जो विजन है मेरा, उस मैं मेरा विजन नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ ये सबका विजन हो। शुरुआत हुई तब जब मुझे ये महसूस हुआ कि रेडियो मर रहा है और मुझे उसको जिंदा करना है। एक ये पैशन मेरे को दिमाग में आया, एक ऑब्जेक्टिव मेरा बना। फिर चारों तरफ देखा तो तमाम तमाम चीजें इतिहास की वापस आती हुई दिखाई दी
0: जी।
1: बड़े बड़े चश्मे, बेल बॉटम्स और बहुत सारी चीजें
0: जी।
1: और फिर इसके बाद किसी समझदार व्यक्ति ने बहुत समय पहले कहा भी था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है।
0: एग्जैक्टली,
1: हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ
0: जी।
1: तो ठीक है, मुझे ये विश्वास हो चला कि रेडियो भी वापस आएगा
0: जी।
1: अब उसे वापस लाएगा कौन?
0: mm-hmm.
1: ये बात दिमाग में थी तो मुझे लगा व्हाई नॉट मी, मैं ही क्यों ना पहल करूं। फिर नंबर वन इज दिस, नंबर टू ये बिल्कुल सच है कि इंसान अपनी आवाज सुनना चाहता है, इंसान अपने को देखना चाहता है, आई फैक्टर। तो ठीक है, आप देख लीजिए ना, किसी भी सोशल मीडिया का बेस ही यही है कि आप अपने आप को देखें, लोग बाग रील बनाते हैं
0: या सुनाएं,
1: या लोग बाग अपने को दिखाते हैं, अपने को सुनाते हैं। तो रेडियो तो किसी जमाने से सुनाने का ही माध्यम था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बस मेरा मिशन ये हुआ कि ठीक है, रेडियो पर लोग आएंगे, बोलेंगे, अपनी ही आवाज को सुनेंगे। और मजेदार वाली बात ये, मैंने हिस्ट्री उठा के देखी तो रेडियो पर आज तक ढंग से, मतलब बहुत ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आम जनता को कभी इनवाइट ही नहीं किया गया। फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने इस चीज का फायदा उठाया
0: जी।
1: उन्होंने वो माध्यम जो थे वो आम पब्लिक को दे दिए और वो पॉपुलर हो गए।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा एजेंडा है कि मैं रेडियो को अब आम पब्लिक को देना चाहता हूँ, जैसे कि वो आए, वो बात करें, मैं अकेला बात ना करूं, आप अकेली बात ना करें,
0: बिल्कुल
1: हम सब बात करें।
0: बिल्कुल।
1: तो जब ये चीज होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेडियो आगे बढ़ेगा। और अगर आप आगे बढ़ाने और फैलाने की बात करते हैं तो सोचा तो दिमाग में यही है कि बाई 2030 तक मैं 10 रेडियो स्टेशंस इसी तरीके के पूरी इंडिया में खोलना चाहता हूं, इंडिया हो या अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर कनाडा में भी बैठा कोई व्यक्ति खोलना चाहता है रेडियो

0: सोच सके, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है
1: जी,
0: जिनको ये लगता हो कि सिर्फ हम ही हम हैं, हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। मैं उन लोगों से माफी चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। तो बस कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश है, चल रहे हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आपकी ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और बहुत समझदारी से मैंने इसको एक्सेप्ट भी किया है। बहुत अच्छे। रेडियो और आवाज के इस गहरे ताल्लुक के बाद आइए सुनते हैं अनूप जलोटा जी की आवाज में एक बेहद दर्द भरी और रूहानी गजल, जिसकी रवानगी में आप बह जाएंगे हमारे समीर जी की पसंद पर। हर शमा बुझी रफ्ता रफ्ता, हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे, शीशा ना सही पत्थर भी ना था, दिल टूट गया धीरे धीरे। आइए दोस्तों सुनते हैं समीर जी की पसंद पर ये खूबसूरत सी गजल।

0: سمیر جی, آپ نے مجھ جیسے کئی فنکاروں کو راہ دکھائی اور ہمیشہ حوصلہ افزائی بھی کی, جس کی وجہ سے میں الفاظ سے احساس تک جیسا شو بنانے میں کامیاب رہی. کامیاب کیا رہی, میں اسی کوشش میں ہوں. کسی کے اندر چھپے ہوئے فن کو تراشنا اور اسے پرواز دینا, آپ کے اندر کے اس مینٹور کو یہ دریا دلی کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیسے ہو گئے آپ ایسے؟
1: یہ نا بہت ہی زیادہ مشکل کوشچن ہے, بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور اس میں وہ سب سے پہلا جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا, جدوجہد اور تسلی والا, وہ جو احساس ہے نا وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ جھوٹ بولوں کہ سچ بتاؤں.
0: میرے کیس میں سچ ہی بول دو سمیر جی.
1: اب دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگوں کو برا ماننا ہے تو مان لیں, میں تو ایسا ہی ہوں. میں اس فقیر کی طرح ہوں جس کی موج میں آ گئی تو اس نے اپنا جھوپڑا پھونک دیا. ٹھنڈ لگ رہی تھی تو اور کچھ تھا نہیں تو جھوپڑا ہی تھا, اسی کو پھونک دیا اور آگ تاپ لی. ایسا نہیں کہوں گا میں آئی ایم ناٹ گیٹنگ انمرڈ ہیئر, لیکن رابن شرما کی وہ بک ہے نا دا مونک ہو سولڈ ہز فراری, میں اس سے بھی بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. اینی ویز شروع شروع میں تو لگا کہ بس میں ہی میں ہوں, میں ہی میں ہوں, دوسرا کوئی نہیں. لیکن پھر بہت سارے لیڈرس, کیونکہ میں کارپوریٹ میں بھی کام کر رہا تھا تو ان کو دیکھا کس طریقے سے وہ پوری ٹیم کو لے کر چلتے ہیں, ٹیم ان کو فالو کرتی ہے. تو ایک میرے سینئر مینیجر ہیں, ابھی بھی ہیں لیکن مطلب اب ڈابر میں تھے وہ, ان کا نام دلیپ کمار چترویدی صاحب ہے. تو وہ ڈابر کے ڈپٹی جنرل مینیجر تھے اس وقت, اور پوری فیلڈ فورس ان کی دیوانی تھی. تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی, میں بھی ان کا دیوانہ تھا آف کورس. بہت ہی پیارے اوریٹر اور بہت ہی پیاری آواز تھی ان کی, لیکن یہ دیکھنے کی کوشش کی آفٹر آل سارے کے سارے لوگ ان کے دیوانے کیوں ہیں. تو دیوانگی اس وجہ سے تھی کہ وہ اپنی پوری فیلڈ فورس سے اتنی محبت کرتے تھے ہمیشہ. جب کبھی بھی وہ ہمارے ساتھ ورکنگ کرنے آتے تھے تو وہ ڈاکٹرز کے سامنے ہم لوگوں کو آگے کرتے تھے اور خود پیچھے رہتے تھے. اور کئی بار ڈاکٹرز یہ مان کر کہ یہ ڈپٹی جنرل مینیجر ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جائے, تو وہ کہتے تھے ارے دلیپ صاحب ہمارا ایک کام کرا دیجئے. تو وہ دلیپ کمار سر, دلیپ سر پیچھے سے بولتے تھے کہ سر ایسا ہے میری آپ کی دوستی ایک الگ لیول کی ہے, لیکن آج آپ کے چیمبر میں یہ چھورا جو کہے گا نا وہی ہوگا
0: جی.
1: آج ہیرو جو ہے وہ یہی ہے, میں صرف ایک سپورٹ فنکشن ہوں. تو لڑکے کا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا تھا کہ کیا بات ہے, باس نے اتنا میرے کو چڑھا دیا, یا مطلب آئی ایم دا ڈیسیژن میکر
0: جی.
1: ڈاکٹر بھی کہتا تھا یار دلیپ جی کیا بات ہے یار شاندار. تو پوری ٹیم اس وجہ سے دیوانی تھی. تب جب میں اس پوزیشن پر آیا تب مجھے لگا کہ اگر میں سب کچھ میں ہی کرنا کی کوشش کروں تو میں کر نہیں پاؤں گا. نمبر ون آئل برن آؤٹ, میں غزل بھی بنا لوں, میں آج کے کلاکار بھی بنا لوں, میں پریرنا دائی گیت بھی بنا لوں, میں دیو درشن بھی بنا لوں, میں باتیں ادھر کی ادھر کی بھی بنا لوں, میں کتے بلیوں کی بھی بات کر لوں, میں آتھرز کی بھی بات کر لوں, میں نہیں کر سکتا. میں اٹ از ناٹ پاسبل.
0: بالکل.
1: تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ اچھے ہیں, جو اچھا کام کر سکتے ہیں, ان کے لیے مجھے جگہ چھوڑنی ہوگی, انہیں پروموٹ کرنا ہوگا. اگر کپل دیو ہمیشہ کھیلتا رہتا تو کیا سچن تندولکر کبھی پیدا ہوتا؟ اگر سچن تندولکر نہیں ہٹتا تو کیا یہ اگلے جو آگے کے یہ جو بچے آئے ہوئے ہیں آتے؟
0: بالکل.
1: اگر میں ہی ہمیشہ گاڑی چلاتا رہوں تو میرے بیٹے کو کبھی گاڑی چلانا سیکھ پائے گا؟
0: جی بالکل.
1: تو ایز اے کوچ, ایز اے مینٹر, ایز اے سینئر پرسن, سبھی کو میدان چھوڑنے کی ضرورت ہے. और नए लोगों को आने की जरूरत है और नए लोगों में टैलेंट है। अब इतना समय गुजरा, आपकी ही बात करें, आपने अपने ही बारे में पूछा था, आपके अंदर ये चीज दिखाई दी कि आपकी उर्दू की जो डिक्शन है, प्रोनंसिएशन है, खसूसियत है, वो अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, दूसरे लोगों से तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो फिर वाई नॉट गजलों का प्रोग्राम, अगर आप, पता चला आप गजल में भी इंटरेस्टेड है तो ठीक है साहब, आप गजलें बनाइए। तनुषा के बारे में पता चला कि वो चटर पटर बड़ी अच्छी बातें करती है और कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारे प्यारे निकल के लाती है, तो वाई नॉट बातें इधर की उधर की। मैंने ही बनाया था प्रोग्राम, चटर पटर का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन मुझे लगा नहीं, शी कैन डू बेटर देन मी, तो मैं जबरदस्ती, मतलब क्यों उछलता फिरूं कि जी आई एम द वन, आई एम द वन, आई एम द वन, इसलिए उसको दे दिया। तो बेहतर है अगर आप एलिजिबल लोगों को, फिर वही एकलव्य की कहानी आ जाती है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत किया था, मैं वो द्रोणाचार्य नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि जो भी है वो आगे बढ़े, एकलव्य है तो एकलव्य हो। अब एकलव्य की सादगी और उसकी पूजा देखे कि द्रोणाचार्य ने उसके साथ जो कुछ भी किया, इसके बावजूद भी एकलव्य उन्हीं को मानता था, हाउ क्यूट वाज दैट।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, एंड दिलीप कुमार चतुर्वेदी साहब, वो जो डिप्टी जनरल मैनेजर, वो कहा करते थे, द रियल लीडर इज हु मेक्स मोर लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं ना, वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाते, ये बिल्कुल सपट बेवकूफी है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे उतने फॉलोअर्स हैं, मेरे को इतने लोगों ने सुन लिया, मेरे को इतने लोगों ने, ये गलत है। आप अपने फॉलोअर्स नहीं, अपने जैसे ही और लोग जब क्रिएट करते हो तब आप आगे बढ़ते हो। इस वजह से बस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और आपको मौका देने वाला मैं कौन होता हूं, आपको मौका देने वाला तो ऊपर है, मैं तो सिर्फ एक कुरियर वाला हूं, उसने एक चिट्ठी भेजी थी, मैंने आप तक पहुंचा दी।
0: शुक्रिया समीर जी, आपने मुझे वो क्या कहते हैं ना, स्पीचलेस कर दिया ये वाला जवाब देके। और आपकी ये बात कि आप द्रोणाचार्य नहीं बनना चाहते, ये बात मुझे बहुत, मेरे दिल को बहुत छू गई कि हम वाकई जब कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं और फिर अहंकार आ जाता है और फिर सोचते हैं कि बस वही ना, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, तो वो चीज जो अगर आपने मिटा दी या निकाल दी अपने, हालांकि बड़ा जर्फ चाहिए ये चीज,
1: बहुत मुश्किल है, भयंकर मुश्किल है।
0: मैं इस बात से भी आपके साथ इत्तफाक करूंगी कि बहुत जर्फ चाहिए कि मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ, मुझे इतने लोग सुन रहे हैं, अगर मैं किसी और को दे दूंगा वो पेडेस्टल पे खड़ा करने की इजाजत, तो वो मुझसे भी ऊंचा हो जाए अगर, तो फिर मेरा मुकाम क्या रहेगा। ये जद्दोजहद भी रहती होगी, जरूर रहती होगी, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आपने भी महसूस की होगी, लेकिन आप उससे ऊपर उठ गए। जब एक बार आप ऊपर उठ गए तो बस फिर बुद्धा वाली सिचुएशन में आप आ जाते हैं ना
1: जी।
0: मैं ऐसा समझती हूँ।
1: सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर जी। अब आप हमें ये बताइए समीर जी के डिजिटल दौर पे और पॉडकास्टिंग की इस भीड़ में ना कंटेंट का हुजूम है, मतलब एक चीज ढूंढने जाओ आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा, मगर आप अपने कंटेंट में सच्चाई, संजीदगी, और कम्युनिटी कनेक्ट को किस तरह कायम करते हैं कि मैं जो चीज कह रहा हूं एथिकली वो सही भी है, कम्युनिटी से कनेक्ट भी हो पाती है या नहीं आपका कंटेंट, जब आप कोई पॉडकास्टिंग करते हो या आप डिजिटल में आप कुछ भी करते हो, मेरा कहने का ये मतलब है।
1: ये भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं गहराई से सोचने की कोशिश करूं तो फिल्में आरती जी किसी जमाने से बनाई जा रही हैं
0: जी।
1: एक एनालॉजी लेता हूं, फिल्में किसी जमाने से बन रही हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में इंडिया में बन चुकी हैं, और अगर इंटरनेशनली बात करें तो नंबर ही नहीं पता।
0: बिल्कुल,
1: फिर भी उनमें से कुछ ही फिल्में हैं जो बहुत ज्यादा हिट होती हैं या लोगों को पसंद आती हैं। ये वही लोग हैं जो उन लाखों करोड़ों फिल्मों को भी देखने के लिए एलिजिबल हैं, और ये वही लोग हैं जो उनमें से 10, 12, 20, 25 फिल्मों को चूज करते हैं
0: जी।
1: सो कंटेंट तो देखो आरती जी बहुत सारा है पॉडकास्टिंग की आज की दुनिया में, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में
0: जी।
1: एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी इज फ्री टू से एनीथिंग
0: जी, बिल्कुल।
1: बट मुद्दा ये है कि जो एक इलीट क्लास है, जो एक समझदार क्लास है जनरेशन पॉपुलेशन की, वो क्या सुनना चाहती है, क्या देखना चाहती है, वो चूज कर लेती है। एक बहुत ही प्यारी सी बुक है जिससे मैं बहुत बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ और आई कीप ऑन, मतलब मेरे पास दो, मतलब आई कीप ऑन रेफरिंग इट, डब्ल्यू चैन किम की है बुक द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी
0: जी।
1: कि हर चीज में बहुत ज्यादा माराकाटी मची हुई है, पूरा समंदर खूनम खून लाल है।
0: ओ माय गॉड।
1: लेकिन इसी समंदर में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका समंदर नीला हो जाए, साफ हो जाए। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। मैं लगातार मेरे रेडियो स्टेशन के ऊपर अपने कंटेंट्स को लेकर, अपने प्रोग्राम्स को लेकर लगातार मेरे ब्लू ओशन को ढूंढ रहा हूं। मैं ऐसा क्या कंटेंट क्रिएट करूं जो बाकी किसी रेडियो स्टेशन पर ना हो, तो मैं ये पता करने की कोशिश करता हूं कि बाकी रेडियो स्टेशन पर क्या है। रेडियो मिर्ची, बिग एफएम और जो भी बड़े बड़े बिग गन नेम्स हैं रेडियो पर, उन पर क्या है। जो उन पर है क्या मैं उससे अलग कुछ दे सकता हूं
0: जी।
1: तो मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, उन स्टेशन पर लोग नहीं है। मेरे स्टेशन पर मैं लोगों को लाना चाहता हूं। जब लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेंट अच्छा होता जाएगा। फिर मैं कोशिश कर ही रहा हूं, दिव्य दर्शन, फिर इसके बाद बातें इधर की उधर की, थोड़ा फन हो गया, फिर मेरा गांव, मेरा देश, गांव से लोग टूट रहे हैं तो गांव से जोड़ना है। चलो सिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, किताबों के बारे में कर लेते हैं, हमारे पेट्स के बारे में कर लेते हैं, गाने गा लेते हैं, और बहुत जल्द हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं मूवीज के बारे में। तो कुछ अलग कंटेंट, बात कंटेंट की करी ना आपने, तो इलीट क्लास क्या पसंद करती है। इलीट क्लास ऐसा नहीं है कि मुझे रिक्शे वालों से कुछ प्रॉब्लम है
0: जी।
1: नहीं, मुझे रिक्शे वाले भी इंसान है, मुझे उनसे भी प्यार है। मैंने इंटरव्यू किए हैं होटल में काम करने वाले बैरों के, ऑटो ड्राइवर्स के, वो भी इंसान है, उनके पास भी कहानियां हैं
0: जी।
1: बट बात कंटेंट की है तो घूम फिर कर एक ही बात कहूंगा जो कि मेरे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में रहती है। मैं अपने सब साथियों को कहता हूं, लोगों से बातचीत करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों से बातचीत करो, बस वो कंटेंट सबसे अच्छा कंटेंट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिटी कनेक्ट
1: तभी होगा,
0: तभी होगा ना। मैंने तभी आपसे ये सवाल पूछा है बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, और अब तो बहुत अच्छे तरह से हो गया है कि आपके दिल में वाकई क्या है कम्युनिटी कनेक्ट को लेकर। बहुत बहुत सुंदर जवाब दिया आप। तो दोस्तों, सच्चाई और मेंटरशिप की इस सुंदर मिसाल के बाद आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में खूबसूरत सी गजल, जिसे सुनकर आपको बे इंतहा मजा आएगा, क्योंकि ये हमारे समीर जी की पसंद की गजल जो है, गजल के बोल हैं, गम की जो घटा आए तो फिर झूम के बरसे, खुशी बरसे भी कुछ ऐसे कि खुशी देख के तरसे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं हमारे समीर जी की ये नफीस पसंद पंकज उदास की आवाज।

0: चाय और मेंटरशिप की इस सुंदर मिसाल के बाद समीर जी आइए अब आपसे एक और सवाल करती हूँ। वो ये है कि तजुर्बात के इस लंबे और हसीन कारवा में जिंदगी ने आपको ऐसा कौन सा सबक सिखाया है जिसने आपकी सोच और जिंदगी को देखने के नजरियात को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया, और फिर ये भी कि एक रहनुमा के नाते जो लोग हमारे नए रेडियो पॉडकास्टिंग या इस क्रिएटिव दुनिया में अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश कर रहे हैं, एक रहनुमा के नाते आप उन्हें कामयाबी और सब्र का क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: यहाँ पर आरती जी आपने दो चीजें पूछी हैं। पहली तो ये कि जो भी तजुर्बात रहे, इतना लंबा टाइम गुजरा, उसमें मैंने क्या सीखा, तो ये बड़ा ही मदरहुड स्टेटमेंट हो जाता है, मदरहुड क्वेश्चन हो जाता है। लोग बाग जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे। सच्चाई बोलना, दूसरे का भला करना, महिलाओं की इज्जत करना, दुनिया में जंग ना हो, शांति हो, ये वो, ये सब बकवास बातें हैं
0: जी
1: मेरे हिसाब से। ठीक है जी?
0: जी,
1: जो मैंने सीखा मेरी जिंदगी से, जो कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ, वो ये है कि जब आप अपनी टीम को अपने से आगे रखते हैं तो आपको प्रसिद्धि या जो खुशी या क्रेडिट या फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर, यानी कि आप बहुत बड़े तोप हैं, वो तभी आएगी जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करोगे, अपनी टीम को आगे रखोगे, टीम को बढ़ावा दोगे।
0: जी,
1: अगर आप झंडा लेकर हमेशा आगे चलते रहे तो आपको ऐसा महसूस होगा साइकोलॉजिकली कि आप बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं ऐसा। क्योंकि प्रसिद्ध कब होता है इंसान? जब लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, और कोड़े मारकर जय जयकार नहीं कराई जाती। दिलों को जीत कर जय जयकार होती है। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूं जय जयकार में, तो मुझे लोगों के दिलों को जीतना होगा। तो एक्सपीरियंस यही रहा कि आप दो कदम पीछे हट जाइए, जो कुछ भी तजर्बा आपके पास है उससे अपनी टीम को हेल्प कीजिए, टीम अपने आप आपको प्रसिद्ध बना देगी, आपके लिए थैंकफुल होगी, फिर वो चाहे कहे या ना कहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है हर आदमी आपको आके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया करेगा, कोई जरूरी नहीं है। उनकी आंखों में भी अगर आपके लिए शुक्रिया दिखता तो काफी है। सो इस चीज को मेरी जिंदगी के तजर्बे ने मुझे सिखाया कि पीसफुल रहो और जस्ट लोगों को करने तो दो, उसके बाद अगर वो मांगने आए कि साहब हमें बताइए कि क्या करना है, तब सिखाओ। कूद के जाके फौरन स्लीव्स ऊपर करके, बाहें ऊपर करके, लाओ जी मैं करके दिखाऊं, ये कभी नहीं करना चाहिए। लेट द चाइल्ड प्ले, लेट द पर्सन परफॉर्म फर्स्ट। उसके बाद पर्सन को लगता है कि जी गलत हो गया, मुझे सीखना है, और फिर वो आता है आपसे, बोलता है कि सर ये गलत हो गया, मुझे बताइए, तब बताओ
0: जी।
1: तो एकलव्य को पहले एलिजिबल बनने दो, तब ज्ञान दो।
0: बिल्कुल।
1: और जहां तक आपने बात करी कि जो लोग बाग पॉडकास्टिंग या इस दुनिया के लोग बाग है और
0: अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढ रहे हैं,
1: जी जी जी, तो उनको अगर मैं कुछ संदेश देना चाहूंगा तो ये है कि आप कहोगी कि मैं हर बात में एक किताब की बात करता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वो अपनी किताबों में लिख गए, तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। तो एक और बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, देर इज नो प्लान बी फॉर योर ए गेम, देर इज नो प्लान बी फॉर योर ए गेम, यानी कि आपका जो गेम है वो ए है, तो प्लान बी ए ही होना चाहिए। There is no plan B, okay? उसमें उस ईशन बो, उसने द राइटर इज ईशन बो, उसने लिखा है कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 15 साल लगते हैं। आप किसी भी शख्सियत को उठा के देख लीजिए, अमिताभ बच्चन, मोदी, सचिन तेंदुलकर, कोई भी, उसको अपनी कला की ऊंचाइयों तक पहुंचने में 15 साल से ज्यादा कम लगे ही नहीं है
0: जी,
1: तो आपको भी उतने ही लगने वाले हैं।
0: तो
1: तसल्ली बख्श, आराम से चलते रहिए, जो आप करना चाहते हैं करिए, बट चलते रहिए, इमीडिएटली रिजल्ट्स की उम्मीद मत करिए।
0: जी
1: 15 साल अगर आप करते रहे, अब जैसे मैं भी, मुझे 5 साल हो गए हैं ये रेडियो का काम करते हुए, मुझे पता है अभी 10 साल और बाकी हैं
0: जी,
1: है ना, ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है 10 साल के बाद रेडियो एसएम वुड बी ऑन हाइट्स
0: जी।
1: तो ठीक है, आई वेट, मैं वेट करूंगा, कोई बात नहीं। सो मैसेजेस दोस्तों, इंतजार कीजिए, जिस भी स्किल में आप जा रहे हैं
0: जी,
1: मैं रेडियो की बात नहीं कर रहा, कोई भी 15 साल तो लगेंगे, तो सब्र रखिए, टीचर्स ढूंढिए, उनसे मदद मांगिए, ईगो को घर पे छोड़ के आइए,
0: बिल्कुल,
1: और बस आगे बढ़ते जाइए।
0: बहुत खूब, बहुत इंस्पायरिंग आंसर है समीर जी आपका, वाकई कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाती, देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस, एनी काइंड ऑफ सक्सेस। जो भी हमारे बहुत सब मशहूर लोग हुए हैं, वो इतना लंबा वक्त तो लगा ही, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कपिल देव हो, चाहे कोई भी हो, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आपसे तो बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा समीर जी, और दिल कर रहा है कि बस करते ही रहें, करते ही रहें। प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि अब हम आपकी लास्ट में एक गजल है जो अनप्लग वर्जन है, और वो आपकी ही आवाज में है, तो आप हमें उस गजल के बारे में बताइए, फिर हम उसको प्ले करेंगे।
1: निदा फाजली साहब की ये गजल है और बहुत फेमस है, चित्रा सिंह जी ने गाई है और बहुत सारे गजल गायकों ने जरूर जरूर इसको गाया है, बल्कि अभी मैं देख रहा था शब्बीर कुमार साहब ने भी इस किसी फिल्म में इसको गाया है।
0: अच्छा।
1: कोविड के दौरान की बात है, तो मैं उस वक्त जयपुर में ही था, तो एक दवाइयों की एक होलसेल दुकान थी वहां पर काम करता था, तो जाहिर से बात है मुझे, क्योंकि कोविड में हम लोगों को अलाउड था, मेडिसिन वालों को, तो मैं जाया करता था, तो सड़कें सुनसान दिखाई देती थी, तो उस वक्त ही मुझे ये गजल कहीं से सुनने में आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, अप्रोप्रिएट सी लगी, तो उस वक्त मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। अब बाकी जाहिर से बात है ये आज के टाइम पर भी पर्टिनेंट है, इस सेंस में कि आपको अकेले ही चलना होगा, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन धूप बहुत तेज है, देख लो, चल सको तो चलो, मैं तो चल रहा हूँ, धूप तो मेरे लिए, मैं तो बर्दाश्त करूंगा, अगर आपकी हिम्मत है तो आइए चलिए। तो मुझे इस वजह से ये गजल बहुत पसंद है कि हिम्मत वालों के लिए ये है साथ में चलना, आओ चल सको तो चलो।
0: बिल्कुल, गजल के बोल भी तो कुछ ऐसे ही है ना
1: जी,
0: के सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। वेरी वेरी नाइस, बहुत। तो समीर जी, आपकी हम ये अनप्लग गजल बजाते हैं, और उससे पहले अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुझ जैसे तमाम नए फनकारों का आपने हौसला बढ़ाया, और हमारे सुनने वालों के साथ ना हसीन ख्याल साझा करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत बहुत, यानी कि बहुत शुक्र, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुक्रिया समीर जी, आदाब, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, जो आपने इस तरीके के क्वेश्चंस बनाकर मेरे अंदर से बड़े बड़े सच्चाई वाले जवाब निकलवा लिए, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और सुनिए, सुनने में ज्यादा मजा आता है
0: जी, बहुत। आइए दोस्तों, समीर जी की ये नया अनप्लग वर्जन को सुनते हैं, सुन के आप भी मेरी तरह दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आइए,
1: निदा फाजली साहब की लिखी हुई ये प्यारी सी गजल मुझे बहुत पसंद है।
2: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के भी वास्ते राहें कहां बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो देखो तो चल लो। सफर में धूप तो दोस्तों होगी, जो चल सको तो आओ चलो। यहां इस जहां में किसी को कोई रास्ता नहीं देता, जी हां यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा कर तुम संभल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। कहीं नहीं कोई सूरज, चारों तरफ धुआं धुआं ही है। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। चुनौती है दोस्तों, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। हमारी यही तो है ना जिंदगी दोस्तों, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से अगर तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो देखिए दोस्तों होगी, अगर चल सको तो चलो।
0: वाह, क्या हसीन सुरीला और यादगार सफर था ये। समीर जी के हर एक जवाब, उनकी पसंद की रूहानी गजलें और उनका लंबा तजुर्बा, सच मानिए आज का ये शो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में दर्ज हो गया है। शो के अंत में गुलजार साहब की दो बेहद खूबसूरत सत्रें आप सबके नाम करना चाहूंगी। अच्छी यादें हवाओं की तरह होती हैं, अच्छी यादें हवाओं की तरह होती हैं, बंद कमरों में भी महक छोड़ जाती हैं। समीर जी की इतनी खूबसूरत बातें, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे अंदर तक महकती रहेंगी। आपने भी इनका लुत्फ उठाया होगा दोस्तों। ये एक यादगार पल है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस इसी महक और सुंदर एहसास के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो टांडिया भील और रेडियो SN, और आप अपनी रेडियो दोस्त हरती रॉय को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी। छपा खैर, शुभ रात्रि, रब रखा, फिर मिलेंगे।
3: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
1: तो दोस्तों कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए। मिलते

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबवा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिससे हमारा किसान है उसकी आजीविका सशक्त बने, साथ ही अपने खेतों में हो रहे बदलावों को वो समझ सके और नवीनतम खेती कर सके, साथ ही जो उन्नत खेती है, जो व्यवसाय में जो लाभकारी खेती है, वह खेती हमारा किसान कर सके। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते इस दौर में हमारी प्रकृति, न केवल हमारी प्रकृति में बल्कि हमारे खेतों में, हमारी कृषि भूमि में भी बदलाव दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का किसान जो है वह व्यवसायिक खेती करने लगा है और अधिक से अधिक उपज की आस में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है, जिससे न केवल हमारी मृदा लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हमारे लिए हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तृत से जानेंगे नाइट्रोजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को, साथ ही हम जानेंगे कि हमें इसे अपने खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आदि महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે. હું આપકે સાથ મોનાલિસા. नाइट्रोजन पौधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुराक है और इसलिए किसान अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का काफी इस्तेमाल करते हैं. यानी कि इसे फसलों के लिए एक दोस्त के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब यही नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो ये हानिकारक भी बन सकता है. यानी कि यही जो नाइट्रोजन है जो दोस्त है वो एक दुश्मन का रूप ले सकता है. तो ऐसे में किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए, क्या और किस तरह के नुकसान इससे हो सकते हैं, चाहे पर्यावरण की बात हो चाहे मानव स्वास्थ्य की बात हो, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श के कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे. तो आज विचार विमर्श कार्यक्रम का जो विषय है वो है नाइट्रोजन, दोस्त भी दुश्मन भी. और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आइए आपका परिचय करा दें. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तीन प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार.
1: नमस्कार.
0: और इसके साथ ही डॉक्टर आरती भाटिया.
2: नमस्कार.
0: और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीके शर्मा भी मौजूद हैं.
3: नमस्कार.
0: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में. इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर.
4: नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल की प्रमुख गैस है. वायुमंडल में इसकी हिस्सेदारी 78% है. ये आम तौर पर निष्क्रिय ही रहती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी गैस इसके संपर्क में आती है ये तुरंत सक्रिय होकर इस्तेमाल योग्य नए उत्पाद बना लेती है. मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रेट, ये सब नाइट्रोजन के उत्पाद हैं. इनका इस्तेमाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में कच्चे माल के तौर पर होता है. हालांकि फसलों के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक जरूरी खुराक हैं, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है. इन उर्वरकों का कुछ हिस्सा तो पौधे ले लेते हैं, लेकिन बड़ा भाग वायुमंडल में वापस चला जाता है. इसके अलावा नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का कुछ हिस्सा नाइट्रेट में परिवर्तित होकर भूजल में भी चला जाता है. इस तरह ये उर्वरक भूजल और वायुमंडल दोनों को प्रदूषित कर देते हैं. उर्वरकों के अलावा जलते जीवाश्म ईंधन और उद्योगों से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनते हैं जो वायु प्रदूषक हैं. दूसरी ओर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है. भारत की ही बात करें तो 1991 से 2001 के बीच जहां 52% नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित हुआ था, वहीं 2001 से 2011 के बीच ये मात्रा बढ़कर 69% हो गई. नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर काबू पाने में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है.
5: जी हाँ किसान साथियों, आवश्यकता से अधिक जब हम किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं. तो किसान साथियों, आज का जो हमारा कृषि का जो विषय है वो है नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है और इससे क्या लाभ है हमें और क्या इसके हानिकारक और दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों की राय.
1: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों, जैसा आप समझते हो कि पौधों को अपनी बढ़वार के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे ऊपर है वो है नाइट्रोजन. यूरिया का नाम सभी किसान भाई जानते हैं या नाइट्रोजन के जो दूसरे उर्वरक हैं जैसे DAP से भी 18% नाइट्रोजन मिलती है, ये सब बातें आप जानते हैं. आपकी फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है. ये आपकी फसल में कल्ले बढ़ाती है, उसकी पत्तियों की संख्या बढ़ाती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाती है, वनस्पतिक बढ़वार के लिए बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ ये प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाती है. दूसरे अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो किसान भाई जानते हैं कि पत्तों का रंग पीला हो जाता है, फसल पीली पड़ जाती है, किसानों को चिंता हो जाती है. और दूसरी तरफ अगर हम खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, जो अन्न का उत्पादन हो रहा है, दालों का, तिलहन का, सब तरह का, वहां पे भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है. समस्या कब आती है, जब हम इसका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं, उससे काफी कई तरह के इसमें नुकसान होते हैं।
0: बिल्कुल, तो कई नुकसान इससे हो सकते हैं और जो एक चिंता का सबब बनता चला जा रहा है नाइट्रोजन प्रदूषण जिसे अब कहा जा रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि ये नाइट्रोजन प्रदूषण है क्या और क्या कुछ इसके कारण होते हैं।
2: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन का अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारी पृथ्वी मृदा में, जल में, वायु में ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि प्रदूषण जो हमारा जो वातावरण है, चाहे इसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, उसमें जब नाइट्रेट, नाइट्रोजन, अमोनिया की मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हम उसको नाइट्रोजन प्रदूषण की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बताया बहुत आवश्यक है, लेकिन यही महत्वपूर्ण तत्व अगर आवश्यकता से हम अधिक डालेंगे मृदा में तो वो प्रदूषण का रूप धारण कर लेता है।
0: जी बिल्कुल, तो ऐसे में डॉक्टर भाटिया, आज की स्थिति को अगर हम देखना और समझना चाहे तो हमें बताएं कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है भारत में आज वो कितना है यह स्तर।
3: देखिए, आपको अभी डॉक्टर शर्मा ने जैसे बताया कि हम लोग की जो मृदा है, जो पानी है, इसमें हमारा जो मात्रा है नाइट्रोजन की वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसका लगातार प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जो आप मानेंगे कि जैसे कि पानी में, हमारे भूजल में जो नाइट्रेट है उसकी जो मात्रा है, जो कि मतलब 40 से 45 ppm होनी चाहिए, जब इससे ज़्यादा अधिक हो जाती है तो ये हमारे भूजल का प्रदूषण करता है। तो ये सब, जैसे आपने अभी पूछा कि ये जो इनकी मात्राएं हैं, हमारे 2000 से 2011 तक जो हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हवा में पाए गए, उनकी मात्रा में कम 50% तक बढ़ोतरी हुई। और आप मानेंगे अब 2011 से लेके 2020 तक इनकी मात्रा में 70% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो लगातार आप देखिए कि साल पर साल हमारा नाइट्रोजन के प्रदूषण की मात्रा हमारे वायुमंडल में, हमारी पानी में, हमारी मृदा में बढ़ती जा रही है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मतलब नाइट्रोजन उर्वरक का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम नियमित तौर से नहीं कर रहे।
0: बिल्कुल, तो डॉक्टर दिनेश, जब स्थिति ऐसी है कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है ये वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह आशंका होती है कि इसका मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर दिनेश
1: जी, मानव स्वास्थ्य पे भी नाइट्रोजन का बुरा असर आ सकता है, क्योंकि जैसे पानी प्रदूषित होता है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो जल है, भूजल है, उसमें कई बार नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है और ये नाइट्रेट कई तरह के रोग भी इंसानों में कर देता है।
0: जी,
1: और
0: जी।
1: खास करके बच्चों में ये समस्या लाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की आती है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि सतह पे भी ये सतही जल जो है उसके साथ भी बह के नदियों में मिल जाता है, समंदर में चला जाता है, वहां भी ये समस्याएं पैदा करता है और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसको प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल, डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि और विस्तार से हमें इसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताएं, खासतौर पर अगर मानव स्वास्थ्य की ये बात करें तो कैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम का अभी जिक्र किया है, तो किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने की जो समस्या है वो नाइट्रोजन के प्रदूषण से हो रही है।
2: देखिए, जो नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है, जब इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक के स्तर पर आ जाता है। जैसे हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हम कहते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, वहां पर इसकी मात्रा लगभग 100 के करीब पहुंच गई है, कुछ स्थानों पर देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो हमको इस दिशा में सचेत होने की जरूरत है कि किस तरह से हम भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा को नियंत्रित रखें, कौन कौन सी हम शस्य विधियां अपनाएं ताकि हम नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित कर सकें। जैसा कि बताया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा उस जो प्रदूषित जल है उसका सेवन करता है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, जो उसकी जो ऑक्सीजन संवहन की जो क्षमता है रक्त में वो प्रभावित होती है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम दिया गया है। जब बच्चा कहते हैं ना नीला पड़ गया बच्चा, तो वो उसी की वजह से होता है। तो इसमें पोषण का विशेष ध्यान रखना है बच्चे का, और ऐसा जल इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषित ना हो। और रही बात ये कि मानव स्वास्थ्य पर जैसा बताया वो होता है, और नाइट्रोजन का ना केवल मानव स्वास्थ्य पर, हमारी मृदा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मृदा अम्लीकृत हो जाती है। जब मृदा अम्लीकृत हो जाती है तो उसमें ऐसी जो माइक्रोबियल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, जो वहाँ के सूक्ष्म जीव हैं, उनकी आबादी में, उनकी संरचना में परिवर्तन आने लगता है। तो एक बहुत बड़े एक विषय है कि किस तरह से हमको नाइट्रोजन के कारण जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो इस सबका हमको ध्यान रखना है। जो असंख्य सूक्ष्म जीव जंतु हैं हमारी जो मृदा है उनमें परिवर्तन हो सकता है, तो इन सब पे अध्ययन की, विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। इस दिशा में बहुत कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मृदा, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानिकारक ढंग से प्रभावित करता है।
3: इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी, इसलिए कि जल का सेवन करते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक रहती है तो उससे हमारे में कैंसर और गोइटर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत एहतियात हमें बरतना पड़ेगा हमारे नाइट्रोजन के उर्वरकों को, कि भूजल को ये प्रदूषित ना करें, क्योंकि भूजल का इस्तेमाल आप देखिए ना, जगह जगह पे हमारे को सिंचाई के लिए नहीं, इवन पीने के लिए भी इनका, इस जल का प्रयोग किया जाता है।
1: साथ ही इसमें एक बात और है कि जब जरूरत से ज्यादा यूरिया वगैरह हम लगाते हैं जैसे, तो जो नाइट्रेट बनते हैं कुछ तो पानी में चले जाते हैं, कुछ पौधा ले लेता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ हमारी सब्जियां हैं जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है या और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे तमाम उदाहरण है, तो आपको सोच समझ के प्रयोग करना है, क्योंकि ये नाइट्रेट फिर आपकी सब्जी के माध्यम से इंसानों में चला जाता है और उसी तरह के नुकसान कर सकता है जो अभी बताए गए।
0: बिल्कुल। तो डॉक्टर भाटिया हमें ये बताएं कि जैसे कि आप इससे पहले भी हमें बता रही थी कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 70% तक जो है इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन क्या ये समस्या हमारे देश की ही है या ये एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है? साथ ही जिससे जलवायु परिवर्तन से भी हम सभी जूझ रहे हैं, एक वैश्विक चिंता इसको लेकर के हो गई है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीजें हैं क्या उसमें भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता है, भागीदारी होती है नाइट्रोजन पॉल्यूशन की?
3: जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। ये जो हमारा नाइट्रोजन है, जब हम इसको मृदा में लगाते हैं तो इसमें कुछ तो पौधा, जैसे दिनेश जी ने बताया, ले लेता है, लेकिन कुछ ये जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन होता है हमारी मृदा से, जो कि अमोनिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में सबसे महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है, ये हमारे, जब इसका उत्सर्जन होता है तो ये हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, ये जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है तो सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं हमारी धरती पे और फिर विकिरित होती हैं, इन किरणों को, जिनको कि हम IR रेडिएशन बोलते हैं, ये इन किरणों को, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये इनको अवशोषित करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे, जैसे जैसे एक जो इसको अवशोषित करने के बाद में, ये धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ाता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो गैसें होती हैं जो कि हमारे वायुमंडल का ये तापमान बढ़ाती हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इसके लिए सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर ये ही गैसें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका एक जो कण है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में 300 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो हमारे औद्योगिक धंधे हैं, जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे ज्यादातर इसका उत्सर्जन होता है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी धरती से, कृषि के क्षेत्रों से निकलती है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन का प्रयोग होता है उस जगह पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा ही होगा। लेकिन आप ये देखिए ना, 1 और 300, तो इतना ज्यादा गुना उसकी क्षमता है वायुमंडल में गर्मी पैदा करने की।
0: जी, यानी कि भागीदारी भी इसकी सबसे ज्यादा है, और जो प्रदूषण का स्तर है जैसा कि बढ़ रहा है डॉक्टर दिनेश, और उसमें हम देखते हैं कि जो कृषि का योगदान है नाइट्रोजन प्रदूषण में वो सबसे ज्यादा है। बाकी भी कुछ और क्षेत्र हैं जिनका, जिनकी भागीदारी इसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कृषि का ही आता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो खासतौर पर जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका, तो ऐसे में सवाल उठता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए कि ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी रोकथाम हो सके, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: बिल्कुल, जो यूरिया है या नाइट्रोजन है इसका बहुत से राज्यों में हमारे बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही असंतुलित प्रयोग हो रहा है। मोटे तौर पे ये बताया जाता है कि 4:2:1 के अनुपात में उर्वरकों का, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशधारी जो उर्वरक है इनका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड,

0: देते हैं, एक तरह की ताकत देते हैं उसको, जिससे पौधा सीधा खड़ा रह सके। इसी तरह से कीड़े मकोड़े बीमारी फिर ज्यादा आती है नाइट्रोजन का ज्यादा प्रयोग करने से, जिससे आपको फिर पीड़क नाशियों का, रसायनों का ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। यानी ये समस्या है, इसमें आपको नाइट्रोजन पे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसको आप कम करके फॉस्फोरस और पोटाश भी डालें, साथ ही साथ जिंक है या सल्फर है, गंधक आजकल बहुत जगह जरूरत पड़ रही है, तो इन सब तत्वों का आपको संतुलित प्रयोग करना है, जिससे कि नाइट्रोजन के कुप्रभावों से आप बच सकें और संतुलित 4-2-1 मोटे तौर पे, जैसे किसान भाई जानते हैं, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, क्या आप भी कोई सुझाव देना चाहेंगे, विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें किसान यूरिया का, इसके लिए क्या उन्हें करना चाहिए?
2: जी, जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि हमको 4-2-1 के अनुपात में इनको डालना है, लेकिन इसके साथ साथ हमको जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है, हरी खाद है, उनका प्रयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम हरी खाद या ऑर्गेनिक इनपुट्स या जो हमारे घूरे की खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट है, उससे क्या करते हैं कि हम मृदा में कार्बन के स्तर को बरकरार रख सकते हैं। हम कहते हैं कि कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग, यानी कि अगर आपकी मृदा में कार्बन व्यवस्थित है तो बहुत सारे तत्वों का चक्रीकरण अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो कार्बन इनपुट बहुत जरूरी है, मतलब इनके सही ढंग से काम करने के लिए। तो कार्बनिक पदार्थों का चक्रीकरण मृदा में होना चाहिए, हरी खाद का हम प्रयोग करें, तो इस तरीके से हम। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो हम सीवेज स्लज इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उसको जो हमारा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2022 तक हमको यूरिया की खपत आधी करनी है, तो वो किस तरह से होगी, वो इस तरह से आदि होगी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो हमारे जो कार्बनिक खादे हैं, जो हरी खादे हैं, ये जो सीवेज स्लज है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका हम समन्वित ढंग से अपनी खेती में इस्तेमाल करें, तो हम इसको काफी हद तक हल कर सकते हैं।
3: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना, अगर हम नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार अगर हमारे खेतों में हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से हमारे खेतों में इसे ना डालें, तो कहीं ना कहीं हम इसका जो दुष्परिणाम है इसे हम बच सकते हैं और हमारे खेतों की मृदा को, हमारे जल के स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, नाइट्रोजन से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नाइट्रोजन क्या हमारे लिए यह दुश्मन है या हमारा मित्र है, तो कैसे हमें नाइट्रोजन का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके कैसे हम जो हमारे मिट्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी भूमि है वो जो ठोस बन रही है, उससे भी हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो आइए इसे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे एक्सपर्ट की मदद से।
1: आने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है
2: जी,
1: वो उसमें से यूरिया जो है, जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा लगता है, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर, आप कोई भी 80% तक हमारा यूरिया का ही उपयोग होता है
2: जी।
1: तो जो ये हमारा रासायनिक उर्वरक है, ये 80% तक जिम्मेवार है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रासायनिक उर्वरक की मात्रा कम ना करते हुए, अगर हम कम नहीं कर पाते तो उसका सही तरह से हम उपयोग करें। तो जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि भाई हमें उर्वरक को जैसे 4-2-2 की मात्रा में उसको लगाना है, लेकिन आप ये देखिए जो 4 भाग नाइट्रोजन के लगाने हैं वो हम इकट्ठा ना लगाएं, वो हम उसको बांट बांट के स्प्लिट एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं कि भाई सही समय पे सही अनुपात में हमें उर्वरक लगाना है। उसके लिए एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं एक बड़ा एक ये छोटा सा यंत्र है जो कि जिसको कि हम बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, ये बहुत ही सस्ता सा, कुल मिला के 50 से 100 रुपए तक की इसकी मूल्य है। तो इसका प्रयोग करते हुए अगर आप नाइट्रोजन के उर्वरक को लगाएंगे तो इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें कई तरह के आपके जो हरे रंग के वो है माप
2: पट्टियां बनी,
1: पट्टियां बनी है। तो आप ये देखिएगा कि ना आपको जैसे ये है, जैसे ये है, ये वाली जो बीच की पट्टी है, तो अगर इससे एक तरफ हल्की है एक तरफ गहरी है, तो आपको अपने पौधे के ऊपर की तीसरी पत्ती आप लेंगे और आप इसके साथ में पत्ती का मिलाप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा अगर पत्ती का रंग हल्की तरफ आ रहा है या गहरी तरफ आ रहा है। अगर गहरी तरफ आ रहा है इसका मतलब आपको उर्वरक नहीं लगाना, और अगर हल्की तरफ आ रहा है, पीलेपन में आ रहा है, उसका हरा रंग कम आ रहा है, तब आप अपना उर्वरक का जो एक भाग है, जैसे कि आपने अगर 100 किलो उर्वरक लगाना है तो आप इकट्ठा एक ही टाइम पे उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग करके लगाएंगे। अगर 25 किलो 50 किलो एक टाइम पे लगाएंगे तो उससे क्या है, पौधा उसको सही मात्रा में ले पाएगा और जो हमारे उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण में जा रहा है, जो हमारा भूजल में जा रहा है, उसमें हम काफी कमी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है जिससे कि आपको पता लग सकता है कि भाई वाकई में हमारे को उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। ये मतलब आपको कुछ नहीं करना, इससे इसके हिसाब से आप अपने 8-10 पौधों को मिलाव करके देख लीजिए, और अगर आपको पता लगता है कि ज्यादातर इसकी वजह, इसका जो रंग है वो हल्की साइड पे है, हल्का हरा है, तब तो आप डेफिनेटली उर्वरक लगाइए। लेकिन अगर बीच के पट्टे से दाएं तरफ है तो ज्यादा गहरे में है, तब इसका मतलब आपके पौधे को उर्वरक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उर्वरक को 1 हफ्ते या 5-7 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इससे आपका उर्वरक की मात्रा में भी कमी आएगी और जो हमारा ये जो प्रदूषण जो बताया है इसमें बिल्कुल बहुत सुधार होगा।
2: बिल्कुल। और डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम देखते हैं, आपने भी बताया कि जो हमारे किसान है वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक जो है, यानी कि मात्रा में वो काफी ज्यादा डाल देते हैं अक्सर, कहना यह भी रहता है कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है वो भी एक समस्या है, और ऐसे में उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा अगर हम मात्रा में डालेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। तो पहले तो हमें यह बताएं कि जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसके क्या कारण होते हैं और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है।
3: देखिए, जैसे किसान भाई यूरिया का या नाइट्रोजन धारी किसी भी उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले वो पौधे के काम आता है, कुछ हिस्सा पौधा ले लेता है, बाकी खास करके नाइट्रोजन, इसका नुकसान एक तो वाष्पीकरण से हो जाता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, अमोनिया बन के ऊपर उड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई तो यूरिया धुल के आपका नीचे चला जाता है जमीन में, या नाइट्रेट बनते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और धान के केस में तो ये नाइट्रेट जो है हैं विनाइट्रीकरण होके ये हवा में चले जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, बार बार चर्चा हो रही है इसकी, नाइट्रोजन गैस के रूप में भी ये उड़ जाते हैं, तो ऐसे करके यूरिया का नुकसान हो जाता है। इस फसल में आपने डाला तो इसी फसल में यूरिया लगभग समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो उपयोग क्षमता है वो कम हो जाती है। मोटे तौर पर नाइट्रोजन की उपयोग क्षमता 30-40% है, इसके आसपास है, यानी जो बाकी 60% हिस्सा है इसका वो कहीं ना कहीं पर्यावरण में चला जाता है, चाहे पानी में जाए चाहे हवा में जाए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी दिशा में जो है वो सरकार ने भी प्रयास किए हैं, आगे भी कर रही है, और किसानों
2: नीम लेपित यूरिया का जो इस्तेमाल है जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। डॉक्टर शर्मा हमें बताएं कि किस तरह से जो नीम लेपित यूरिया है वो इस समस्या का निदान साबित हो सकता है।
4: जी, जैसा सबसे बड़ी बात बताई दिनेश जी ने कि हम लगभग 30-40% हमारा जो नाइट्रोजन है इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी जो लगभग 60% है वो वायुमंडल में चला जाता है, चाहे वो अमोनिया के फॉर्म में है, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में या नाइट्रेट के रूप में। तो इस सब क्षति को रोकने के लिए भारत सरकार की एक ने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको नीम लेपित कर सकें, ताकि वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का काम करता है और उसकी वजह से जो उसका जो विघटन है वो कम होता है और वो लंबे समय तक पौधों को उपलब्ध हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहल है भारत सरकार की, और जिसकी वजह से बहुत से हमारी जो यूरिया की बचत होगी और हमारा पर्यावरण संतुलित रह पाएगा।
2: बिल्कुल
1: डॉक्टर भाटिया, इसी में मैं बताना चाहूंगी कि अब जो हमारा बैग है यूरिया का वो 50 किलो की जगह पे 45 किलो का हो गया है। तो नीम लिपित यूरिया कम से कम आप देखिए ना 50 और 45, 10% तक हमारे उर्वरक की बचत इसके कारण किसान भाइयों के लिए वैसे ही हो रही है। और आप देखिए आपकी उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है, तो ये तो हमारी सरकार का एक बहुत ही बढ़िया ये
2: कदम उठाया गया है। किसान की जो लागत है वो भी कम हो रही है और इसका जो बेहतर इस्तेमाल हो रहा है इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है, तो ये दोहरा फायदा है किसानों के सामने अगर वो नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दिनेश, इसके अलावा और कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए जो नाइट्रोजन की भरपाई है उसे फसलों में करने के लिए? जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में भी हमें बताइए।
3: जी बिल्कुल, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारे कई स्रोत हैं इसके, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहे हैं आजकल 17-17-17, 19-19-19 तमाम तरह के आ रहे हैं। इसी तरीके से अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया था कि जो हमारे जैविक खाद है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये सब साथ ही साथ इनके अलावा जो जैव उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन बनाने का काम करते हैं एक तरह से, राइजोबियम है या दूसरा आपका एजोटोबैक्टर है, एजोटोमोनास है, इन सारों का भी टीके किसान भाइयों को लगाने चाहिए। यानी संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है पहली, ये अलग बात है, और दूसरा जो हमारे पोषक तत्व के अलग अलग स्रोत है, जैविक स्रोत, रासायनिक स्रोत और आपके जैव उर्वरक, इनका सही सामंजस्य आपको बिठाना है। जहां तक आपके रासायनिक उर्वरकों की बात है तो इसमें समय की बात तो हमने बता दी कि भाई कब इसको लगाना चाहिए, लीफ कलर का चार्ट प्रयोग काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं स्रोत की, इसमें भी क्या होता है कि जैसे धान के केस में यूरिया के मुकाबले अमोनियम सल्फेट ज्यादा फायदा करता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर आता है वो भी काफी फायदा करता है। अभी अभी हाल में कुछ कंपनी बना रही है यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, ये द्रव फॉर्म में होता है, ये भी काफी अच्छा स्रोत है। यानी जो स्रोत होते हैं उनमें भी हमें विविधीकरण करना है, खाली यूरिया पर निर्भर ना रहे। एनपीके फर्टिलाइजर है, एनपीके फर्टिलाइजर का प्रयोग आप करें तो साथ में फास्फोरस और पोटाश भी चली जाती है। इसी तरीके से जो मेथड है लगाने का, जो तरीका है, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने हैं। जैसे यूरिया का छिड़काव करके हम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, कुछ किसान भाई डीएपी को छिड़कते हैं, साथ ही साथ एनपीके फर्टिलाइजर को भी छिड़का जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ड्रिप सिस्टम से जो फर्टिगेशन सिस्टम है उसको अपना के भी हम उर्वरकों की क्षमता बढ़ा सकते हैं।
2: बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम की यहाँ पर आपने बात की है, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी इस पर और थोड़े विस्तार से किसानों को बताएं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश
3: जी बिल्कुल, आजकल ड्रिप सिस्टम खास करके जहाँ पे पानी की कमी है और पानी भी हमें बचाना है और उर्वरक भी बचाना है
2: जी।
3: तो ऐसी दशा में सरकार भी काफी मदद कर रही है ड्रिप सिस्टम लगाने का, सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं, इसमें आप फर्टिलाइजर का अटैचमेंट लगा सकते हैं और जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर है जल में विलय फर्टिलाइजर हैं, उनका आप बड़ी आसानी से बड़ी सुगमता से ड्रिप सिस्टम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई कर भी रहे हैं, समझते भी हैं, और निश्चित तौर पे पानी की बचत के अलावा इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी और नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है उसमें भी आपके कमी आएगी फर्टिगेशन।
2: डॉक्टर शर्मा, जैव उर्वरकों की हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैं चाहूंगी और विस्तार से बताएं किस किस प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं उसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, राइजोबियम, एजोला जैसे कई विकल्प उनके पास है और किस तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमें
4: बताएं। जो जैव उर्वरक हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। जैसा कि बहुत सारी जो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो अघुलनशील अवस्था में पहुंच जाते हैं, जैसे माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या करता है, जो फॉस्फेट है उसको सोल्युबल, उसको विलेय अवस्था में पौधों को उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही एजिटोबैक्टर है, स्यूडोमोनास है, बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मृदा में उपस्थित होने के कारण जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपस्थित करा देते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, इनके उसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। ना केवल वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, वो कई बार डिजीज जो हमारी जो जड़ों में रोग लगते हैं उसको भी एक हद तक नियंत्रण करने में योगदान देते हैं। तो अभी हमारी सरकार भी और बहुत सारे शोध संस्थान इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमको जो जैव उर्वरक है अपनी खेती में उनको इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर ना रहे, उससे हम 15-20% इवन 25% तक हम रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम कर सकते हैं।
2: जी डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी, जैसे अगर फलीदार फसल किसी ने लगाई है या अनाज किसी ने लगाया है तो किस तरह के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, कुछ और विस्तार से उन्हें बताएं।
1: ये जैसे कि जो आपकी ये फलीदार फसलें हैं इनको तो वैसे आप देखिए कि इनको रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें तो अगर आप जैव उर्वरक की थोड़ी सी मात्रा भी जो सीड का ट्रीटमेंट करके राइजोबियम के साथ में सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, बीज का ट्रीटमेंट करके अगर हम इसकी बुआई कर देते हैं तो केवल 10-20 किलो का ही अगर हम उर्वरक इसमें लगाएंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक और फायदा इसका रहेगा वो ये होगा जो कि ना जब देखिए कि अगर जो जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो उन लोगों के इन जीवाणुओं में ये भी क्षमता होती है कि जो ड्राउट जो कि कह रहे हैं ना सूखा जब मॉइस्चर की कमी या नमी की कमी हमारी मृदा में रहती है तो उसको भी किस तरह से भरपाई कर सके, तो ये भी इसका जो इसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है जो पौधे में थोड़ा सा विचलित हो पड़ते हैं पौधे उसको ओवरकम करने में ये जो हमारे सूक्ष्म जो कीटाणु है ये बहुत इनका बड़ा योगदान है। तो आजकल जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जबकि आपका सूखा जो और जो बाढ़ टाइप की और ऐसे मतलब जो ज्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसे में ये मतलब रासायनिक उर्वरण के साथ ये जैव हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको जो ये वायुमंडल के कष्ट हैं इनको निवारण करने में आपकी क्षमता किसान भाइयों आपकी क्षमता में अधिक सुधार होगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, ये बताएं कि क्या फसल चक्र में भी किसी तरह का बदलाव करके किसान अत्यधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच सकते हैं?
3: फसल चक्रों का अपनाना बहुत जरूरी है और खास करके पोषक तत्व प्रबंधन में फसल चक्रों का विशेष योगदान होता है। अगर हम एक ही तरह की फसलें लगातार लेते रहते हैं, जैसे आपके अनाज वाली फसलें धान गेहूं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की एक खास परत से ही पोषक तत्व लिए जाते हैं और उस परत के अलावा नीचे जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में उनका प्रयोग नहीं हो पाता। नाइट्रोजन अपनी जगह जहां किसान भाई डालते हैं खिसक के थोड़ा नीचे चली जाती है। अगर हम फसल चक्र में अलग अलग गहराई की जो जड़ें हैं जिनकी अलग अलग गहराई होती है जड़ों की, उस तरह की फसलों का चक्रण करें तो पोषक तत्वों का सही इस्तेमाल होता है। दूसरे जो हमारे फसल चक्र हैं इनमें हमें दलहनी फसलों का समावेश करना बहुत जरूरी है। तो दलहनी फसलों के समावेश करने से आपकी जो यूरिया की जरूरत है और जो नाइट्रोजन की जरूरत है उसमें निश्चित तौर पर कमी लाई जा सकती है। जैसे धान से पहले धान काट बोने के पहले अगर आप उसमें दलहनी फसल ले लेते हैं गर्मियों में, जैसे मूंग की फसल है या हरी खाद ले लेते हैं, तो फिर धान में आपको लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, यानी आपको लगभग आधी नाइट्रोजन आपकी पहले से ही बचत हो जाती है। तो फसल चक्रों का विशेष महत्व है आपके नाइट्रोजन बचाने में और इसकी उपयोग क्षमता बढ़ाने में भी बहुत योगदान है।
1: बिल्कुल, जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आप दलहनीय फसलें लीजिए, तो जैसे कि आप धान से पहले दलहनीय फसल ले रहे हैं, तो ये पाया गया है कि उसका जो आपको मतलब उसका नाइट्रोजन का प्रभाव धान में तो मिलेगा मिलेगा, उसके बाद अब जब गेहूं की फसल लेंगे तो तब भी आपको, जैसे कि इन्होंने बताया ना कि रासायनिक उर्वरक तो लगाते ही एकदम थोड़े से अगर सिंचाई कर दी या तापमान बढ़ गया तो या तो वो हवा में चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन ये जो हरी खाद है या दलहनी फसलें हैं ये धीरे धीरे हमारे मृदा में मिनरलाइज होंगी, इनका नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों को धीरे धीरे मिलता है और लगातार मिलता रहता है और लंबे समय तक मिलता है, तो अगली फसल में भी आप देखेंगे इसका आपको अनुकूल प्रभाव इसका दिखाई देगा।
2: बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, इन बातों में अगर आप भी को जोड़ना चाहे, साथ ही सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है इसे कम करने की दिशा में सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास हो रहे हैं।
4: देखिए, जैसा बताया कि अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं या दलहनी फसल लगाते हैं तो दिनेश जी ने बताया कि लगभग 60 किलो हम यूरिया की बचत कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर।
2: जी,
4: तो 60 किलो यूरिया का मतलब है कि हम कितनी पर्यावरणीय क्षति को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो रासायनिक उर्वरक बनाने में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हम एक तरह से पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, जो पारिस्थितिक सेवा है जिसको हम इको सिस्टम सर्विसेज कहते हैं वो हम कर रहे हैं अगर हम हरी खाद और दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलों का मुख्य कार्य है, मतलब एक यह है कि वो पर्यावरण की अमूर्त रूप से सेवा कर रहे हैं अगर हम देखें तो इसी तरह से अगर हम भारत सरकार की नीतियों की बात करें तो सबसे बड़ी नीति है सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि हम लोग अपने शरीर की जांच कराते हैं, हमको पता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारे कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, तो ये सब चीज ध्यान में रखकर हमको अपनी धरती माता की भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन है, जिंक है, उन सबका अगर हमको ज्ञान रहेगा तो हम उनको समुचित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि हमारी जो मृदा है उसमें ऑलरेडी 200 किलो नाइट्रोजन है या इसमें इतना ऑलरेडी फास्फोरस है, इतना पोटेशियम है, इतने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो हम ना केवल अपनी जो हमारी लागत है उसको कम कर पाएंगे बल्कि हम प्रदूषण को भी काफी हद तक हल कर सकते हैं। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो सभी किसानों को मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपको पता होना चाहिए। और दूसरी स्कीम यह है कि किस तरह से नीम लेपित यूरिया की हम बात कर रहे हैं, नीम लेपित यूरिया के माध्यम से हम जो नाइट्रिफिकेशन लॉसेज है, जो हमारे जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और जो उसकी जो हम नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत सरकार के दो महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमको अपनी यूरिया की खपत को 2022 तक कम करना है। और दूसरी चुनौती ये है कि अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपनी खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखना है और अपनी यूरिया की मात्रा को आधा करना है।
2: जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है और जो जैविक खेती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी भूमिका और इसमें काफी फायदा होता है। डॉक्टर दिनेश जानना

0: जानेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती है वो किस तरह से जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसके सुधार में एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करती है और किसान का हम देख रहे हैं कि आजकल रुझान भी बहुत ज्यादा इस ओर बढ़ने भी लगा है।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि बात हुई अभी कि भारत सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, तो पहला जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड करना है, दूसरा यूरिया आ गया नीम लेपित यूरिया, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हम यूरिया का प्रयोग बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जैविक खेती के माध्यम से, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैविक खेती अपनाने पर हमें रासायनिक उर्वरकों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा, ना उसमें नाइट्रेट पोल्यूशन की समस्या आएगी, ना उसमें हमारे पेस्टिसाइड आएंगे, तो काफी हद तक जैविक खेती सभी तरीके के जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है उनमें कमी ला सकती है और विशेषकर जो मृदा का स्वास्थ्य है उसमें तो ये बहुत बढ़ोतरी लाती है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें हम जैविक शोर डालते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब डालते हैं, लेकिन साथ साथ आजकल हम फसल अवशेष भी डालते हैं अपने जैविक खेती में जिनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
2: जी। किसान साथियों, इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM। हम लगातार नाइट्रोजन के लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हमें और कितना प्रयोग करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप एक्सपर्ट की मदद से, एक्सपर्ट की राय से हम इन महत्वपूर्ण जानकारियों को ले रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे गेहूं की कटाई हो जाती है उसके बाद जो उसका जो अवशेष बच जाता है, साथ ही हम धान की भी कटाई करते हैं उसका भी अवशेष बच जाता है, तो अधिकतर किसान क्या करते हैं उसे जला देते हैं, तो क्या यह हमारे लिए उचित है, हमारे खेतों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए क्या यह उचित है, आइए जानते हैं और यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: उसे जला देते हैं और वहां पर जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ाने में बल्कि और ज्यादा ये काम आता है, लेकिन इसका आप बता रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर भाटिया यहां पर हमें और विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये जो फसल अवशेष है इसका हम बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको उससे प्रदूषण न करके बल्कि मिट्टी की सेहत को ही और बेहतर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी ने सही बोला कि ये जो फसल अवशेष है, ये देखिए फसल अवशेषों में आपका नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो ना हमारा कुछ तो हमारे जो उसमें चला जाता है, जो हम काट लेते हैं जो हिस्सा बचता है उसके अंदर आपको नीचे का हिस्सा तो मिल जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा जो हम काट लेते हैं और उसको जला लेते हैं जिसको कि आपने पराली कहा, तो मैं किसान भाइयों से गुजारिश है कि पराली बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण तो हो ही रहा है बहुत हद तक, लेकिन आप अपना जो कीमती जो है पैसा उसको मतलब बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन या तो आप इसका कंपोस्ट बना लें और आप अपने खेतों में लगाएं, अगर कंपोस्ट नहीं भी बना सकते तो आप इसको बिना जुताई की खेती करिए और इसको आप जो पराली है अपने ही खेतों में छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपका ये जैसे जैसे ये मृदा में मिलता जाएगा तो आपका नाइट्रोजन जो है वो आपके पौधों को मिलता जाएगा, तो आप बहुत हद तक 25-30% तक अपना नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं अगर आप ये पराली को अपने खेतों में छोड़ के ही जो आप जैसे सीधी बिजाई कीजिए और या फिर आप जो जीरो टिल जो हैप्पी सीडर वगैरह से आप अपनी जो जो बिजाई करेंगे तो उसमें ये एक चीज और है कि खाली प्रदूषण ही नहीं कम होगा, आप अगर फसल अवशेष आपके उस पे मृदा पे है तो आपको एक सिंचाई में भी कई बार ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है फसल अवशेषों की वजह से एक नमी बनी रहती है तो आपके मिट्टी में वो नमी रहती है तो आप अपनी सिंचाई भी बचा सकते हैं, तो दोनों तरफ से ये फायदेमंद है, तो इससे आपका नाइट्रोजन का उर्वरक की जो उपयोगिता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल, इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी और नाइट्रोजन प्रदूषण के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है और भारत में भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं जिनके बारे में।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नाइट्रोजन दोस्त भी दुश्मन भी, और इस विषय पर चर्चा हमने की है कि किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं कई प्रकार के, और कैसे इस नुकसान को कम करने के लिए खेती के तौर तरीकों में किसानों को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो कई तरह के नुकसानों की चर्चा हुई है। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैव विविधता का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है, क्या जो नाइट्रोजन दूषण है इसकी भी भागीदारी है जैव विविधता के खतरे को लेकर, और ऐसे में इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: जी, जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखें, हम हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं
5: जी।
4: तो इस बार जो जैव विविधता का जो ध्येय वाक्य था, उसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में है
5: जी।
4: जो इस बार 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका भी जो ध्येय वाक्य था सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जैव विविधता के ऊपर भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है। तो अगर हम देखें, अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाती है पर्यावरण में, तो उससे जैव विविधता पर क्या फर्क पड़ता है? तो दूसरी एक सबसे बड़ा होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे संवेदी वनस्पतियां होती हैं, संवेदी जीव जंतु होते हैं जो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को सहन नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी आबादी, उनकी संख्या कम होती जाती है। एक शोध के मुताबिक देखा गया कैलिफोर्निया में कि जब नाइट्रोजन का स्तर बढ़ा तो वहां पे जो प्राकृतिक वनस्पतियां 70% तक कम हो गई। वहीं ये तो बात हुई। दूसरी बात होती है, अगर नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यानी कि सुपोषण जिसको हम बोलते हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी कि उसकी भी जैव विविधता पर खतरा मंडराता है। और तीसरी बात यह है कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनके भी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ सकता है। तो अगर हम ज्यादा जिस तरह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तो न केवल हमारे स्थलीय जीव, जलीय जीव एवं माइक्रोब्स जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो कृषि के लिए मित्र हैं, उन पर भी खतरा मंडरा सकता है। तो जैव विविधता एक बहुत ही संवेदनशील इशू है और इस पर हमको देखना है, इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है कि नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन किस प्रकार जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है।
5: बिल्कुल, तो जैव विविधता एक संवेदनशील मुद्दा है और इसी के साथ इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से जुड़े ये तमाम पहलू, जिसमें कि जो नाइट्रोजन प्रदूषण है वो भी शामिल है। तो ऐसे में इससे जुड़ी जो चिंताएं हैं सिर्फ भारत की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंताएं की जा रही है। और खासतौर पर नाइट्रोजन प्रदूषण की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब एक जिसका नाम है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी विस्तार से हम जानें। डॉक्टर भाटिया, इसके बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में हमें बताइए।
2: दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब, ये जो है एक कार्यक्रम है जो कि यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशन जो ये इसके लिए अनुदान दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 50 जो अनुसंधान केंद्र हैं वो जुड़े हुए हैं। और आप ये देखिएगा कि इसमें से 18 अनुसंधान केंद्र भारत के हैं। तो इसमें जो है नाइट्रोजन के हर पहलू को, कृषि का पहलू है, इसके अलावा इसमें जो आपके जो वन क्षेत्र हैं उसमें किस तरह से बढ़ती नाइट्रोजन की मात्रा उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे जलीय जो कोरल रीफ्स हैं, तो हर पहलू नाइट्रोजन का, जहां जहां नाइट्रोजन प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है, ये सब इसके अंदर इस पे अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन प्रमुख जो है वो जो 8 हमारे देश हैं साउथ एशिया के, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, तो और ये सारे हमारे 8 जो दक्षिण एशियाई कंट्री जो देश हैं, इनके ऊपर ज्यादातर इनके रिसर्च की जाएगी कि किस तरह से हम अपनी कृषि को बेहतर बना सके, कम उर्वरक में ज्यादा पैदावार ले सके, तो इसके लिए कौन से तरीके, कौन से हमें जो उर्वरक अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से हमें लगाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रदूषण की मात्रा भी कम करें और पैदावार को भी बढ़ा सके। तो एक आप बोलिए एक लाभदायक कृषि, जो प्रॉफिटेबल कहते हैं ना, लाभदायक कृषि लेकिन स्वच्छ कृषि, तो ये दोनों इसके बहुत बड़े पहलू हैं दक्षिण एशिया नाइट्रोजन हब के।
5: डॉक्टर शर्मा को जोड़ना चाह रहे हैं
4: इसमें, जैसा कि भाटिया जी ने बताया कि 22 अक्टूबर को कोलंबो में एक कोलंबो घोषणा की गई, उसमें जो जैसा कि बताया साउथ एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारे देश पूरे विश्व के, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढंग से घोषणा की कि भाई हम नाइट्रोजन की खपत को खेती में किस बार कम करेंगे। और ये जो नाइट्रोजन का मुद्दा है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसपे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग SANH के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से एक नाइट्रोजन डिक्लेरेशन, एक कोलंबो डिक्लेरेशन की नाम दिया गया उसको, कि भाई सारे देश अपने स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने आप को कहेंगे कि भाई हमको इस क्षेत्र में नाइट्रोजन का ये उपयोग कम करना है।
5: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, विस्तार से हमने चर्चा की है आज की किस तरह से जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसका जो इस्तेमाल है वो नुकसान पहुंचा सकता है पर्यावरण को, और इसका किस तरह से इसे कम करने के लिए खेती के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, और इसके लिए जो प्रयास है वो केवल हमारे भारत देश में ही नहीं हो रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में आपको किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई दिख रही है और कैसे इन चुनौतियों का सामना किया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में?
6: जी बिल्कुल, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना और साथ साथ नाइट्रोजन का प्रयोग हमें कम करना है, तो इन दोनों में सामंजस्य बैठाना एक बहुत गंभीर चुनौती है कि किस हद तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को उर्वरकों द्वारा कम कर सकते हैं जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की भी मांग या खाद्य पदार्थों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और उधर हम बहुत ज्यादा मान लो उर्वरकों की कमी कर दें तो वो बहुत मुश्किल होगी उसकी प्राप्ति। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक हम नाइट्रोजन के प्रयोग को कम करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम नाइट्रोजन के उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस क्षमता के साथ करें, दक्षता के साथ करें कि प्रदूषण भी कम हो, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे और नाइट्रोजन के जो प्रदूषण है इसमें भी हमें कमी लानी है। इस दिशा में मोटे तौर पे किसान भाइयों को संतुलित उर्वरक प्रयोग करना होगा, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना होगा और सही समय पे सही मात्रा में सही दर से और सही विधि से उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें फर्टिगेशन का विशेष महत्व है, स्प्लिट एप्लीकेशन, नई नई विधियां आ रही हैं उनका प्रयोग करके, और साथ साथ आजकल कुछ किस्में भी विकसित की जा रही हैं जो कम नाइट्रोजन की दशा में अच्छी पैदावार दे सकती हैं।
0: जी हाँ किसान साथियों, हमें आवश्यकता अनुसार उसकी मात्रा में हमें अति नहीं करनी है, आवश्यकता के अनुसार ही हमें रसायनों का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी फसल मिल सकती है, साथ ही अपना पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, हमारी मृदा को बचा सकते हैं और हमारे जल स्रोतों को भी हम बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक मापदंड का इस्तेमाल करके हमारे खेतों में प्रयोग करने की। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइमटेबल 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टाइमटेबल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान साथियों, रेडियो टांडिया 90.8 FM 6 बजे की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, रेडियो टांडिया 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि हमारा जो किसान है वो कृषि में हो रहे बदलावों को समझे, साथ ही कृषि में जो नए तकनीकी है उसे जाने पहचाने और कैसे हम कम लागत में अच्छी से अच्छी फसल ले सकें, इन सब जानकारियों को आप तक पहुंचाने के इन प्रयासों में रेडियो टांडिया भील 90.8 FM हमेशा आपके लिए कार्यरत है। तो किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप भी हमारे कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप ले रहे होंगे और अपने खेतों में इसका प्रयोग कर रहे होंगे। और साथ ही किसान साथियों, आशा करते हैं कि आप जैसे कि आप आपके कॉल के माध्यम से और हमारे नैरोकास्टिंग के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और अपने जितने भी सवाल है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारे नंबर पे भी मैं कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, साथ ही जो हमारी टीम अपने आपके आपके खेतों तक आती है उन्हें भी आप ये सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही हम केवीकी के माध्यम से आपको जो भी सहायता हो सकती है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं
7: अनाजों की, और उनके जरिए कैसे जो पोषण सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकेगी। लगातार सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि कैसे हम जो पोषक अनाज यानी जो मोटे अनाज हैं इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इनकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ जो पोषण सुरक्षा है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां कई हैं, कैसे जो किसान है उनका रुझान हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं पोषक अनाजों के लिए, कैसे बेहतर भाव जो है वो एक किसानों को मिल पाएगा और कैसे ना सिर्फ हमारा जो घरेलू बाजार है बल्कि वहां से निकलकर जो हमारे पोषक अनाज हैं वो वैश्विक बाजार में अपनी एक अहम जगह बना पाएंगे, इसके लिए तमाम जो कोशिशें चल रही हैं आज उसके ऊपर खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे। और इसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अशोक दलवई जी, आप CEO हैं नारा के और इसके साथ साथ चेयरमैन हैं DAC के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अशोक दलवई। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विलास पिनौती जी, आप डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च तेलंगाना हैदराबाद से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर विलास। और साथ ही आपको बता दें इसी संस्थान से हमारे साथ जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बी दयाकर राव जी वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राव आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आपके साथ हम जो चर्चा है वो शुरू करेंगे, आइए लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
8: Our coarse grains and millets have high nutrition value. They can be called nutrition rich and climate smart crops. This will raise incomes of some of the poorest of the poor farmers.
9: आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। और इसलिए इस थाली को भी ये खाएं मतलब गरीब, उसको टैग लगा दिया, तो फिर मैं गरीब नहीं हूं ये कहने के लिए भी उसने थाली छोड़ दी। जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं।
10: लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज FAO को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है।
11: वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट आयुर्वेदा एंड आहार इन द टाइम टू कम। फूड आइटम्स रिलेटिंग टू आयुर्वेदा एंड फूड आइटम्स दैट फर्दर गुड हेल्थ। मैनी ऑफ यू वुड बी अवेयर दैट ए फ्यू डेज एगो The United Nations declared 2023 to be the International Year of Millets. Let us spread awareness on the benefits of millets.
12: साल 2023 में पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा। इसके तहत पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मोटे अनाजों के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का सकारात्मक प्रभाव भी हुआ है। जैसे 2017-18 में मिलेट्स का जो उत्पादन 164 लाख टन था वो साल 2020-21 में बढ़कर 176 लाख टन हो गया। वहीं साल 2017-18 में उत्पादकता 1163 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी जो साल 2020-21 में बढ़कर 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। हमारे देश में लगभग 140 लाख लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 125 लाख टन मिलेट्स का उत्पादन होता है। भारत का मिलेट्स उत्पादन एशिया का 80 और वैश्विक उत्पादन का 20% है। पोषक अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं, जिनकी खेती 131 देशों में की जाती है। इन पोषक अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट शामिल है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। बात अगर पोषण की करें तो बदलती जीवन शैली के कारण मोटापा, डायबिटीज जैसे रोग तेजी से पांव पसार रहे हैं। इन पर काबू पाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज वाली फसलें काफी अहम साबित होती है। महिलाओं में अक्सर आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की कमी पाई जाती है। ऐसे में महिलाओं में इन कमियों को दूर करने के लिए मोटा अनाज एक सस्ता और अच्छा साधन है। इसके अलावा मोटे अनाजों में जिंक, विटामिन ए, डी, ई और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं। हाल ही में प्रकाशित स्मार्ट फूड स्टडी बताती है कि मोटे अनाजों से भरपूर भोजन बच्चों के विकास में 50% तक का इजाफा कर सकता है।
7: तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से लगातार जो पोषक अनाज है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और इसके परिणाम भी अब हमारे सामने आने लगे हैं कि जो किसान है उनका रुझान बढ़ रहा है मोटे अनाज यानी पोषक अनाज की खेती के लिए। आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर अशोक दलवाई जी का। डॉक्टर अशोक, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से लगातार जो सरकार की कोशिश भी रही है और कहीं ना कहीं जो पोषक अनाज का महत्व है या मोटे अनाज का महत्व है वो अब किसान जो है कहीं ना कहीं समझने लगा है।
13: धन्यवाद। पहली बात ये बहुत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसको पोषक अनाज कहा
7: जी।
13: पहले हम इसको कोर्स ग्रेन कहते थे, मोटे अनाज कहते थे
7: जी।
13: जब से सरकार ने ये तय की कि हमारे देश में क्लाइमेट चेंज के कारण से, रेनफेड एरियाज के कारण से और हमारे जो कंज्यूमर्स
7: जी
13: है ना, उनके हित दृष्टि से ये एक जो न्यूट्री सीरियल्स जो इंग्लिश में कहते हैं
7: जी,
13: इनको हम प्रमोट करना शुरू करें। ये देखा गया कि पिछले 40 साल में हमारे जो क्षेत्र फल था ये पोषक अनाज में बहुत घट गया है
7: जी।
13: लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर था 1983 में
7: जी,
13: वो घटकर अब 16-17 मिलियन हेक्टेयर को आकर पहुंच गया।
7: एक बड़ी कमी जो है वो दिखाई देती है इसमें।
13: यस, उसके साथ जो हमारा प्रोडक्शन जो था वो जितना था लगभग उतना ही रहा। अब वो 18 मिलियन टन हम उत्पादन कर दें देश में
7: जी,
13: क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ा इसलिए हमारा प्रोडक्शन जितना था उतना ही रह गया है
7: जी।
13: ये क्यों हुआ? ये मूलभूत कारण था कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टेक्नोलॉजी में बहुत कम पैदावार पर हमारा ये जो लक्ष्य रहा जैसे वीट या पैडी
7: जी,
13: और जैसे इरिगेशन एरिया बढ़ता गया जो मिलेट्स में था वो पैडी वीट के लिए, शुगर के लिए, कॉटन के लिए डाइवर्ट होता गया
7: जी।
13: मगर हमारे देश में दो बहुत मुख्य कारण है ये जो पोषक अनाज को प्रमोट करने के लिए
7: जी।
13: एक है कि हमारे देश में बहुत उत्पादन के बाद भी बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है आज
7: जी, पोषण सुरक्षा तो नहीं।
13: हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ जिससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग अंडर नरिश्ड है, मैल नरिश्ड है
7: जी,
13: वेस्टेड ग्रोथ है बच्चों में, स्टंटेड ग्रोथ है
7: जी।
13: इसके साथ हमारा महिलाएं जो है उनमें आयरन डिफिशियंसी है,
7: यानी कहीं ना कहीं डॉक्टर दलवाई एक आवश्यकता महसूस की गई कि जो खाद्य सुरक्षा है, जैसे हमने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है उसी तरीके से पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी और पोषक अनाज के तहत वो और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। डॉक्टर राव आपका रुख कर लेते हैं, यहाँ आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अगर हमें पैदावार की अगर हम लगातार बात करते हैं, रकबे की हम लगातार बात करते हैं तो किसान का रुझान तभी बढ़ेगा जब अच्छा उत्पादन वो ले सकेगा। इसके लिए संस्थान की तरफ से किस तरह के जो कदम है वो उठाए गए हैं?
14: जो पोषक अनाज की बात जो चल रही है
7: जी,
14: तो इसमें सप्लाई का इशू कम है, डिमांड का इशू ज्यादा है, खाने वाले कम हो गए इसलिए उसका पैदावार भी कम हो गया
7: जी।
14: तो अभी सरकार इस दृष्टि में, अभी डॉक्टर दलवाई साहब ने बताया कि अभी इसका यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यही होगा कि न्यूट्रिशन होता है सबसे पहले, तो ये डिमांड साइड की अभी जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वैल्यू एडिशन के द्वारा, वैल्यू चेन डेवलपमेंट करके इनका जो कंजम्पशन जो घट गया फिर दोबारा वापस कैसे लेके आओ, तो ये प्रोसेसिंग और न्यूट्रिशन को जुड़ाकर एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग और न्यूट्रिशन, ये तीन डिसिप्लिन और इसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी जब फार्मर के कंज्यूमर के फार्मर और कंज्यूमर का जो गठबंधन करते हैं तब तो उनका आमदनी बढ़ जाए
7: जी।
14: ताकि फार्म गेट वैल्यू एडिशन जो करते हैं, जैसे अभी अनाज वो जो भेजेंगे उसके अंतर्गत अगर वैल्यू एडिशन किए तो उनको कम से कम दो गुना या समटाइम्स मोर देन टू टाइम्स का इनकम बढ़ सकता है, क्योंकि फार्म लेवल पे कुछ ये कैसे है, इसमें दो तरह के हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स खास करके तो प्राइमरी प्रोसेसिंग की बहुत ही जरूरत है, उसके ऊपर का छिलका निकालना पड़ता है, तो ऐसी चीज क्लीनिंग ग्रेडिंग वो सारे अगर फार्म गेट लेवल पे करके प्राइमरी प्रोसेसिंग ग्रेन लाए उसका उसका मूल्य बढ़ जाएगा, ताकि वैल्यू एडिशन के द्वारा फार्मर को और भी लाभ मिल जाएगा। तो ये इसका ज्यादा एम्फोसिस देने की बहुत जरूरत है, गवर्नमेंट इसी दिशा में आगे चल रहे हैं
7: जी। बिल्कुल, लगातार सरकार जो इसी दिशा में काम कर रही है और पूरा साथ जो है वो किसानों का भी मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर हम वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन इन जो हमारे पोषक अनाज है इसमें करते हैं तो और ज्यादा हमें लाभ मिल सकता है। डॉक्टर दलवाई आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अब जो किसान है ना सिर्फ इन मोटे अनाज यानी पोषक अनाज की पैदावार के लिए भी कोशिश कर रहा है बल्कि प्रसंस्करण के जरिए उसका मुनाफा जो है बढ़ सकता है और ये अब एक किसान जो है वो बेहतर तरीके से जानता है।
13: मैं सहमत हूँ, जैसे डॉक्टर दयाकर राव बोल रहे थे
7: जी,
13: हमको पहले डिमांड को क्रिएट करना चाहिए। डिमांड क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। हम उपभोक्ताओं को ये न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे वो ये पोषक अनाज से मिल सकता है उनको
7: जी,
13: और आसान से एक्सेसिबिलिटी में उनको देना पड़ेगा। इसके साथ जैसे हम डिमांड क्रिएट करते जाएंगे उसके साथ सप्लाई पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई की ओर अगर हमारा एक ही समय का लक्ष्य रहेगा तो हम जो चाहते हैं कि इसके पोषक अनाज के लिए एरिया बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े
7: जी,
13: और साथ साथ देश भर अवेलेबिलिटी हो, तब ही जो हम चाहते हैं ये जो पोषक अनाज का भूमिका बढ़ाने के लिए देश में वो हो पाएगा
7: जी।
13: ये डिमांड साइड जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल पूरा देश में हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में
7: जी,
13: हम ज्यादातर गेहूं या राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
7: जी,
13: मगर मिलेट डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर नहीं है, जहां होता है बहुत कम स्तर पर हो रहा है। तो हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम PDS के माध्यम से जहां लोग ये जो मिलेट्स खाना चाहेंगे उनको मिलेट्स को अवेलेबल करें
7: जी।
13: तो इसलिए तो हर राज्य को लिखा गया है,
7: यानी मिलेट्स में भी हम आत्मनिर्भर हो सके तो, इस तरह के प्रयास हमें करने होंगे।
13: आज कुछ कुछ हो रहा है कुछ राज्यों में, जैसे उड़ीसा कर्नाटक में कुछ स्तर पर हो रहा है
7: जी,
13: मगर हम चाहेंगे कि ये हम ऑप्शन दे हमारे उपभोक्ताओं को, अगर वो मिलेट्स खाना चाहेंगे तो वो PDS में उपलब्ध होनी चाहिए, अगर वो गेहूं चाहेंगे तो गेहूं खा सकते हैं। मगर इतना PDS में चैनलाइज करने के लिए हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा
7: जी।
13: मैंने कह रहा था कि हमारा खाली 18 मिलियन टन मात्र मिलेट्स हो रहा है
7: जी,
13: कैसे इसको बढ़ा सकते हैं? तो इसलिए किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो नया टेक्नोलॉजी चाहिए या जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की आवश्यकता है
7: जी,
13: ये सब उपलब्ध करना पड़ेगा उनको, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है
7: जी,
13: तो ये मिलेट्स जो है या पोषक अनाज जो है ये सब ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है, ये तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स है
7: जी।
13: तो क्योंकि एक तरफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हमारे देश में है
7: जी, बिल्कुल।
13: तो हम ये दोनों चैलेंजेस है इनको मिला के एक रिकंसाइल करके किसानों को और उपभोक्ताओं को एक नया ऑप्शन हम दे सकते हैं
7: जी, एक तो नया विकल्प जो है यानी वो उपभोक्ताओं को मिल सकता है। डॉक्टर राव क्या कहना चाहेंगे?

0: ये जो ग्रो करते हैं ड्राईलैंड रीजन्स वेयर वाटर और ये लैंड का कमजोरी है, पॉवर
1: जी
0: लैंड्स पे ग्रो करते हैं, उसको अच्छे लैंड्स में आने के लिए उसमें उनको ये प्रॉफिट्स दिखाना है। सो प्रॉफिट्स दिखाना है। और दूसरी चीज एक होती है कि हमें कोई इंसेंटिवाइजेशन कर सकते हैं इसको क्रॉप का एरिया बढ़ाने के लिए। तो
1: जी
0: ये हम लगभग देखते हैं सारे क्रॉप्स का, जो अदर क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स को, वो एक टाइम था दूसरे टाइम को, तो कभी ना कभी उसको दे हैव अवेल्ड दिस इंसेंटिवाइजेशन। ऐसी इंसेंटिवाइजेशन अभी ये पॉवर ड्राई लैंड फार्मर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी राइस व्हीट इन सब लोगों को मिल गया, इरिगेशन सब्सिडी हो या कोई इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो, ये तो ये क्रॉप्स को इरिगेशन ना ही है ना ही पावर का सब्सिडी है।
1: जी
0: सो फर्टिलाइजर और केमिकल्स बहुत कम यूज करता। इस सिलसिले में अगर कुछ लोगों को अभी आजकल क्या होता है, ये इनका जो कृषक लोग है यही करते हैं, वो सीड बोत देते हैं फिर बाद में जाके हार्वेस्ट करने शुरू करते हैं। इसका
1: जी
0: क्रॉप मैनेजमेंट के लिए जो जरूरी है, जो मिनिमम फर्टिलाइजर हो नेचुरल फार्मिंग के अंदर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो या अदर मिनिमम रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर जो करे, तो उसका उत्पादन बढ़ सकता है और एक इरिगेशन देने से डबल होता है यील्ड। तो ये चीज हम देखना है और बेटर एनवायरनमेंट्स में लेके जाने में हमें अगर सफल हो, जैसे अभी आंध्र प्रदेश में सेकंड क्रॉप पैडी के बाद सेकंड क्रॉप इन कोस्टल एरिया में ले रहे हैं,
1: जी
0: तो न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करते हुए आगे गए तो एरिया बढ़ सकती है और इसका प्रोडक्शन इंसेंटिव्स भी बढ़ सकते हैं। दूसरी ये और एक मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये फार्म गेट वैल्यू एडिशन का बहुत महत्वपूर्ण है,
1: जी
0: तो अगर हम ये मशीनरी जो सप्लाई करते हैं खास करके माइनर मिलेट्स को, और इसका प्रोसेसिंग का जब आप करेंगे एट फार्म गेट लेवल पे कुछ सब्सिडाइज्ड थोड़ा छोटा क्लस्टर सब, इफ वी कैन मेक देम अवेलेबल टू द फार्मर्स,
1: जी
0: उससे काफी काफी तक। नहीं तो क्या होता है, अभी ब्राउन टॉप मिलेट है वो नया मिलेट है अभी ग्रो करने लग गए हैं, तो दे उनका उत्पादन बहुत बढ़ गया, मगर उसको ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए, उसके प्रशंसक करने के लिए, प्राइमरी प्रोसेसिंग करने के लिए मशीन नहीं है,
1: जी
0: तो उसका बेचने के लिए उन लोग थर्ड पता, दे आर जस्ट गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड दे कुड नॉट सेल देयर प्रोड्यूस। तो ऐसी चीज से नौबत नहीं आना चाहिए। साइमल्टेनियसली जैसे हमारा डॉक्टर अशोक दलवाई जी ने बता रहा था, साइमल्टेनियसली क्रॉप प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन, ये सारे वी नीड टू गो साइड साइड बाय साइड। ये जैसा है ना अंडा और मुर्गी का कहानी जैसा है, तो
1: जी
0: कौन सा पहले, तो साथ साथ चलना है,
1: बिल्कुल,
0: चलते
1: ये एक
0: हुए
1: साथ हमें लेके चलना होगा। ये जो
0: आगे।
1: स्थिति हमारे सामने रहती है और किसान के सामने भी कुछ ऐसी स्थितियां रहती हैं, डॉक्टर दलवाई, अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक रुझान जो है हमारा हरित क्रांति के बाद या तो गेहूं की तरफ हुआ या धान की तरफ हुआ, लेकिन आज के समय में आवश्यकता है जो विविधीकरण है उसको अपनाया जाए और उसमें पोषक अनाजों को किसान जो है शामिल करें।
0: यस, आप ठीक कह रहे हैं।
1: जी
0: हम तो चाहेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि क्रॉप सेक्टर में अलग अलग प्रकार के पैदावार करें, साथ में लाइफ स्टॉक, फिशरी, पोल्ट्री, ऐसे सब एक्टिविटीज को भी हम बढ़ाएं,
1: जी
0: तभी हमारा जो रिस्क है एग्रीकल्चर सेक्टर में, रिस्क का प्रभाव जो होता है किसानों की आमदनी पर वो कम होता जाएगा। और इरिगेशन जो है उसके लिए एक सीमित सीमित एक एरिया है, कैपेसिटी हमारे देश में,
1: जी
0: क्योंकि हमारे देश में इतना पानी नहीं है जितना हम चाहेंगे पूरे 140 मिलियन हेक्टेयर को पानी देने के लिए, व्यवस्था करने के लिए।
1: जी
0: इसलिए हमको जो ड्राई लैंड है, रेनफेड है, डेजर्ट एरिया, एरिड सेमी एरिड एरिया है, जहां पानी पहुंचने का संभावना नहीं है,
1: जी
0: हमको तो रेनफेड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो
1: जी
0: रेनफेड टेक्नोलॉजी में लो वाटर ड्यूटी क्रॉप, जैसे ही हमारा पोषक अनाज है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, इनको और ज्यादा महत्व देना
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा,
1: डॉक्टर दलवाई, और
0: इससे
1: आपने तो
0: किसानों को
1: खास तौर
0: फायदा
1: से जो
0: होगा।
1: हमारे ड्राई लैंड हैं या रेनफेड एरियाज हैं यहाँ पर हमने देखा है पिछले अगर कई सालों की भी हम बात करते हैं तो लगातार आप किसानों को जागरूक करते आए हैं, उसके परिणाम हम मान सकते हैं कि अब सामने आने लगे हैं, जो किसान है वो अब उनका रुझान जो है इन दूसरी फसलों पर भी नजर आता है।
0: अगर हम नया टेक्नोलॉजी देंगे, टेक्नोलॉजी में क्या है, सीड्स उदाहरण, उसके साथ प्रोक्योरमेंट होगा या मार्केट एफिशिएंसी को हम बढ़ाएंगे,
2: निश्चित तौर पर

0: किसान का रिस्पांस रहेगा।
1: जी
0: अब मिलेट्स में भी यही करना पड़ेगा। मिलेट्स में थोड़ा ज्यादा चैलेंजेस है। चैलेंज यही है कि हमको जितने नए वैरायटी चाहिए वो अभी तक हमको जितने स्तर पर चाहिए उतना नहीं है। तो
1: जी
0: हमको यही करना है कि जितना ब्रीडिंग प्रोग्राम हुआ है आज तक मिलेट्स में, उस वैरायटीज को स्क्रीन करके, जहां अच्छा वैरायटीज है उस वैरायटीज को सीड प्रोडक्शन करके हमें किसानों तक तो पहुंचाना पड़ेगा।
1: जी
0: यही देखा गया है कि जो हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं केवी के माध्यम से, वहां जितना प्रोडक्टिविटी हम देख पाते हैं उतना मेरे किसानों के खेत पर हम नहीं देख पा रहे हैं।
1: जी
0: लगभग 40% कम होता है। ये 40% क्यों कम हो रहा है? यही कारण है कि जो किसान उगाते हैं वो मोर और लेस डेजर्ट बंजर भूमि रहता है, या लो एंडोर क्रॉप्स सॉइल्स रहता है,
1: जी
0: पानी ठीक नहीं दे पाते हैं या फर्टिलाइजर नहीं देते हैं।
1: जी
0: तो हमको ये नया वैरायटीज के साथ ये जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है इसके बारे में भी किसानों को अवगत करने का आवश्यकता है,
1: जी
0: तभी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा।
1: जी
0: और साथ साथ मिलेट्स में ये जो चैलेंज डॉक्टर दयाकर राव बोल रहे थे, हार्वेस्टिंग के बाद वो सीधा तो खा नहीं पाते हैं
1: बिल्कुल
0: उपभोग, इसके लिए डी हलिंग करना पड़ेगा, प्राइमरी प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। हमारे देश में आज तक जितने प्रकार के मशीनरी चाहिए इसके लिए अभी वो लोगों के पास नहीं, किसानों के पास नहीं है।
1: जी
0: ये नहीं कि अगर वो उनका सोरगम है उसके साथ बाजरा है, अलग अलग प्रकार के मशीन को तो खरीद नहीं पाएंगे।
1: जी
0: हमको ऐसे मशीनरी को डिजाइन करना पड़ेगा जैसे एक ही मशीनरी में हर प्रकार के कमोडिटीज को वो प्रोसेस कर पाएंगे।
1: यानी तकनीकी रूप
0: तो
1: से भी हमें
0: ऐसे
1: सक्षम
0: बहुत
1: होना
0: सारे
1: होगा
0: छोटे छोटे
1: और
0: चीज है।
1: इसका फायदा जो है तभी हमारे ज्यादा किसानों को मिल भी सकेगा। डॉक्टर राव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, तकनीकी रूप से हमें आवश्यकता है सक्षम होने की, जिसका जिक्र यहाँ अभी डॉक्टर दलवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं नई किस्मों की, जिनके जरिए जो उपज है वो ज्यादा मिल सके, इस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है?
2: आई थिंक अभी जो दलवाई साहब ने बता रहा है कि वन मशीन जिससे हम पूरे सारे मिलेट्स का प्रोसेसिंग कर पाए,
1: जी
2: डीहलिंग कर पाए, तो उससे बट ये जियोग्राफिकल लोकेशंस ऐसा है, अभी कई बार अभी मध्य प्रदेश देखो कोड़ो कुटकी चलता है,
1: जी
2: और ये महाराष्ट्र गए तो कुछ और मिलेगा, आंध्रा गए तो फॉक्सटेल मिलेगा।
1: जी
2: तो हम ये देखना चाहते हैं कि कम किस्म के और अफोर्डेबल मशीनरी की बहुत जरूरत है। अभी फिलहाल जो हो रहे हैं वो जो मशीन हो रहे हैं डीहलिंग का मशीन का, उसका अभी देखो लिटिल मिलेट कहते हैं जो उसका एक लेयर रहता है ऊपर, और कोडो मिलेट रहता है 7 लेयर रहता है।
1: जी
2: ये जान दाने बहुत छोटे है मगर इसका इतना अंतर है, एक ही मशीन में दो लाना थोड़ा चैलेंजिंग है। और
1: जी
2: इसके दिशा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कई और इंस्टीट्यूट के साथ कुछ काम चल रहा है। अभी 70% तक एफिशिएंसी बढ़ गया
1: जी
2: और हम सोचते हैं आने वाले दिन में इसका आगे भी बढ़ सकता है।
1: चलिए बिल्कुल, हम
2: अगर
1: भी यही उम्मीद
2: इसके
1: करते हैं
2: लिए
1: कि आने वाले समय में और ज्यादा जो उत्पादन है, जो उपज है, वो हमारे पोषक अनाजों की बढ़ सकेगी, और जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो पहले थाली से जो हमें पोषक अनाज जिसमें नजर आते थे वो गायब हो चुके थे, जिस तरीके से जो हमारी दलहनी फसलें उसमें अब शामिल होने लगी हैं, ऐसे ही जो हमारे पोषक अनाज हैं वो भी उसमें शामिल हों, तो इसके साथ साथ यानी हम कह सकते हैं पोषक अनाजों से जो पोषण सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सकेगी।
3: चर्चाओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्या भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्या भील 90.8 FM के साथ छाबा की आवाज।
4: आप सुन रहे हैं छाबा का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को, डालते हैं नजर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर।
1: कना से पोषण सुरक्षा की, और ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने जाना किस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है और किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो पोषक अनाज यानी जो मोटे अनाज हैं उसकी तरफ उनका रुझान कैसे हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं इसकी जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर विलास से भी। डॉक्टर विलास, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से संस्थान ने अलग अलग जो किस्में हैं वो लगातार किसानों के बीच तक पहुंचाई हैं और एक मिशन मोड में हम मान सकते हैं कि अब जो काम है वो किया जा रहा है पोषक अनाज यानी हमारे मिलेट्स जो है, मोटा अनाज जो है, उनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए।
2: ये बिल्कुल सरकार के तरफ से और हमारे संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट्स रिसर्च के तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं वो पांच सूत्रों के आधार पर हो रही है
1: जी।
2: एक जो है किसान को अच्छे बीज की व्यवस्था हो, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का बढ़ावा हो
1: जी,
2: और के अलावा न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड वेलनेस अवेयरनेस की एक प्रोग्राम बढ़ाने दो, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और आल्सो इंटरनेशनल आउटरीच पे और पॉलिसी इंटरवेंशन पे काम हो रही है
1: जी।
2: तो पोषक अनाज जो 5000 साल पहले डोमेस्टिकेट हुए, कृषि मूलम इदम धान्यम बताते हैं, कृषि के मूल थे धान्य
1: जी।
2: अभी इसको फिर बढ़ावा देने के लिए, क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो को बढ़ाने के लिए तो सरकार ने इसका प्रयास कर रहे हैं। न्यूट्री सीरियल और पोषक अनाज का दर्जा इनको दिया गया है
1: जी।
2: और मिशन मिलेट्स जो हम कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत इसको बढ़ावा देते हुए सबको पोषण सुरक्षा का जो अभियान चलाए हैं मिलेट के द्वारा दिलाने की।

0: हम ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं सर।
1: कि ना डॉक्टर विलास, इसके लिए जब हम बात करते हैं प्रसंस्करण क्षेत्र में हमें जाना होगा, प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, क्या इसके लिए संस्थान की तरफ से भी किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो आयोजित की जाती है?
0: जी, हम साल में करीब करीब 100 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग विषयों पर।
1: जी,
0: ये प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे किया जाए फार्मर्स को होता है। दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के ऊपर जो प्रोसेसर्स है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या फार्मर्स के एफपीओ ग्रुप्स भी एज ए इंक्यूबेशन सेंटर पे हम लेते हैं। इन सबको अलग अलग पहलुओं पर हम ट्रेनिंग देते हैं। और दो चीजें हमारे पास आरकेबीवाई रफ्तार के अंडर दो प्रोग्राम चलते हैं, एक एनग्रेन प्रोग्राम है और इसके अंदर जो इनिशियल्स एंटरप्रेन्योर्स जो अपना कुछ करना चाहते हैं वैल्यू एडिशन और कोशिश करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप मेरिट्स के ऊपर, उनको 5 लाख की सहायता धन राशि मिलती है और ये ऑल इंडिया कंपटीशन बेसिस पे सिलेक्शन होता है। दूसरी चीज 25 लाख का सहायता धन राशि मिलती है जो ऑलरेडी ये बिजनेस में है, जो स्टार्टअप्स के रूप में उभर के आते हैं उनको हम इंक्यूबेट करते हुए 25 लाख की सहायता धन सपोर्ट ये आरकेबीवाई रफ्तार के प्रोग्राम के अंदर मिलता है। और अभी हम इसके वजह से करीब करीब 1 लाख लोगों को ट्रेन किया है और 500 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेन किया है, 400 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स उभर के आए हैं, 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स है, तो करीब इसका इकोसिस्टम 3,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बनाते हुए अभी हम अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में पहुंचाए हैं। करीब 400 ब्रांड अभी मार्केट में उपलब्ध है सर।
1: जी डॉक्टर विलास, यानी हम मान सकते हैं जो हमारे पोषक अनाज हैं, पोषण सुरक्षा तो दे ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा भी हम मान सकते हैं, जिस तरीके से आप बताने के किस स्तर पर लगातार जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण जो है वो लगातार दिया जा रहा है अगर इसको देखा जाए तो।
0: जी बिल्कुल, अभी हमारी कोशिश यही होगी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अभी देखिए सरकार के पॉलिसीज को जब हम एनालाइज करेंगे, पिछले 20 साल में कोई भी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की तरफ पॉलिसी नहीं थी। जब लास्ट 10 साल में हम देखा जाए तो हम पल्सेस के ऊपर पॉलिसी बनाए, पल्स रेवोल्यूशन हो गया, अभी ऑयल सीड मिशन चल रहा है जो हमारे सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑयल की इंडिया में होना है, इंपोर्ट को कम करना है, वैसे ही ये मिलेट मिशन के अंदर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में कैसे मुनाफा फार्मर्स का बढ़ाया जाए इसी की कोशिश हो रही है। जब एरिया एक्सपेंशन होगा डिमांड ड्रिवन पॉलिसीज की तरफ से, जैसे कि अवेयरनेस बढ़ रही है, डिमांड मिलेट्स के ऊपर बढ़ रहा है क्योंकि मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसका एक अभिप्राय लोगों में आ गया है। अभी इसके तहत जब डिमांड ड्रिवन पॉलिसीज गवर्नमेंट सपोर्ट में आ रहे हैं, इंसेंटिवाइजिंग कल्टिवेशन, फार्म गेट प्रोसेसिंग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की वजह से, प्रोसेसिंग की सपोर्ट जो मिल रही है
1: जी।
0: और अलग अलग जो स्कीम्स आ रहे हैं तो इसके वजह से फार्मर्स में मिलेट कल्टीवेशन की इंटरेस्ट आ रही है और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जब बढ़ रहे हैं वो अपना ब्रांडिंग करके लोकल, रीजनल और नेशनल स्तर पर भी अपने ब्रांड्स मार्केट्स में और एंटायर वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करते हुए हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ ये काम करते हुए हम फार्मर को मार्केट के साथ लिंक करने की एक प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में हम यशस्वी भी हो रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, लगातार जो प्रयास है देखिए वो फलीभूत होते नजर आ रहे हैं और खासतौर से डॉक्टर विलास अगर देखा जाए क्योंकि ना सिर्फ पोषण सुरक्षा बल्कि इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन जो दो वैश्विक समस्याएं हमें नजर आती हैं जो कि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां भी हैं, एक जलवायु परिवर्तन का खतरा और दूसरा कुपोषण की अगर बात की जाए, तो इन दोनों बड़ी समस्याओं के विकल्प के तौर पर अगर हम देखते हैं, समाधान के तौर पर देखते हैं, तो शायद पोषक अनाज जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आने वाले समय में भी।
0: जी बिल्कुल, अभी देखिए जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम, तो इस जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमको ऐसे धान्य चाहिए जो एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई भी करे और पोषण सुरक्षा भी दे। अभी देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, SDG 2 जो जीरो हंगर है, माल न्यूट्रिशन को दूर करना है,
1: जी
0: SDG 3 है हेल्दी लाइव्स को बढ़ाना है, SDG 12 जो है सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन सिस्टम्स को लाना है, SDG 13 क्लाइमेट चेंज की है। तो अभी मिलेट्स जो है क्लाइमेट चेंज के एक प्रतिबिंब है और एक रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि बहुत ही कम वर्षा में 400 से मिलीमीटर से कम वर्षा में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हुए
1: जी
0: किसान को दाना भी देते हैं और चारा भी मिलता है पशुओं को। तो इस न्यूट्रिशियस थिंग एनिमल सिक्योरिटी एंड देयर लाइवलीहुड और पोषक अनाज से पोषण सुरक्षा, जो न्यूट्रिशियल से पोषक अनाज या मोटा अनाज से मिलेगा, ये भरपूर अगले आने वाले समय में हमारे देश को ये जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हम राइस वीट के इकोसिस्टम में इरिगेटेड एग्रीकल्चर को बल दिया है, मगर जब पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है, तब हमारे नॉर्दर्न स्टेट पंजाब यूपी हरियाणा नॉर्थ ईस्ट इन सब में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर जरूरी है। तो हमने हमारे ट्रायल से यह मालूम हुआ है कि इनके प्रोडक्टिविटी लेवल्स करीब 4 गुना ज्यादा है पंजाब यूपी हरियाणा में, तो इसलिए ये क्रॉप भी वहां आ गए। तो राइस वीट पोटैटो की जो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है उसको हम डाइवर्सिफाई करने में भी सफल होंगे, पानी को बचाने में सफल होंगे, और जो अधिक मात्रा में जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड केमिकल यूज होते हैं तो उसको बचाते हुए नेचुरल फार्मिंग का भी बढ़ावा दे सकते हैं
1: जी।
0: तो वैसे हम ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल का भी ये रहेगा और डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर में मिलेट्स सबको मिलेंगे, सबके फूड प्लेट पे जाएंगे और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इस क्लाइमेट चेंज की दौर।
1: जी बिल्कुल, तो ना सिर्फ बारानी क्षेत्र या सूखे क्षेत्र की हम बात करें बल्कि वो भी क्षेत्र जहां पर जो बारिश की स्थिति है सामान्य होती है वहां भी तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। जो पोषक अनाज है अगर उनकी खेती हमारे किसान करते हैं तो और अधिक लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन यहां खासतौर से डॉक्टर विलास, अगर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो पोषण वर्ष है वो हम मना रहे हैं पोषक अनाज के साथ, किस तरीके से और खास रहेगा ये वर्ष जो है और क्या कुछ इसमें तैयारियां चल रही हैं?
0: देखिए बहुत ही एक्साइटिंग विषय है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ICAR और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिलते हुए हमने एक ब्लूप्रिंट बना के PMO को ये सबमिशन हुआ है और करीब करीब 6 टास्क फोर्स बनाए गए हैं जो पोषण सुरक्षा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, जैसे मिलेट्स को अलग अलग रेसिपीज बोथ नेशनल इंटरनेशनल रेसिपीज अवेयरनेस क्रिएट करने का, कैसे इसका रोड शोज हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें नेशनल रीजनल इंटरनेशनल और विलेज लेवल तक भी इसकी प्लानिंग हो चुकी है और करीब करीब सारे 20 मिनिस्ट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू सिविल एविएशन तक सारे मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। इसका एक ही फाउंडेशन है, ये जो बुनियाद है इसकी अवेयरनेस बढ़ाया जाए, इसका डिमांड बढ़ाया जाए, लोगों में इस उत्सुकता बढ़े कि ये सब उनके फूड प्लेट पे जाए और पोषण सुरक्षा मिले। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी कर्टन रेजर हमने किया था हैदराबाद में सितंबर में
1: जी,
0: लास्ट ईयर सितंबर में, जनवरी में प्रधानमंत्री जी से इसका उद्घाटन होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का, उसके साथ साथ एक विचार गोष्ठी और कॉन्फ्रेंस भी होगी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो करीब 131 कंट्रीज में जो मिलेट्स ग्रो होते हैं करीब 60 करोड़ लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब इनमें शामिल होंगे। इतना एक एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा कि अफ्रीका एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सारे कॉन्टिनेंट्स के प्रतिनिधि इससे जुड़ेंगे और जब 160 देश इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को बनाने के लिए सपोर्ट दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, अभी भारत इसका लीडरशिप कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टास्क फोर्सेस बने हैं नेशनल इंटरनेशनल रीजनल लोकल, तो इसको कनेक्ट करते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स में चीफ सेक्रेटरीज एंड कलेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो सारे फेस्टिवल्स जो बनेंगे अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो इसके साथ जुड़ते जुड़ते करीब करीब 1000 रेसिपीज बनेंगे और इंटरनेशनल रेसिपीज भी बन रहे हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट शेफ्स ऑफ द होटल्स डॉक्टर्स जिम्स एवरीबडी इज इन्वॉल्व, तो इसका एक एक्साइटमेंट का माहौल है, भारत इसका नेतृत्व कर रहा है
1: जी।
0: और यही प्रयास है इंडियन मिलेट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में पोजीशन किया जाए और सबको पोषण सुरक्षा दिया जाए
1: जी, तो
0: इसके से हमारा निर्यात बढ़ेगा, इससे फार्मर्स का डिमांड बढ़ेगा जो मार्केट्स के बहुत डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट को कनेक्टेड रहेंगे। तो इसको फार्मर को इससे जोड़ने के लिए अपीडा, FSSAI, NABARD और सारे प्लेटफॉर्मों से इनको लिंक किया गया है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो फार्मर अपना प्रोड्यूस करता है उसको डिजिटली बेचा जाए, सो दैट कोई भी मिडिलमैन नहीं है, फार्मर अपना ब्रांड खुद बेचेगा एज ए FPO। तो हम भी हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से करीब करीब अभी 34 FPOs क्रिएट किए हैं मिलेट्स के 11 स्टेट्स में
1: जी।
0: तो अभी समझते हैं नेक्स्ट आने वाले एक साल में करीब 400 से ज्यादा मिलेट्स के FPOs रहेंगे एंड मिलेट्स की सप्लाई चेन बढ़ेगा, उसकी सप्लाई की मात्रा बढ़ेगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, सबको रैशनलाइज प्राइसेस में मिलेट्स की अवेलेबिलिटी होगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये एक्साइटमेंट की लैंडस्केप जो है बहुत ही अच्छी बढ़ रही है एंड हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो मिलेट रेवोल्यूशन हो रहा है इसके साथ साथ हम सबको सारे विश्व को फूड सिक्योरिटी के अलावा क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में पोषण सुरक्षा भी देंगे, ये हमको उम्मीद है और हम इसके इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं
1: जी। बिल्कुल, तो जाना आपने कैसे कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष की जब हम बात करते हैं इसके लिए और क्या कुछ नया होने वाला है, कैसे किसान को फायदा मिलेगा ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि अगर हम बात करते हैं पोषण सुरक्षा के उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी खास हो जाते हैं हमारे जो पोषक अनाज हैं और हर एक स्तर पर प्रयास यही किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान हैं उनको जोड़ा जाए। और जैसा अभी डॉक्टर लास ने भी जानकारी दी कि जो FPO हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें भी इजाफा हो रहा है, तो जाहिर तौर पर पोषक अनाज से जो पोषण सुरक्षा है वो जल्द ही सुनिश्चित हो पाएगी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तरीके से कितना फायदा आपको मिल सकता है जो हमारे पोषक अनाज हैं इनके जरिए और कोशिशें लगातार की जा रही हैं और वो कोशिशें अब रंग लाती भी नजर आ रही हैं सरकार की तरफ से, ना सिर्फ अगर हम MSP की बात करते हैं या किस तरीके से और किसानों को जो फायदा हो सकता है उसके लिए सभी प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं और धीरे धीरे जो किसान हैं वो समझने भी लगा है कितना फायदा उनको मिल सकता है पोषक अनाजों से। खासतौर से डॉक्टर दलवाई अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि जो तकनीकी रूप से हम बात करते हैं यानी इस तरह की जो मशीन की जब हम बात करते हैं तो आवश्यकता है कि अब ये नया बदलाव जो है हम देखें, क्योंकि और भी बदलाव जो हैं वो हमने हरित क्रांति के बाद से देखे और आज के समय में जब हम ड्रोन के जरिए कृषि की हम बात करते हैं तो आने वाले समय में आवश्यकता यही कि पोषक अनाज में भी कुछ इस तरह की नई तकनीक आए जो हमारी उपज को बढ़ा सके।
3: आप ठीक बोल रहे हैं, पोषक अनाज हो या जो भी अनाज हो
1: जी,
3: तकनीकी बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के जो चैलेंजेस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि रिसोर्स यूज एफिशिएंसी
1: जी।
3: रिसर्च से यही पता चलता है कि अगर हमारा चार प्रकार का इंटरवेंशन हो जाएगा
1: जी,
3: तो निश्चित तौर पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। पहली बात है वैल्यू एडिशन, ये वैल्यू एडिशन से पोषक अनाज पर कम से कम 30% वैल्यू बढ़ जाएगा
1: जी,
3: मतलब इनकम बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो सेकेंड ये है इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मार्केटिंग व्यवस्था अगर ठीक करेंगे, MSP सिस्टम हो, उसके साथ साथ मार्केटिंग सिस्टम, ओपन मार्केटिंग सिस्टम हो
1: जी,
3: उसे कम से कम 25% अच्छाई हो जाएगी। थर्ड एक है कि हम ये जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी मैं कह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी,
3: कैसे हम पानी या फर्टिलाइजर या लेबर अलग अलग प्रकार का मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करेंगे, अगर वहां इंप्रूवमेंट होगा उससे भी कम से कम 25% फायदा हमको हो जाएगा
1: जी।
3: और इनके साथ अगर मार्केटिंग का व्यवस्था ठीक हो जाएगा कम से कम 20% तो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब है वैल्यू एडिशन और रिसोर्स यूज एफिशिएंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
1: जी।
3: आप जो कह रहे थे तकनीकी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है ड्रोन्स हो, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हो, मतलब मैकेनिकल मैकेनिकल सिस्टम के साथ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों मिलना मिलाना पड़ेगा हमको। माइक्रो इरिगेशन के साथ अब सेंसर जोड़ दिया या रिसोर्स यूज एफिशिएंसी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल किया
1: जी।
3: तो ऐसे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी दोनों को अगर मिलाएंगे
1: जी।
3: तो निश्चय हमारे किसान को लाभ होगा। मान लीजिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग किया
1: जी।
3: ताकि किसान को पता चलेगा उनका सॉइल का न्यूट्रिएंट कंडीशन क्या है और क्या इस्तेमाल करना चाहिए
1: जी।
3: उसके साथ अगर माइक्रो इरिगेशन जोड़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनका कम पानी में ही अच्छा उत्पादन हो सकता है
1: जी।
3: तो प्रेसिजन एग्रीकल्चर जो चाहिए, प्रेसिजन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने से
1: जी
3: हमारा जो इनपुट का व्यवस्था है वो ठीक होगा, उसके साथ हमारा उत्पादन बढ़ेगी
1: जी।
3: और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम होगा। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए
1: जी।
3: इसके साथ साथ जब भी हमारा प्रोडक्शन होगा हमारा उपभोक्ता का आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ेगा
1: जी।
3: आज उपभोक्ता क्या चाहेंगे, यही न्यूट्रिशन के साथ अगर न्यूट्रिशन का अंश को बढ़ाना है तो बायो फोर्टिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी, बिल्कुल।
3: तो इसलिए हमको ऐसे प्रकार के वैरायटी चाहिए जहाँ जिंक हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट के साथ इसका भी आवश्यकता पूरा हो सकेगी।
1: यानी बायोफोर्टिफाइड जो किस्में हैं उनका प्रचलन जो है हमारे पोषक अनाजों में भी बढ़ना चाहिए। डॉक्टर राव क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार जो गुणवत्ता है उसको भी सुधारने की बात कही जाती है, किस तरीके से गुणवत्ता में इजाफा हम कर सकते हैं। उत्पादन तो हमें बढ़ाना ही है लेकिन जो गुणवत्ता है वो भी काफी महत्वपूर्ण, जब हम पोषक अनाजों की बात करते हैं कैसे इसमें सुधार लाया जाएगा, और खासतौर से जिसका जिक्र अभी यहाँ डॉक्टर दलवाई ने किया जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों की हम बात करते हैं, क्या उसकी भी यहाँ कह सकते हैं और नई प्रजातियां जो हैं वो आएंगी?
4: अभी मिलेट्स में अबाउट 10 बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज अभी तक ला चुके हैं
1: जी।
4: जैसे बाजरा में ज्यादा है, फिर बाद में फिंगर मिलेट में है, फिंगर रागी में होगा और स्मॉल मिलेट्स में भी लाया गया है
1: जी।
4: तो इसमें जिंक के स्पेशल वैरायटीज कुछ है, फोर्टिफाइड बायोफोर्टिफाइड, आयरन बायोफोर्टिफाइड है
1: जी।
4: और ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज्यादा है, इसी को हिडन हंगर कहला जाता है
1: जी।
4: तो इसके माध्यम में अगर हम ये स्पेशलाइज्ड बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज खास करके अपना अनेमिया मुक्त भारत भी जो कहला जा रहे हैं, तो कैप्टिव मार्केट जो है ICDS प्रोग्राम, WCD प्रोग्राम, आयरन माल न्यूट्रिशन, ये सारे प्रोग्राम्स में अगर हम उसको वी कैन कनेक्ट टू दिस मार्केट्स। एंड अभी पोषण अभियान के अंतर्गत मिलेट्स का भी प्रोत्साहन दिया गया
1: जी।
4: तो इससे काफी लोगों को लाभ, वन साइड तो कंज्यूमर का लाभ होगा जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के तरफ से, दूसरी तरफ फार्मर्स को भी इसका जैसे उनका भी लाभ होगा बिकॉज द मार्केट्स आर गोइंग टू एमर्ज,
1: मुनाफा एक किसान का बढ़ सकेगा इसके जरिए।
4: हाँ बिकॉज बट वी नीड टू एंश्योर वन थिंग, तो प्रोड्यूसर शेयर में कंज्यूमर शेयर में प्रोड्यूसर का शेयर और कंज्यूमर रूपी में प्रोड्यूसर शेयर अच्छा रहना चाहिए
1: जी।
4: फार्मर्स को कुछ अब जो मिल रहा है उससे ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसी जो इंट्रोडक्शन के बायोफोर्टिफाइड या जो भी है, तो द पॉलिसीज मस्ट बी पुट इन सच अ वे दैट द फार्मर गेट द मैक्सिमम शेयर फ्रॉम द कंज्यूमर रूपी। तो इस तरफ से है तो हम ये वी कैन वेरी श्योर दैट फार्मर विल इंक्रीज द एरिया अंडर दिस थिंग। सो दिस इज, ये मेरा राय है
1: जी। यानी एक शुद्ध लागत जो है वो एक किसान को मिल सके, इसके लिए अब हमें प्रयास करने होंगे, क्योंकि जो किसान है तभी ज्यादा उसका रुझान पोषक अनाजों की तरफ होगा जब उसको बेहतर भाव या जो मुनाफा है वो मिल सकेगा। डॉक्टर दलवी आपने जिक्र किया था कि किस तरीके से अच्छा लाभ जो है वो किसान को मिल सकता है, कैसे किसान अपनी लागत को कम कर सकता है, लेकिन जब बात करते हैं हम जागरूकता की, यानी किस तरीके से हमें जो अवेयरनेस है उसको और ज्यादा बढ़ाना, और उसी के लिए हम देख भी रहे हैं जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का आयोजन जो किया जा रहा है, तो काफी संख्या में अब जो किसान है वो जागरूक हो रहे हैं, और लेकिन कोशिश उनकी भी यही है कि सीधा वो उपभोक्ता तक संपर्क कर सकें।
3: ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो 2018 में हमारे देश में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हमने मनाया
1: जी,
3: और इससे भी बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुआ है देश में, और आजकल सामान्य स्तर पर उपभोक्ता में भी एक नया अवेयरनेस आ रहा है कि हमको सेफ हेल्दी न्यूट्रिशन रिच खाना चाहिए
1: जी।
3: तो मोटे तौर

0: पर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम भी ये बदलाव हम देख रहे हैं
1: जी।
0: ये जो पोषक अनाज है, क्योंकि इन कमोडिटी को हम बढ़ाना चाहेंगे, तो ये जो हमारे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मनाने जा रहे हैं अगले साल
1: जी,
0: इसको इसका लाभ उठाते हुए हमको और अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अवेयरनेस होगा जब इनके साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स है, जैसे जो हमारा अलग अलग होटल में जो काम करते हैं शेफ्स उदाहरण
1: जी,
0: डॉक्टर्स उदाहरण, उसके साथ हमारा न्यूट्रिशन, हमारा यूनिवर्सिटीज के जो ओपिनियन मेकर्स प्रोफेसर्स है
1: जी,
0: ऐसे लोगों को अब बात करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अब फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन की ओर हम जा रहे हैं
1: जी,
0: ताकि हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है, विशेषकर महिलाएं हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो
1: जी।
0: तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको ये पोषक अनाज को उनको बढ़ाने के लिए उसके बारे में जो अवेयरनेस चाहिए, ये सब उनको उनके उनको उनको पहुंचाना चाहिए।
2: किसान साथियों, लगातार आपने खेती बाड़ी कार्यक्रम में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा कर रहे थे कि हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, हमें यहाँ पर लोगों को लोगों के अंदर जो अवेयरनेस पहुंचाना है, जो अवेयरनेस कैंपेनिंग करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो किसान है वो पहले से ही जो कोदो हो गया, बावटो हो गया, कुरी आदि की जो पौष्टिक आहार है, पौष्टिक अनाजों की खेती करते आया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारा जो किसान है मक्का और गेहूं मुख्यतः खाद्य फसलें बनकर रह गई है। तो किसान साथियों, हमें यहाँ पर जरूरत है कि हमें पुनः हमारी जो पोषक तत्व थे जिनमें रासायनिकों का हमें बिना प्रयोग से ही हमें अच्छी से अच्छी फसल मिल जाती थी, तो हमें उन फसलों को पुनः हमारे खेती में शामिल करना चाहिए और इसे इसका हमें लाभ लेना चाहिए। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। वक्त चला है आपसे विदा लेने का, बने रहिए हमारे साथ रेडियो 90.8 FM के साथ।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में आपका स्वागत है, और आज के प्रोग्राम की कलाकारा हैं अनुपमा वर्मा जी। बाकी जैसा हम हमेशा करते हैं, सारी बातें हम अनुपमा जी से ही पूछेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं इन्हीं के गाए हुए इस गीत से।

0: रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। बहुत ही सुंदर गीत। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और उस जगह के बारे में हमें कुछ बताइए।
1: सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि अनुपमा का प्यार भरा नमस्कार। और मेरी लाइफ की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो मुंबई से स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो लाइफ की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और वहीं से मेरी म्यूज़िकल जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरे फादर मेरी मदर दोनों ही गाने के बहुत शौकीन थे। तो मम्मा को सुनते सुनते, अपने फादर को सुनते सुनते हमें भी ये शौक जागा। तो क्योंकि म्यूज़िक एक लाइफ का बहुत प्यारा सा हिस्सा है, आजकल म्यूज़िक के बिना देखा जाए तो लाइफ अधूरी है, तो बस वहां से ही मेरी म्यूजिकल जर्नी भी स्टार्ट हुई।
0: जी, तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है अनुपमा जी का ही गाया हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही सुंदर गायकी, फैंटास्टिक सिंगिंग। अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी आप कहाँ रहती हैं और उस जगह के बारे में क्या खास है?
1: आजकल हम हिमाचल में हैं। मुझे पता लगा कि स्टार मेकर एक ऐप है, मैंने वो डाउनलोड किया। उसमें मैं अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके डालती रहती थी। मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ देते थे, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो इसी तरह हम स्टार मेकर में हमने एक गाना स्टार्ट किया। तो हिमाचल में मेरे छोटे मोटे प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं, कभी कुल्लू, कभी मनाली, कभी कहीं कभी कहीं। तो क्योंकि यहाँ पे इतना मज़ा आता है ना प्रोग्राम्स करने का, अलग अलग वादियाँ देखने को मिलती हैं। आप सबको भी कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर हिमाचल में घूमने आइएगा
0: जी। तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है अनुपमा जी का ही गाया हुआ ये खूबसूरत सा नगमा।

0: बहुत सुंदर गायकी, बहुत सुंदर गीत। अनुपमा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं या क्या करते हैं और कब से कर रहे हैं या कि क्या करते हैं आप?
1: और म्यूजिक का मुझे इतना पैशन था कि मैंने शादी के बाद अपनी म्यूजिक की एमए की है। देन इस

0: म्यूजिक टीचर, लेकिन मुझे कहीं वैकेंसी नहीं मिल पाई, तो मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं दोबारा कभी टीचिंग लाइन में भी जा पाऊंगी या सिंगिंग लाइन में भी जा पाऊंगी। तो इस मेरे ब्रदर जो हैं वो पुणे में सेटल्ड हैं। फिर मेरे ब्रदर ने मुझे स्टूडेंट्स दिए म्यूजिक के, ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिए। तो लॉकडाउन से लेकर अब तक मैं हर रोज शाम को मेरी इवनिंग म्यूजिक क्लासेस रहती हैं ऑनलाइन, तो वो मेरा कंटिन्यू चला हुआ है। वहाँ से भी मेरे को प्रैक्टिस मिलती रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को सिखाना या सीखना, सीखना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मतलब एक म्यूजिक, एज ए म्यूजिक टीचर मेरी जर्नी रही है, मेरा प्रोफेशन यही है।
1: जी ठीक है दोस्तों, आपने सुना, तो लीजिए एक और गीत भी सुनते हैं अनुपमा जी का।

0: बहुत सुंदर। अनुपमा जी, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको गाने का शौक कब से हुआ, आप कब से गा रही हैं?
1: ऑब्वियसली म्यूजिक का शौक तो मुझे बचपन से था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गाते थे, उनको बचपन से मैं सुनती थी हमेशा। मम्मा कीर्तन वगैरह करते थे, बहुत अच्छी आवाज़ थी उनकी, वो बहुत अच्छा गाते थे। डैडी भी मेरे काफ़ी हद तक अच्छा ही गाते थे वो, तो उनको देख देख के, उनको सुन सुन के, कुछ रेडियो में सुन के मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ से मेरा शौक जागा, और स्कूल में हर जगह जहाँ पर भी म्यूज़िक सुनती थी या कुछ प्रोग्राम्स रहते थे, सबसे आगे पार्टिसिपेशन के लिए मैं ही आगे आती थी। तो मेरी टीचर्स बोलते थे, भाई ये तो हमेशा सबसे आगे ही रहती है, इसको जब भी पूछो गाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि पैदाइशी से ही मेरा जो मेरी म्यूज़िक की जो जर्नी थी वहीं से स्टार्ट हुई है मेरी, और अब तक चल रही है।
0: जी तो लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है एक और नगमा अनुपमा जी का।

0: अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अनुपमा जी कि आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है, किस तरह का संगीत आप पसंद करती हैं? बॉलीवुड सिंगिंग, गजल्स, क्लासिकल, क्या चीज?
1: संगीत में पसंद ना पसंद तो कुछ मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड इज गोल्ड, ये तो हर इंसान जानता है। पुराने गाने जो थे वो एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। हाँ, जो आजकल के कुछ वेस्टर्नाइजेशन जैसे आ गई है तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लता जी के, आशा जी के मैं गाने पसंद करती हूँ, सुनना और गाने दोनों चीज़ें पसंद करती हूँ। और अलका याग्निक जी के भी बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, सैड सॉन्ग्स हैं, अच्छे लगते हैं। अनुराधा जी के भी बहुत से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो सुनने में आनंद आता है। सुनिधि चौहान जी हैं, उषा उत्थुप जी हैं, उनके भी गाने मुझे बहुत पसंद है। और गज़ल में मैं जगजीत सिंह जी को सुनना पसंद करती हूँ, चित्रा जी को भी सुनना पसंद करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी गज़ल आर्टिस्ट हैं। तो संगीत मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, इसलिए हर टाइप की मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ। हाँ, कुछ ऐसे संगीत हैं जो मुझे समझ में नहीं आते, जैसे साउथ मूवीज़ के कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती लेकिन उसकी धुन बहुत अच्छी रहती है, तो वो लैंग्वेज करके कुछ इंटरेस्ट मेरा कहीं कुछ कुछ जगह पर नहीं आता, सुनने का मज़ा नहीं आता। लेकिन म्यूज़िक जो है वो तो है, तो वो सात सुर का ही संगम है, तो जहाँ भी सात सुर सुनने को मुझे मिलते हैं मैं उसी तरफ हो लेती हूँ। खाना मिले कोई बात नहीं, खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन गाना जहाँ पे सुनने को मिल जाए और गाने को मिल जाए तो क्या ही बात है, बहुत आनंद आता है।
0: बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों एक और गीत।

0: अब कुछ मुश्किल सा सवाल पूछें अनुपमा जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन सा है, कौन है गायक गायिका और क्यों?
1: मेरे पसंदीदा गायक तो जैसे हमारे संगीत के जैसे चार स्तंभ जो हैं, लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, चार क्या हम ज़्यादा भी बोल सकते हैं, इन सबको सुनना मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो आजकल के भी सिंगर्स में सोनू निगम जी को मैं पसंद करती हूँ, श्रेया घोषाल तो उनके तो क्या ही कहने। तो ऐसी बात नहीं है, सभी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, ये है कि उनका सबका अपना अपना स्टाइल है गाने का, तो जहाँ पे अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल जाए बस मैं वही चीज़ पसंद करती हूँ। वैसे तो मेरी आइडल तो लता जी हैं, मैं उनको ही सुन सुन के जो भी कुछ सीखा है मैंने उनको सुन के ही सीखा है। आशा जी का भी मैंने थोड़ा सपोर्ट लिया है, मतलब कि उनको भी मैं सुनना पसंद करती थी, लेकिन जो लता जी से मैंने सीखा है वो आज तक मैं किसी से सीख नहीं पाई। उनको उनकी बारीकियां सुनती थी और वो हूबहू गाने की मैं कोशिश करती थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी पसंदीदा जो गायक हैं वो लता जी हैं और आशा जी भी हैं, मोहम्मद रफ़ी जी भी हैं, लेकिन सबके टॉप पर लता जी को मैं नमन करती हूँ और वो हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहेंगे, शायद हम सबके दिल में।
0: जी बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है एक और नगमा।

0: अनुपमा जी, एक दूसरा सवाल जो मुश्किल हो सकता है, आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है और क्यों?
1: ऐसे बहुत से गीत हैं जो मेरे दिल को छूते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब भी लता जी का ऐ मेरे वतन के लोगों मैं सुनती हूँ, या जब जब भी मैंने इसको गाया है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि जब भी मैं वो गाती हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरे आंखों के आगे वो दृश्य वैसा नजर आता है जैसे वो संगीत में, उस गीत में जैसे शब्द हैं जो, तो वो मेरे दिल को छूता है जब भी मैं वो गुनगुनाती हूँ या कभी सोचती हूँ। मैं एसएम पर कई बार मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, आज तक मैं उसको पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना ही मैंने वो सॉन्ग पोस्ट किया है, क्योंकि मैं पूरा वो गा ही नहीं पाती हूँ। जब भी वो गाती हूँ मेरे आँखों से आंसू बहने लगते हैं, मेरा गला भर जाता है और मैं कभी पूरा गा ही नहीं पाती हूँ।
0: ओके, बहुत बढ़िया।

0: मौका आ गया है अनुपमा जी, जब संदेश दीजिए आपके जैसे ही सिंगर्स को, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें क्या करना चाहिए।
1: और आज तक जितने भी यहाँ पे श्रोता हैं उनमें से कईयों को मैंने सुना है और मैं उन सब से भी बहुत कुछ मैंने सीखा है और सीखना भी चाहूँगी आगे। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कोई कमेंट करें कि आपकी यहाँ गलती थी, यहाँ पे गलती है, और हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना, तो एक गीत भी सुनते हैं

अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत आभार है जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। हम सभी आपके गीतों को हमेशा याद करेंगे और आपकी सिंगिंग सुनने के मौके ढूंढते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।

तो दोस्तों ये थी अनुपमा वर्मा जी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। सोनाली जोशी जी आज के कलाकार के इस एपिसोड की गायिका हैं, टैलेंट हैं और प्रतिभा हैं, जिनसे मुझे मौका मिल रहा है बात करने का और दोस्तों आपको मिल रहा है मेरी और सोनाली जी की बातचीत सुनने का। लेकिन आप लोग भी और मैं भी एक बात में एडवांटेजेस रहेंगे कि हमें उनके गीतों को सुनने का मौका भी मिलेगा। लेकिन पहले सोनाली जी का स्वागत करते हुए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में आई। वी आर ऑनर्ड एंड उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सोनाली जी पहले हमारे सभी सुनने वाले जो भी इकट्ठा हुए हैं आज की महफिल में, बात कर लीजिए उनसे, अपने दिल से उनके दिल तक। थोड़ा बताइए ना, कहाँ हैं आप, क्या करती हैं आप, कौन हैं आप?
1: हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सोनाली जोशी एंड आई एम करेंटली इन बैंगलोर। मैं हूँ मुंबई से, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम मुंबई, मुंबई एंड माय पेरेंट्स, सो अपेरेंटली आई कम फ्रॉम अ मिक्स बैकग्राउंड। माय फादर इज अ देशस्थ मराठी ब्राह्मण, मैरिड टू माय मॉम हु इज अ कोंकणी, एंड आई एम मैरिड टू अ मलयाली कैथलिक बॉय एंड yeah, so that's what I can say about myself. And when it comes to my background, I am a teacher by profession. So I have an experience of say almost 16 years, and I am there in this line of education. I'm very passionate about children. And yeah, and simultaneously very very passionate about singing. So mere mein ye singing ka what you say, this has been inherited in me from my grandmom, so my ajji, basically my father's mom. She used to, as children, used to teach us all classical songs, rag, bhoop, rag, kafi. Not that I used to practice, but slowly gradually somehow wo khubi you know what you can say, attraction for singing started growing. My father sings, my mom sings, my sister sings, and yeah, that's all about. So, and I'm here today thanks to Samir ji. I got an opportunity to come on radio. And also, I'm very passionate about mimicry. I have tried my best to go into competitions for singing and mimicry. And I always was passionate of becoming a radio jockey too. But then I went in the line of teaching. So, wo kabhi ho nahi paya.
0: Bahut khub.
1: So, yeah.
0: Amazingly, yeah. Amazingly beautiful. To dosto, aapne jana ki Sonali ji kaun hai, kya karti hai. To chaliye, inke sangeet ka lutf bhi uthaye, in geeton ko sunay. और मजे लें और फिर वापस आते हैं सोनाली जी से बातचीत करने के लिए। लीजिए, पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गायकी और बहुत ही प्यारी शुरुआत। सोनाली जी, आपने अभी बताया कि यूं तो आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहते थे। अरे क्यों मेरे पेट पे लात मारने को लगी हुई यार, टीचर बन गए अच्छा हुआ। चलो आपने बताया कि आप टीचर बन गए, जोक सपाट। बड़ी मजेदार वाली बात यह है कि मेरी वाइफ भी टीचर है, शी इज एन एकेडमिशियन और खासल खास मैथमेटिक्स की टीचर है, गणित की टीचर है।
1: अरे
0: और वो भी सीनियर क्लासेस। नहीं क्या बात, क्या सोचो ना मेरी जिंदगी कैसे गुजरती है यार। सारी की सारी जिंदगी मेरी कोऑर्डिनेट्स और ट्रिग्नोमेट्री बन के रह गई है। इस अलजेब्रा बहुत ज्यादा कुछ हो जाए तो वेक्टर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ लेकिन इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ, खाना बहुत बढ़िया बनाती है, बहुत ही शानदार, बस वही मजा आ जाता है।
1: और क्या चाहिए आपको?
0: बस क्या और क्या चाहिए, फूडी हूँ। चलो टीचर होने के नाते एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, है ना। मजे मजे लेकर बात करेंगे, ओके।
1: जरूर जरूर।
0: टीचर्स किस बिजनेस में होते हैं सोनाली जी?
1: टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के बिजनेस में, उनके ग्रोथ के बिजनेस में होते
0: हैं। करेक्ट करेक्ट। नहीं, बहुत ज्यादा दूर मत जाइए। टीचर्स आर इन द बिजनेस ऑफ पढ़ाना, टीचिंग, स्टडी,
1: बराबर,
0: ओके। तो पढ़ाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, रॉ मटेरियल, वो क्या होता है? किताबें,
1: डिपेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली, किताबें, चौक,
0: किताबें, है ना भाई, सारा का सारा कंटेंट तो उधर ही लिखा हुआ है ना।
1: सही बात है।
0: तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि टीचर्स आर इन द बिजनेस ऑफ बुक्स। सच बताना, दिल को हाथ लगा के झूठ मत बोलना, कितनी किताबें साल में पढ़ते हो आप?
1: ऑनेस्टली देखने जाए तो बच्चों के साथ कनेक्ट करना इज बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। तो किताबें हो नहीं हो, उनके साथ कनेक्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, आई फील।
0: मैंने ये पूछा सोनाली कि साल भर में कितनी किताबें पढ़ते हो आप?
1: मैं पढ़ लेती हूँ उससे 2-3, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता
0: है। वही तो छेड़ रहा हूँ आपको, मैं वही तो छेड़ना चाह रहा हूँ आपके थ्रू सारे टीचर्स को कि यार आप लोग बुक्स के बिजनेस में हो और बुक्स पढ़ते नहीं हो, तो कैसे हलवाई हो जो बर्फी बनानी है लेकिन मावा का इस्तेमाल ही नहीं करते, भला ये क्या बात हुई?
1: सही बात।
0: तो सोचो दोस्तों, टीचर्स बुक्स के बिजनेस में होकर बुक्स नहीं पढ़ते, ये तो कुछ ऐसी बात हो गई ना कि कोई गायक गायकी के बिजनेस में होकर गाना ना गाए, ये तो कुछ समझ में नहीं आई ना बात। तो चलिए,
1: सही बात,
0: विचार करो दोस्तों, विचार करो। मैं तो सिर्फ सोनाली को छेड़ रहा था और कोई मेरा पर्पस नहीं था। मैं हाथ जोड़कर सभी टीचरों से माफी चाहूंगा, मैं खुद एक टीचर हूं इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं एक उंगली किसी और के ऊपर उठाऊंगा तो 3 उंगलियां मेरे पर भी उठेंगी। नेवर माइंड, जाने दीजिए, लेकिन विचार करने की जरूरत तो है कि नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हुए, पहले तो सोनाली आपके गाए हुए इन गीतों को आपके दोस्तों को सुनवाएं, फिर वापस आते हैं और बातचीत करने के लिए, ठीक है?
1: यस जरूर।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी प्यारी गायकी। चलिए सोनाली जी, अपने संगीत के बारे में बता दीजिए। आपने कहा कि आपको जो संगीत की प्रतिभा का आशीर्वाद मिला वो आपकी दादी से मिला, करेक्ट?
1: सही बात
0: है ना, दैट इज सो ब्यूटीफुल। ये बड़ी खूबसूरत बात है। वैसे भी बच्चों को दादी नानी ये बहुत प्यारे होते हैं, तो आपको किस तरीके का म्यूजिक का आशीर्वाद दादी से मिला? कहने का मतलब है क्लासिकल, महाराष्ट्रियन, अभंग, गजल, भक्ति, बॉलीवुड म्यूजिक, किस तरीके का, मतलब आपको क्या पसंद है?
1: तो मेरी दादी तो गाती थी सारे अभंग और क्लासिकल सॉन्ग्स, राग्स, तो मैं थोड़े बहुत यहाँ वहां से जो मुझे अच्छे लगते थे मैं वो पिक करती थी। बट फिर बाद में मेरे पिताजी, जैसे मैंने आपको कहा, मेरे माता पिता भी गाना बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे पिताजी को सारे पुराने वाले गाने, हॉन्टेड मेलेडीज, मोहम्मद रफी, तलत अजीज, तलत महमूद, इन सबके गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे करते करते मुझे म्यूजिक के तरफ बहुत ज्यादा रुचि बढ़ गई और फिर मुझे बॉलीवुड म्यूजिक ज्यादा पसंद आने लग गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मुझे म्यूजिक से ज्यादा लिरिक्स ज्यादा समझ में आने लग गई और पसंद आने लग गई। और हाँ, तब तो उसी वजह से मेरी मेरे इंटरेस्ट एंड रुचि बढ़ गई।
0: ओके सोनाली, एक चीज की मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा उसको क्लियर कीजिए। आपने कहा कि आपको लिरिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया, करेक्ट?
1: सही बात है।
0: इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना मेरे को। लिरिक्स मतलब एक उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल मैं मेरे मन में जो आ रहा है ना, जितना मैं समझ पाया वो बोल रहा हूँ। एक बॉलीवुड सॉन्ग है राम पुर का लक्ष्मण, ओके? उसमें किशोर कुमार ने और मे बी आशा भोसले जी ने गाना गाया है। वो गुम है किसी के प्यार में सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं, समथिंग लाइक दैट,
1: राइट?
0: सो मुझे पर्सनली इसकी लिरिक्स बहुत ही ज्यादा, मतलब मोहब्बत में भीगी हुई लगी, अमेजिंगली डीप। मतलब मोहब्बत में दोनों लोग इतने ज्यादा डूबे हुए हैं दैट मुझे ऐसा लगा दे आर वेरी क्लोज टू द गॉड। ओके, सो
1: राइट,
0: ये मेरी तरफ से समझ है। आपने लिरिक कहा कि आपको लिरिक्स पसंद आते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए ना।
1: तो जब मैंने कहा मुझे लिरिक्स पसंद आते हैं, मतलब वो फील होना चाहिए। इवन जब मैं गाना गाती हूँ फॉर माय पैशन ऑफ कोर्स, अगर जब तक मुझे वो फील नहीं होता, मैं दिल से नहीं गा पाती ना वो गाना, तो समहाउ मुझे मजा नहीं आता। तो आई हैव टू, पहले तो मुझे वो गाना समझ में आना चाहिए कि वो गाने का अर्थ मतलब क्या है, और फिर गाने का मजा जो वो फील करते हैं ना, लाइक मैंने जो सिंगर्स को गाते हुए सुना है, वो सारे पुराने सिंगर से लेके नए सिंगर्स, वो जो इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ गाना गाते हैं ना, वो तभी गा पाते हैं जब उनको उसका अर्थ मीनिंग पता हो। सो दैट इज अ रीजन मेरे लिए अलॉन्ग विथ म्यूजिक लिरिक्स भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे।
0: तो एग्जाम्पल दो ना, जैसे मैंने दिया।
1: अच्छा, गाने का जैसे कि, अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल मैं कल होना होगा गाना अगर आपने सुना होगा, तो मैं एक लाइन गाना चाहूंगी उसका। इट गोज लाइक,

0: ये जो मैंने मूवी देखी है एंड जिसके जो लिरिक्स जो मैंने सुने, इट लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इट सेज अबाउट द इमोशंस. इमोशंस के बारे में बोलते हैं कि कैसे एक दूसरे को वो प्यार करते हैं और उनको एक दूसरे से बिछड़ना नहीं है और कभी एक दूसरे को अलविदा नहीं कहना है. तो दैट्स हाउ आई रिलेट, मैं गानों और लिरिक्स को इसी हिसाब से अपने आप ये कर सकती हूँ, एसोसिएट और रिलेट कर सकती हूँ.
1: आई गेट इट, आई गेट इट. तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा. मेरा तो एग्जाम्पल ऐसे ही था, लेकिन सोनाली जी का एग्जाम्पल बिल्कुल डीप था, मीनिंगफुल था. और आपको समझ में आया होगा कि जब आप लिरिक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो गीत कितना खूबसूरत निकल के आता है. चलिए, लिरिक्स के ऊपर ही ख्याल रखते हुए ये प्यारे से गीत इनका आनंद लेते हैं. सोनाली जी ने हमारे लिए ये प्रिपेयर किए, आइए सुनते हैं.

0: बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए सोनाली जी, आपके म्यूजिक के बारे में जान लिया, आपको जो आशीर्वाद आपकी दादी से मिला है उसके बारे में भी जाना, फिर आपने लिरिक्स पर ख्याल रखते हो, उसको ध्यान में रखते हुए इमोशंस में डूब कर जब आप गाते हो तो क्वालिटी निकल के आती है। वो एक्सटेम्पोर अभी अभी आपने जो गाया उससे हमें पता भी चल गया। चलिए अब आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं, और उसी ये जो मैं पूछने जा रहा हूं उसमें एक और सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा
1: जरूर।
0: सोनाली जी समझो, इमेजिन करो कि आपको एक शाम के लिए एक पूरा स्टेज किसी बहुत ही पावरफुल ऑडिटोरियम में दे दिया गया कि सोनाली जी ये स्टेज आज की शाम आपका है, आप ही को इसके ऊपर परफॉर्म करना है, एज मैनी सॉन्ग्स एज यू विश टू सिंग, ऑर्केस्ट्रा इज देयर टू हेल्प यू आउट, पूरा हॉल खचा खच भरा हुआ है लोगों से, ओके और आगे की रोज में ऑल सिंगर्स लाइक मोहम्मद रफी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मनाडे, तलत महमूद, महेंद्र कपूर, ऑल सोनू निगम एंड शान एंड एवरीबडी सिटिंग आउट देयर,
1: ओके
0: नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, और आप इन सारे लोगों में से किसी एक को स्टेज के ऊपर बुला